उठा सा टुका नारद देखे करम की रेखा सा तो मन से भज लो रे हरी तन से भज लो रे हरी राम नाम है जग में।

ए अमर नाथ की अमर कहानी सब जग में हो गई हो सीता। ए मन से भजलो रे हरी, तन से भजलो रे हरी।

जग तारे भजन करो, हरे जगत जग तारे भजन करो।

नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पर आ गई है आप सबकी दोस्त वर्षा लेकर आपके लिए एक नया कार्यक्रम जिसका नाम है गली गली सिम सिम, जो है आपके लिए खास। जैसे आसमान का सितारा धरती पे उतारा, फिर उसने आकर खोला अपना जादू का पिटारा, जिसमें है ढेर सारी जानकारी और मस्ती। तो सुनते हैं लेकर चटकारा गली गली।

0: ओ यार बड़ी भूख लगी है, जरा देखूं तो आज क्या है किचन में। ये क्या, फिर से वही गोभी और वही आलू। भाई आलू गोभी खा खा के मेरे दांत भी थक गए हैं, कुछ नया भी तो होना चाहिए। रोज रोज कुछ नया नहीं खाऊंगा तो मुँह का स्वाद कैसे बदलेगा। अरे हाँ, खाने से याद आया, आज ना गली में एक नाटक होने जा रहा है जिसमें अपना गुगली बना है राजा और चमकी बनी है मंत्री। उल्लू जी, नाटक शुरू होने जा रहा है, जल्दी जल्दी सब अपनी जगह पर बैठ जाओ। आज महाराज गुगली के दरबार में एक नए मंत्री आए हैं।
1: महाराज गुगली की जय।
2: हमें भूख लगी है, हमारे नए मंत्री के स्वागत में पूरे दरबार को खास शाही पकवान परोसा जाए।
1: पेश है शाही पकवान।
2: मेरा मन पसंद शाही पकवान।
3: फिर वही शाही पकवान, रोज रोज शाही पकवान, बोर हुए हम खाते खाते रोज यही शाही पकवान।
4: कुछ करिए मंत्री जंकी।
5: क्या हर रोज यही पकवान बनता है? लगता है शाही रसोइये से बात करनी पड़ेगी। नमस्ते शाही रसोइये।
6: अरे मंत्री चमकी, आप
5: बताओ रसोइये, कल दरबार के लिए खाने में क्या बनाओगे?
6: शाही पकवान और क्या, रोज वही बनाओ वही खाओ। मैं तो शाही पकवान से बोर हो गया हूँ, मुझे सपने आते हैं नई नई सब्जियों के, भिंडी के, गाजर के, रसीले लाल टमाटर के।
5: लेकिन तुम हर दिन कुछ

0: मंत्री चमकी जी, हमारे महाराज कुगली रोज शाही पकवान ही खाते हैं और साथ में हमें भी खिलाते हैं।
1: अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा।
2: वैसे बात तो सही है, अगर कोई नया नया खाना ट्राई नहीं करेगा तो उसकी सेहत कैसे बनेगी। मुझे ही देख लो, लंबा चौड़ा तगड़ा हूँ, बिल्कुल सलमान की तरह। और फिर अगले दिन दरबार में
3: महाराज कुगली की जय।
4: हमें भूख लगी है, शाही पकवान लाओ।
0: ये लीजिए महाराज।
4: अरे वाह, आज तो हमारे शाही पकवान से कुछ ज्यादा ही अच्छी खुशबू आ रही है। लाओ मेरे पास लाओ, शाही रसोइये।
0: जी महाराज।
4: ये मेरा शाही पकवान नहीं है, तुमने नया पकवान बनाया।
0: जी महाराज।
4: तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई?
1: गुस्सा मत कीजिए महाराज, आप टेस्ट तो करके देखिए।
3: महाराज ने चम्मच को उठाया, पूरे दरबार में सन्नाटा छाया।
4: भाई वाह,
5: महाराज को नया पकवान पसंद आया।
4: मैं करता हूँ ये ऐलान, अब राज्य में रोज बनेंगे तरह तरह के पकवान।
3: महाराज गुगली की जय हो, मंत्री चमकी की जय हो।
4: ओए बल्ले बल्ले, गुगली महाराज खुश और राज्य के सब लोग भी खुश। रोज नया खाओ, पौष्टिक खाओ और अपनी सेहत बनाओ। सब लोग इतने खुश थे कि उन्होंने तो गाना ही सुना दिया। लो जी,

0: मजा आ गया। अब सब बच्चों की मम्मी और डैडी को मैं एक राज की बात बताता हूँ। अगर कभी आपके चुन्नू मुन्नू गोलू मोलू नई नई चीजें खाने से मना कर दे तो मैं आपको एक तरकीब बताऊं। कोई बात नहीं, थैंक यू, बाद में बोल लेना। तो सुनिए, आप सब अपने बच्चों के साथ मिलकर खाना बनाएं और फिर देखिए कि उन्हें अलग अलग चीजें खिलाना आसान हो जाएगा। जैसे कि मेरी दोस्त पल्लवी और उसकी मम्मी मिलकर कुछ बना रहे हैं।
1: सब्जियों और फलों में मुझे सबसे ज्यादा पसंद है आम। आम फलों का राजा है। मेरा नाम पल्लवी। सबसे अच्छे आम गर्मियों में ही मिलते हैं। आम किसी भी तरह खाया जा सकता है। और आज मैं, मम्मी और शिरीन मिलकर स्वादिष्ट भेलपूरी बनाएंगे। ये बनेगी खट्टी मीठी अम्बी से, मतलब कच्चा आम। गर्मी में ये चटपटी भेलपूरी कितनी ताजगी भरी होती है। अब हम भेलपूरी में कुछ सब्जियां और मसाले डालेंगे। तीखा प्याज, लाल लाल टमाटर,

0: कर खाएंगे चटपटी भेलपुरी।
1: देखा कितने वधिया तरीके से पल्लवी और उसकी मम्मी ने साथ में भेलपुरी बनाई। भाई वाह, अब मैं तैयार हूँ चमकी और गुगली के साथ एक गेम खेलने के लिए। चलो चलकर देखते हैं ये दोनों क्या खेल रहे हैं।
0: गुगली, मैं तुमसे एक पहेली पूछूंगी और एक आवाज भी सुनाऊंगी। तुम्हें आवाज सुनकर उस खाने की चीज का नाम बताना है। तो तैयार?
2: तैयार।
0: तो सुनो पहेली। उगती है जमीन के नीचे लंबी पतली सब्जी लाल, इसको अगर दांत से काटो तो आती है ये आवाज। बताओ गुगली, मैं कौन सी सब्जी के बारे में बात कर रही हूँ?
1: उगती है जमीन के नीचे लंबी पतली सब्जी लाल।
0: हाँ, एक बार फिर से आवाज सुन लो।
1: लाल सब्जी जिसको खाने से ऐसी करारी आवाज आती है। समझ गया, ये है गाजर।
0: बिल्कुल सही, गाजर, जिसको इंग्लिश में कैरेट भी कहते हैं। गुगी गुगी, ये तो बहुत मजेदार गेम है। चलो अब हम ये गेम अपने फ्रेंड्स के साथ खेलते हैं। क्यों, खेलोगे ना तुम मेरे साथ? हुँ?
1: तो हो जाओ तैयार। चलो चमकी, पहला सवाल तुम पूछो।
0: ठीक है, सुनो दोस्तों। रंग में मैं सफेद हूँ, पीने की चीज हूँ, रोज पिया मुझे तो बनोगे तंदुरुस्त और बलवान। आवाज सुनो और बताओ क्या है मेरा नाम।
1: रुको रुको, सोचने दो। रंग में मैं सफेद हूँ, पीने की चीज हूँ, रोज पिया मुझे तो बनोगे तंदुरुस्त और बलवान। आ गया समझ। चमकी मैं बताऊँ?
0: अरे गुगी अभी रुको, बाकी सबको सोचने का मौका दे दो। क्यों दोस्तों, क्या तुम्हें पता चला? एक बार फिर से सुनोगे आवाज?
1: चमकी अब तो जवाब बताने दो।
0: अच्छा अच्छा, बताओ क्या है जवाब।
1: दूध, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं मिल्क।
0: एकदम सही, क्या तुमने भी दूध कहा? बहुत बढ़िया,
1: मजा आया ना। अब यार ये बताओ, इसको छिलो तो कोई आवाज नहीं आती, इसको खाओ तो भी कोई आवाज नहीं आती, पर इसके छिलके पे जब कोई फिसलता है तो बड़ी जोर की आवाज आती है। है जी, क्या बोला? केला यानी बनाना। ओए सही जवाब। ओ यार, आज खाने के बारे में कितना कुछ सीखा हम सबने। हर तरह का खाना खाओ और सेहत बनाओ। अब वक्त है मिलने का हमारी प्यारी नटखट चुलबुली चमकी से। सुनते हैं कि आज चमकी कौन सी मजेदार बातें कर रही है अपने दोस्तों से।
3: कल हमारी गली में पिकनिक थी, सब लोग अपने घर से अलग अलग चीजें बना के लाए थे। पता है बुम्बा ने बोला ये सब पौष्टिक खाना है, मगर सब इतनी ढेर सारी सब्जियां क्यों खाते हैं? मैं बात में पूछती हूँ। हाय, मेरा नाम है चमकी और आप?
4: अब्दुल रहमान।
3: अब्दुल रहमान जी, पौष्टिक खाना क्या होता है?
4: जैसा कि नाम से ही मालूम है कि पौष्टिक खाना बच्चों को देने से उनकी हड्डियों में मजबूती पैदा होती है, उनका दिमाग बहुत अच्छी तरह काम करता है, उनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा हो जाता है, उनका पढ़ाई में रुचि होती है, खेलने में भी रुचि होती है। पौष्टिक खाना जीवन में तरक्की करने के लिए निहायत जरूरी है।
3: और आपके गांव में कौन कौन सी पौष्टिक सब्जियां उगती हैं?
4: पालक है, टिंडा है और बहुत सारी सब्जियां जैसे लौकी है।
3: मुझे भी पौष्टिक खाना खाना चाहिए ताकि मैं और स्ट्रांग बन जाऊं। मगर मुझे ना कुछ कुछ हरी सब्जियां बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, क्या करूं? हाँ, गुड़गांव में अपनी दोस्त से पूछती हूँ।
5: मेरा नाम शांति है।
3: शांति, सुमित और उसके भाई बहनों को कौन सी सब्जी अच्छी नहीं लगती?
5: वो तो बस आलू की ही सब्जी पसंद करती है और कुछ भी नहीं खाना चाहती है।
3: हाँ, सिर्फ आलू? हाँ, फिर शांति तुम उन्हें कैसे खिलाती हो?

0: उन्हें कहती हूँ कि बेटे खा लो, थोड़ा भी खाना चाहिए, ताकत की चीज है हरी सब्जी खाने से, मगर खाती नहीं है उन लोग।
1: अरे मेरे गुड़गांव के दोस्त तो कोई भी सब्जी नहीं खाते। बुंदेलखंड में पूछती हूँ, हाय आपका नाम क्या है?
2: हमारा नाम है लक्ष्मीबाई।
1: आप अपने घर पे कौन कौन से पौष्टिक खाना बनाते हो?
2: दाल बनती, चावल बनते, पालक की भाजी बनती, मूली का साग बनता, सरसों का साग बनता, मेथी का बनता, चनों का भी बनता, सब बना के ये बच्चों को देती है।
1: अरे वाह, बुंदेलखंड में मेरे दोस्त तो सारी पौष्टिक सब्जियां खाते हैं। एक और दोस्त से भी पूछती हूँ, हाय वैष्णवी, ऐसी कौन सी सब्जी है जो तुम्हें अच्छी नहीं लगती?
3: पालक।
1: ओ फिर तुम पालक कैसे खाती हो?
3: जब मम्मी अपने हाथ से खिलाती है।
1: हाँ मुझे भी तो बहुत अच्छा लगता है। शारदा आप वैष्णवी को पालक और पौष्टिक सब्जियां कैसे खिलाती है?
4: मैं वैष्णवी को पालक कहानियां सुना के खिलाती हूँ।
1: ये अच्छा तरीका है, मैं भी कहानी सुनकर सारी सब्जियां खाऊंगी। मुझे तो भूख लग रही है। चलो सुने कि पौष्टिक सब्जियों को और स्वादिष्ट कैसे बना सकते हैं?
2: मैं करेला बनाती हूँ तो उसको छील के और अपने कढ़ाई में रख देती हूँ। तेल डालू 2 चम्मच, फ्राई करी लाल हो गए इनको निकाल के रख देती हूँ। फिर 1 चम्मच दालचीनी, जीरा का को गरम मसाला और अजवाइन है, मेथी है, सब हम लोग पीस के उसको मसाला अच्छा बना के उसको फ्राई करके बच्चों को फिर खिलाते हैं।
1: अब मैं सब कुछ खाऊंगी, तुम भी सब सब्जियां खाना, ठीक है दोस्तों? ओके बाय
5: बाय। मजा आया ना दोस्तों।

0: दोस्तों मजा आया ना आज का हमारा जो एपिसोड था यानी के गुगली महाराजा। भाई बात क्या बात है, गुगली महाराजा की तो बात ही अलग है। और फिर हमारे कार्यक्रम में जो कितनी अच्छी अच्छी बातें करी गई हैं, भाई हरी सब्जी क्या होती है, हरी सब्जी मुझे तो उसका कलर ही बहुत अच्छा लगता है। आपको पता है कि हरी सब्जी का जो रंग होता है यानी कि ग्रीन, और ग्रीन रंग तो सभी को पसंद होता है जैसे, तो इस पर पेड़े भी कितने हरे हरे हैं तो वो हमें कितने सुंदर लगते हैं, और जब पेड़े सुंदर लगते हैं तो उसी तरह सब्जियां भी सुंदर लगती हैं, और जब सुंदर सुंदर चीजें हम खाएंगे तो हम सुंदर सुंदर बन जाएंगे। अब इस बात पर हमारे साथ में मौजूद है पजनपुरा की गीता जी, तो आइए वो क्या कहती है इस बारे में।
1: नमस्कार, मेरा नाम वर्षा है, आपका नाम क्या है?
2: नमस्कार, मेरा नाम गीता है
1: जी। तो गीता जी, जैसे कि अभी देख रहे हैं कि हरी सब्जियों के बारे में बहुत झगड़ा होता है कि बच्चे हरी सब्जियां नहीं खाते हैं, तो क्या कारण हो सकता है कि बच्चे हरी सब्जियां क्यों नहीं खाते हैं?
2: उनका कारण एक ही है कि वो हरी सब्जी पसंद नहीं करते, इसीलिए उनको अलग तरीके से हम खिला सकते हैं बच्चों, क्योंकि हरी सब्जी यहाँ तक कि बड़े भी नहीं खाते
1: जी। तो इनका मतलब हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि कोई ऐसा उपाय है जिस तरीके से हम उनको हरी सब्जियां खिला सकते हैं?
2: हाँ, ऐसा दूसरा तरीका भी है, जैसे कि हम हरी सब्जी है जैसे लौकी है तो उसका हम कोफ्ता बना दें तो बच्चे पसंद कर लेंगे खाने के लिए, और दूसरी तरह जैसे पालक है तो पालक भी नहीं खाते तो उनको मतलब पालक पनीर जैसा पनीर मिला के बनाए तो वो पसंद कर लेंगे, कि आलू में बनाए तो पसंद कर लेंगे। ज्यादातर बच्चे आलू ही पसंद करते हैं, इसलिए आलू में हम मिक्स करके बना सकते हैं, या पालक पनीर ही बनती है ना तो वो वैसा ही बना सकते हैं तो बच्चे पसंद कर लेते हैं।
1: अच्छा, और क्या क्या वजह है जिनसे बच्चे नहीं खाते हैं, मतलब बच्चों को खाने में अक्सर क्या पसंद होता है?
2: बच्चों को खाने में अक्सर पसंद होता है कि उनको चटपटी सब्जी मिले, और हरी सब्जी तो वो बिल्कुल पसंद ही नहीं करते, जैसे कि आलू हुए, छोले हुए, और दाल, मतलब ये दाल चावल तो वो खाते ही है, और बल्कि हरी सब्जी बहुत ही कम खाते, इसलिए हमें अलग तरीके से उनको बना के हरी सब्जी, क्योंकि पौष्टिक होती है तो उनको आहार मिलना चाहिए, तो इसलिए हमें दूसरे तरीके से बना के उनको खिलाना चाहिए
1: जी। आपने बताया जैसे कि हरी सब्जी पौष्टिक होती है, तो किस तरह से हमारे शरीर को फायदा करती है इसके बारे में थोड़ा बताएं।
2: हमारे शरीर को जो हरी सब्जियों से विटामिन मिलती है तो फायदा ही तो होता है कि हरी सब्जियां ना खाएं तो, कि अगर हम बच्चों को खिलाएं ना तो मतलब पौष्टिक के आहार कम ही हो सकती है,

0: जैसे कि बड़े हों या छोटे बच्चे हों, तो हमें ज्यादा जरूरी है कि उनको हरी सब्जी खिलाना चाहिए, क्योंकि उनको आहार मिले,
1: जी
0: पौष्टिक आहार मिले। और इसके अलावा कि तो मतलब हमें नुकसान भी बता सकते हैं, इसलिए हमें हरी सब्जियां देख के खानी चाहिए।
1: धन्यवाद।
0: धन्यवाद।

0: ही बहुत स्वागत हम करत हेंगे। हम तो हेंगे भैया आपके संगे आपकी रेडियो दोस्त वर्षा लेके हाजिर हैं आप सबके लाने कार्यक्रम हमारी संस्कृति हमारी विरासत। जी हाँ श्रोताओं, हमारी संस्कृति और हमारी विरासत जी दो ही चीजें अपने तय की बहुत ही ज्यादा मशहूर रहती हैंगी। और आप सब जने जानते हैं कि बुंदेलखंड की चर्चा हर जगह होती हैगी जब खूबसूरती की बात करी जाए या फिर विरासत की बात करी जाए या धरोहर की बात करी जाए। और ऐसे ही में अपन और क्या कर रहे थे एक कार्यक्रम के माध्यम से जो अपने साथी केवल जिनने नाम सुनो है गो कि अरे फलानी जगह ऐसी जगह हैगी और उतने हमें जाने हैं गो और उतने के बारे में उन्हें कछु पता नहीं है। तो अपन और कोशिश कर रहे थे कि एक कार्यक्रम के माध्यम से जो है उन्हें उस जगह को घुमा देवे। एक कथ है ना कि अपन सुन के भी सुन के और आंखें बंद करके अपन समझत के उस जगह पे पहुंच गए और विस्तार से अगर कोई बता रहा हो के बारे में तो है कि नहीं। सो अपन ई कार्यक्रम से आज आपको ले चला थेंगे चंदेरी। जी हाँ साथियों, आपने चंदेरी की साड़ियां तो बहुत सुनी हुई है लेकिन चंदेरी को ऐतिहासिक का रहस्य है गो उके बारे में भी अपन और ई कार्यक्रम के माध्यम से जाना थेंगे। तो आप देर नहीं कर रहे थेंगे, हम आपको ले चले थे सीधे चंदेरी। काहे के पहुंचवे में तना टाइम भी लगे होते हैं, ठीक है। तो चलो अपन सैर कर भी चले थेंगे और संस्कृति के बारे में जाना थेंगे चंदेरी की और जी के बारे में विशेष पूरी जानकारी दे रहेंगे अपने रेडियो साथी जगरूप जी।
1: वृक्ष लगाकर करो श्रृंगार, धरती माँ की यही पुकार।

सुबह और मिल चैन धसान, जिनको पानी सुधा समान, पर्वत जंगल आलीशान।

0: पेड़ पौधों से करोगे प्यार तो रहेगा जीवन खुशहाल। वृक्षों को कटने से बचाओ, वृक्ष ही जीवन है। वृक्ष लगाइए, जीवन बचाओ।
1: वीर सिंह यादव के स्वर में अभी हमने ये लोक गीत सुना, अपनो प्यारो बुंदेलखंड, भारत माता को हृदय है। बिल्कुल मित्रों, ये गीत भी बिल्कुल बयां करता है हमारे इस बुंदेलखंड को। हमारा बुंदेलखंड, हमारा ये जो प्रदेश है, जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की हम बात करते हैं, तो हमारे भारत देश का एक मध्य स्थल है, हृदय क्षेत्र है। तो अब हम आगे बढ़ें और चलते हैं हृदय स्थली की एक ऐसी जगह पर जहां बहुत ही लोक लुभावन, संस्कृति से परिपूर्ण और प्राकृतिक सौंदर्य निहारते ही बनता है। हम बात कर रहे हैं वही चंदेरी की, तो चलते हैं चंदेरी। श्रोताओ, आज हम आपको

0: ले चलते हैं अपने बुंदेलखंड की, हालांकि ऐतिहासिक जो जानकारी आप सभी को हम अब तक पहुंचाते रहे हैं। आज प्रातः काल का वक्त है और चंदेरी जो कि ऐतिहासिक नगरी है अपने आप में एक रमणीक जगह है जो कि देखने लायक ही है। और आज हम बस्ती से जब आए यहाँ, जागेश्वरी देवी माँ का प्रसिद्ध मंदिर है जो कि पहाड़ पर बना हुआ है और यहाँ पहाड़ से हम देख रहे हैं, सीढ़ियां चढ़ते हुए आगे हैं ऊपर, जो यहाँ की नगरी को देख रहे हैं तो देखते ही बन रही है। और हम चलते हैं जागेश्वरी मंदिर माता रानी के दरबार में। हमारे साथ हमारे साथी भी हैं मोहन वर्मा जी, जो कि हमारे साथ ओरछा से ही आए हैं अपनी गाड़ी से। हम अंदर प्रवेश करते हैं मंदिर में और अब हम मंदिर प्रांगण में आ गए हैं तो सामने ठीक खड़े हैं जहां पर शिव जी का स्थान बना हुआ है प्राचीन, और हनुमान जी महाराज की भी प्रतिमा है बगल में। देखते हैं कि यहाँ पर प्रभा देवी और काफी जो चरण सेवक हैं उन्होंने कुछ व्यवस्थाएं कर रखी हैं। काफी बड़ा जो आयताकार जगह में ये स्थापित मंदिर, जगह जगह पहाड़ों को तराश करके कुछ मूर्तियां भी स्थापित की गई हैं। और श्रोताओं हम आपको बता दें कि माँ जागेश्वरी देवी के मंदिर में हैं हम जो पुजारी हैं, उनसे हम थोड़ी सी जानकारी करते हैं, माता रानी के चर्चा करते हैं माता रानी जी के विषय में। आप अपने बारे में बताएं, आपका शुभ नाम।
1: हमारा नाम मनोज कुमार चौबे है, उपनाम जुग्गे महाराज है। यहाँ हमारे पूर्वज सन 1631 से हैं और वहाँ पूर्वजों द्वारा जो ज्ञात है यहाँ पे उस समय झांसी स्टेट रहा है यहाँ का, झांसी स्टेट था फिर ग्वालियर हुआ। यहाँ ये विंध्य मेखलाओं के बीच माँ जागेश्वरी वहाँ विराजी हुई हैं, जो हिंदुस्तान के 52 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है। यह शक्तिपीठ हिंदुस्तान के जो 52 शक्तिपीठ हैं, माँ सती के अंग हैं। 52 अंग जो भगवान शिव की भार्या के इस मृत्यु लोक में अवतरित हुए हैं उनमें से यहाँ माँ का मुख है। उसके साथ एक किंवदंती जुड़ी हुई है, उस किंवदंती में बताया जाता है कि राजा कुरुम देव हुए हैं कुरुम शासक, और उनके समय में यहाँ प्राकट रूप है। उसकी खोज बंसीधर चौबे नाम के पंडा जी हुआ करते थे जिन्होंने की, फिर उनको ये तीर्थ दान स्वरूप दे दिया गया था। इसके बाद यहाँ पर जो शिवलिंग है 2251 शिवलिंगों के साथ शिव शक्ति का संगम केंद्र है, वाणी से प्रमाणित नहीं होगा। यहाँ एक प्रतिमा है भगवान शिव की और पार्वती की, जो बाहें हाथ में डाले हुए हैं एक दूसरे के, तो ये शिव शक्ति का संगम केंद्र वह प्रतिमा प्रमाणित करती है। यहाँ 7 झरने हैं, 7 झरनों का स्वाद भिन्न है। इस तीर्थ में आए हुए श्रद्धालुओं के लिए संतान प्राप्ति का अद्वितीय केंद्र है। माँ कन्या के रूप में दर्शन दिए हैं राजा को, और राजा को स्वप्न में प्रकाशित किया था कि माँ जागेश्वरी मैं प्रकट होना चाहती हूँ, तू मंदिर का निर्माण करवा, मंदिर का निर्माण करवा की पूर्वाभिमुख, और उसके पट 9 दिन तक नहीं खोलना है। राजा अविश्वासी हुआ करते हैं, उनके चाटुकार इतने हुआ करते हैं कि विश्वास करना सहज नहीं होता, क्योंकि कौन सत्य बोल रहा है कौन असत्य बोल रहा है। तो राजा ने मंदिर का निर्माण तो करवाया लेकिन पट 9 दिन की बजाय 3 दिन में खोल दिए, तो माँ का मुख निकला हुआ है।
0: अच्छा,
1: माँ के मुख के ही दर्शन होते हैं और ये संतान प्राप्ति का अद्वितीय केंद्र है। यहाँ के झरनों के जल का पीछे जो कुंड बना हुआ है बताते हैं कि ये रोगों को दूर करता है। यहाँ आने पर स्वयं प्रमाणित होता है कि ये भौगोलिक परिस्थिति से तपस्थली रही है।
0: बिल्कुल,
1: और ये तपस्थली स्वतः प्रमाणित करती है, जब जीवधारी यहाँ कोई भी आता है तो उसे यहाँ आने पर अलौकिक आनंद की अनुभूति होती है। और इस तीर्थ में शिव शक्ति के संगम केंद्र पर यहाँ भगवान शिव की विशेष आराधना की जाती है। श्रावण मास में 2251 शिवलिंगों का एक साथ अभिषेक किया जाता है और माँ का भी अभिषेक होता है। नवरात्रि में यहाँ पर काफी रस रहता है,

0: की नवरात्र में यहाँ मेला नहीं भरता, लेकिन चैत्र की नवरात्रि में यहाँ मेला भरता है और दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं, चुनरी लाते हैं। जैसे लोगों की कावड़ यात्रा होती है, यहाँ पर चुनरी यात्रा होती है। जगह जगह से लोग चुनरी लाते हैं, अपनी आस्था को यहाँ माँ के पास प्रकट करते हैं। माँ के प्राकृतिक नेत्र हैं, जीवधारी जब सामने खड़ा होता है तो माँ स्वयं देखती हैं। यहाँ सामने खड़ा है तनमुख हो ही जीव मोहि जबही और जन्म कोटि अघनासे हूँ तबही। 11 वर्ष से यहाँ रामायण चला रहा हूँ जो निरंतर गति में है, और ये तप स्थली, भजन स्थली, तंत्र स्थली, सिद्ध स्थली और शक्तिपीठ है। इतने प्रकरणों के समाहित है ये। यहाँ पर दत्तात्रेय की प्रतिमा है, जहाँ अनुसुईया जी ने कमंडल से जल छिड़क करके उनके सतीत्व को नष्ट करने के लिए जब तीनों देवताओं को भेजा गया था, ब्रह्मा विष्णु महेश को, तब उनको बाल स्वरूप बना दिया गया था। बाल स्वरूप प्रतिमा भी यहाँ है, और यहाँ पर 2251 शिवलिंगों के साथ दत्तक गणेश भी हैं, दक्षिणावर्ती गणेश। यहाँ जितने गणपति हैं वो सब दक्षिणावर्ती हैं, सब दक्षिणावर्ती हैं, और यहाँ भक्त और श्रद्धालुओं के लिए अद्वितीय शांति प्राप्त की जाती है। यहाँ पर भिखारी नहीं है, कोई भी भिखारी यहाँ नहीं मिलेगा। और यहाँ पर शुरू से ये नियम है कि अंदर जो पुजारी भी अटते हैं, जो अन्य तीर्थों में कल्चर है कि भक्त आया नहीं कि पुजारी अटे, यहाँ पर इस तरीके का कोई स्वरूप नहीं है। यहाँ आने के बाद भक्त स्वतंत्र है, वो अपनी आराधना अपने हिसाब से कर सकता है, उसको कोई ना भिखारी छेड़ेगा ना पुजारी छेड़ेगा। यह विशेष पवित्रता इस तीर्थ की हमेशा से है और रहेगी।
1: आप और जो भक्त आते हैं, पर्यटक आते हैं, तो उनसे आप क्या अपेक्षा रखते हैं, क्या कहना चाहते हैं उनको यहाँ के स्थल के बारे में, कि जैसे देखते हैं कि कभी क्षतिग्रस्त भी कर देते हैं या साफ सफाई को लेके उदासीन रहते हैं कई लोग, तो उनको किस तरह से आप कुछ कहना चाहेंगे?
0: यहाँ आने वाले भक्तों श्रद्धालुओं को समझाते हैं, और साफ सफाई यहाँ हम स्वयं करते हैं, पोताई स्वयं करते हैं, रखरखाव स्वयं रखते हैं। यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई सहयोग प्रशासनिक या नेताओं से नहीं है। और यहाँ पे 11 वर्ष से रामायण चल रही थी, उस रामायण को यहाँ के नेताओं और कर्मचारियों ने मिलकर के छेड़ा था, पंडा परिवार को भी सताया गया, और यहाँ पर विकास तो नहीं किया गया, अभी तो सताया जरूर गया है। व्यवस्थाओं को कभी बनाने की किसी नेता ने या कर्मचारियों ने कभी कोई कोशिश नहीं की है।
1: आप हमसे जुड़े और
0: पर्यटक आते हैं, पर्यटकों के लिए कोई शिकायत नहीं रहती, पर्यटकों का लगा भव्य स्वागत किया जाता है। बाहर से विदेशी जो पधारते हैं उनको विशेष तरीके से स्वागत किया जाता है और उनको आदर सम्मान दिया जाता है। जो भी बाहर से पर्यटक आते हैं वे यहाँ प्रफुल्लता से बाहर जाने के बाद यहाँ की तारीफ करते हैं।
1: जो हमारे देश की, हमारे भारत माता की शान और एक आदर्श है कि अतिथि देवो भव, तो उसका आप साकार करते हैं।
0: यहाँ अतिथि देवो भव को साकार करना हमारा कर्तव्य और दायित्व बनता है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आप जुड़े और अपनी बातचीत की हमारे साथियों के लिए, आपको पुनः नमस्कार, धन्यवाद। और मित्रों यहाँ पे काफी दर्शनार्थी भी हैं, तो हम उनसे बात करते हैं। आप अपने बारे में, आपका शुभ नाम क्या है दादाजी?
2: हमारा नाम रामेश्वर प्रसाद याग्निक, रिटायर शिक्षक। हमने 40 साल मास्टरी करी, 20 साल मिडिल स्कूल, 20 साल हायर सेकेंडरी स्कूल, 1 साल जावरा रहे।
1: तो आप उन्हें तय किए हो?
2: यही किए।
1: अच्छा, तब तो आपन कैसो महसूस करते यहाँ जन्म लेके ऐसी अच्छी तपोस्थली में, क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ के बारे में?
2: हम जो है देवी जी की बहुत अनुकंपा है हम पे। हम बचपन से आ रहे हैं, 5 वर्ष की आयु से आ रहे हैं, देवी जी की उनकी कृपा से हमारा सब भंडार भरपूर है, और हम जो है उन्हीं के आशीर्वाद से फल फूल रहे हैं। हमें किसी का ना देना है ना लेना है, बस माँ का दर्शन हो जाते हैं, दिन भर चैन से कटता है।
1: आप शिक्षक हैं और हमारे जो युवा साथी हैं उन्हें आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं?
2: बस सब खूब धर्म के प्रति आस्था बनाए रखें, धर्म में आस्था बनाए रखें, और हमारे पंडा जी ने अखंड रामायण चल रही है, राम भद्राचार्य जी महाराज ने चालू करी है। यहाँ पंडा जी को बहुत मेहनत करते हैं, सबको खाना खिला रहे हैं, सबको चाय पानी ना, सबको
1: रामचंद्र जी का मंदिर है।
2: हाँ, वो अच्छा। खंगारों का है। हाँ। और वो जो है किराए पे

साथियों, अभी हमने धन कुंवर के स्वर में ये बुंदेलखंड पर आधारित लोकगीत भी सुन लिया और अब वक्त हो चला है हमारे आज के इस कार्यक्रम से आप सभी से विदा लेने का। और मित्रों, विदा तो लेना ही है, आपकी अब वारी है, नंबर है आपका कि आप हमें फोन लगाकर बताएं कि ये जो कार्यक्रम है, हमारी संस्कृति, हमारी विरासत, आप सभी को कैसा लगता है कार्यक्रम। मित्रों, अगर आपकी चिट्ठी या फोन आ जाते हैं तो हमें बहुत ही खुशी मिलती है कि चलिए हम जो कार्यक्रम आप तक पहुंचा रहे हैं वो आपको बेहद पसंद भी आ रहा है। तो आप हमें अपनी प्रतिक्रिया, अपने सुझाव, फीडबैक जरूर देते रहें हमारे इस कार्यक्रम को और बेहतर बनाने के लिए। और हाँ, हम आपको बता दें, अगर आपकी जानकारी में अपने इस क्षेत्र में, अपने बुंदेलखंड में ऐतिहासिक, आपके गांव की कोई विशेषता है, आपके गांव में कोई ऐतिहासिक मंदिर या ऐतिहासिक किला या मठ, जो भी इतिहास से जुड़ा हुआ है, आप जरूर हमें बताएं। 9425-1417-26 पर अपने सुझाव दे सकते हैं। नंबर पुनः सुने, 9425-1417-26।

आपके फोन का या पत्र का इंतजार करेंगे। मित्रों हम आपको बता दें कि आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं हमारे इसी नंबर पर और लिख सकते हैं अपने गांव का नाम, अपना नाम और कार्यक्रम के बारे में कि आपको कैसा लगा। तो बस अब अपने रेडियो साथी जगरूप को दें जाने की इजाजत। अगले कार्यक्रम में फिर होगी ऐसे ही मुलाकात। तब तक के लिए स्वीकार करें नमस्कार, खुश रहिए, मस्त रहिए।

0: नमस्कार दोस्तों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे आप हैं इस वक्त अपने दोस्त माता दीन के संग में। और दोस्तों हम लेके आ गए कार्यक्रम बुंदेली किस्सा। तो आओ दोस्तों सुनते हैं कहानी को, लेते हैं कहानी को आनंद। तो साथियों आप ऐसे ही बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे अपने दोस्त माता दीन के संग में।
1: कोते राजन के कुमार आओ और एक हती बानिया के लड़का।
2: अच्छा मतलब एक हती राजा के कुंवर,
1: एक हती बानिया के।
2: आज दो जने हो गए,
1: दो जने हो गए।
2: हाँ
1: अच्छी तरह से रहे उनकी दोस्ती।
2: हाँ
1: उनकी दोस्ती रहे सो अपने काम काजों के पढ़ लिख के जो भी याद है सुबह खून चले जावे।
2: दो ही के दो,
1: दो ही के दो शिकार ला भी अपने घोरों मस्के, भी अपने घोरों मस्के।
2: हाँ
1: अब जब वन में पहुंच गए
2: हाँ
1: तो जा शिकार खेली, बस शिकार खेली, खेल खाल के अपने घर पहुंच गए। अब कल को दिन बरती तुमने फिर कर लिया।
2: अच्छा
1: तो कल के दिन में भी बोले बोले कल बीरन बोले अब बीरन ने कही कि हम तो भाई ससुराल जा रहे।
2: अच्छा
1: अब राजन को नहीं है तो पतो के हमारे ससुराल देखे थे। अब राजन को बस बीरन थे अपने बानिया कितना शिकत बीरन।
2: अच्छा
1: हो अब भी है बादशाह, बीरन और बादशाह दोनों जने कह के राजा हुई बादशाह। तो बस बीरन ने जिसे बार मार बनवाए, दाढ़ी फाड़ी बनवाई, बार छटवाए, कल कवैया कहाँ के जाने छत है कल ससुराल हो जा रहे।
2: अच्छा
1: अब जब नाव घेगो से नाव खून रख तो गांव भर को के फलाने के ब्याह है, फलाने के लगन है, फलाने के सतकरा है, फलाने के पक्या थे,
2: जा सही की आप
1: नाव खून सब पतो है। नाव खुआ तो राजन की कुमारी की ससुराल को पतो
2: ऐसा।
1: सो बस अब बीरन के बार बन गए, अब राजन के बादशाह के बनने। सो बादशाह के बार बने तो बादशाह बोले बोले कर ले सताएगा कब, बोले कर ले ये राजन के राजा, बोले कर ले बीरन तो जा रो ससुराल है हमारा, हम कैसे चले जावे। अरे बोले कर ले राजन के राजा आप कैसे ससुराल तो पृथ्वी पे काउगी है ही नहीं ना।
2: अच्छा
1: हाँ हाँ हाँ सो बस बोले कर ले अच्छी सब भी तीन जने हो गए।
2: अच्छा
1: के नाव होगा बादशाह होगा बीजन हो गए, अब तीन जने की दोस्ती हो गई। बस अब चले ससुराल के जाने। तो उनके राजन के कुंवर के पिताजी ने एक गेहूं कुज्जा खुदवाई थी, सुबह में बीजक लगवाओ तो कि जब बीजन की ससुराल को गल गई वो जब बादशाह की ससुराल को गल गई।
2: अच्छा
1: गली में से बटी लगी, उन्हें लगी प्यास। तो राजन ने हुक्म ढीलो चलो बीजन पिया पानी, तो बीजन गौ पानी पीवे के लाने सुबह ने बीजक बांचो।
2: अच्छा
1: बीजक बांचो वामे सुबह में गली अलग अलग। बीजन हो बदमाश, बीजन बदमाश हो।
2: अच्छा
1: तो बीजन ने कहा करो किस्ता के पानी पी के बावली में और वह बीजक को भरा दो
2: ले उसका। तो
1: अगर हमारे अगर जब बीजक को जो राजा पानी पी भी आ रहा तो जब बांचे ले संग छूट गो

0: इसे क्या है हमारे जैसे सारे चलेंगे
1: चलेंगे
0: तीनों
1: जने
0: जाते बीजन बदमाशी के रवा सुबह सब राजा पानी पीवे गए तो राजा ने पानी पियो जो तमाम बावरी में हेरी सुबह में बीजक में गिराव लगो तो राजन ने अपने खोगा निकले उलीच उलीच के भाई
1: धो दाओ
0: और फिर उगे बाचो बाचो भाई सुबह ने उन्हें प्रधान पूरा लिखो कि जा राजन के कुमार को रास्ता गई वो जा बीजन के कुमार को रास्ता गई दोनों जन तो बोले कहले तुम वे बीजन बोले कहिए राजन के राजा बोले तू बहुत बदमाश है बोले कहले पुरखन को बीजक के ने मिटा दिया है हट कर ले कि हम यहाँ पे ससुराल जाते हैं बोले कल उनकी शर्तें लग गई
1: अच्छा
0: बोले कल जो पहले आज विदा करा के वो जिस बाउरी पे ठहरे क्या जिन किसी को भी जाए
1: सही सही
0: तो बस बेटे तुम भी अपनी ससुराल चले गए अब भी अपनी ससुराल कर ले वो जी ससुराल का नाउ बोले कल जी राजन के संग चले
1: सही है
0: अरे हमारे वर के संग का चले हम सेठ आदमी और राजन के संग जी और हेल्पर चलते हैं कल तो राजन की कुमार और सताई घर का दो जने जा रहे बीजन अपने ससारे चले रहे अब सब राजन के कुमार जा रहे सो बन कजली में पहुंचे तो अब राजन की कुमार को लगी प्यास बोले कल सताई का बोले कल ये राजन के राजा कल हमें प्यास बहुत जोर से लग रही और हमारे सागर शरीर से प्राण निकलते जा रहा है इसे पानी को देखो बोले कर राजन के जाने बारह कोस में ना है पानी ना माए पानी अपन वन में हैंगे बोले कर ले अरे क्या क्या बोल रहा है ना गाते बोले कर ले हो महाराज सुबह एक एक खैबर पे चढ़ी सुबह पे देखते भी लंबे जिस ऊंची जांगा हो सब दिखा ऊंची जांगा हो गई चढ़ी तो ये उत्तर दिशा में बगली मर रहा है तो नाव ने सोची कि बिन पानी की बगली रहती नहीं है पानी इतर होगा
1: बिल्कुल
0: तो बोले कर ले राजन के राजा पानी तो हमें कहीं दिखाना नहीं है उत्तर दिशा में बगली मर्रा रही और बिन पानी की बगली नहीं रहती पानी जमी हो गई बोले कर ले चल तो ले जा सुबह लोटा घड़ी ले अपनी अरे खुली जाए सुबह जन में दे पाई खुली से जीत गए कि हाँ आराम से बिन नगर चले गए काकिस्ता हाथों के जोनवर लड़की राजन को ब्याई थी वो नदिया में स्नान कर रही
1: अच्छा
0: नदिया में स्नान कर रही तो सुताई अक्का ने कहा करो कि झटपट पानी पी के और मचो सचो भर के और पहुंच गए बोली कल सुताई अक्का बोली कल ये राजन के राजा बोले कल उस तालाब में पानी है सो ठीक है तुम ले आए बोले कल हाथ जाके ना पूछो पानी पी लो तुम बोले आप तो पानी जब पिए जब जब बात पूछ ले बात है क्या क्यों पानी जो मचो लिया ऐसा जल्दी हो थे कौन के मचो सचो घर के आ गए बोले कल महाराज कल वो तालाब है वो बड़ी अजीब का लड़की सपर रही एक तो उसके साथ हमारा मूर्छा छा के गिर पड़ी तुम तो सब मचो सचो भर लिया वो हम खुद प्यास में मर जा रहे अरे बोले कल बगरा गए वो पानी बगरा के तालाब पे पहुंच गए तालाब पे पहुंच गए तो तालाब पे पहुंच के बाद वो कल सुधायक का बोले कल ये राजन के राजा बोले कल इसको लड़की को पूछने तो जरूरी जब मुंह बोले कैसे
1: सही है
0: जब पीछो करें अपन ताए को और मुंह करें ताला ताए को बोले कल कहो उनने कही

0: नाव कक्का ने कही के
1: नहीं राजन ने कही जावा
2: राजन ने कही जावा
1: राजन ने कही जावा हां फिर कही उनने अब्बा बोले जल में ठाड़ी जोन
0: अच्छा
1: अब्बा बोले
0: लड़की जो नहा रही
1: जो नहा रही बा बोल रही

0: अक्का बोले कल राजन के राजा सुनो हमारी बात अभी से बोल दो ना।
1: सही है,
0: अभी से बोल दो ना, बोलो कब का बना दे वाले
1: बताओ।
0: हैं सही कहे, बोले कल नहीं, अबे तो हम इससे और बोल देंगे।
1: हाँ
0: अब राजा बोल रहे हो।
1: हाँ
0: भूले।

0: कलिया लेखो बाता दियो रे सो लगे काहू के हरिद्वार जी। इन्हें गली बता दो सो काहू के द्वारे लगे
1: अब पहुंच जाए।
0: अब कह हाथ उठाते अगर बता दिए अब वह जल के भीतर हुई। अब इनको समझ में नहीं आ रही जल की जाए इनको बदल शरीर है कैसे मुँह करे माएक हो और पीठ तरह इंताएक हो कई के अब जाइए बताया सुनने के बाद माँ से बोल

0: क्या बात मिल जाओ।
1: अच्छा
0: बाने मिली ना बताई न बाने बदन काड़ो जल नीर में रही बा।
1: अच्छा
0: अपने पर्दा भी कर रही बस साहब उनने किसी गली तो पूछ ही ली गली पूछ के उनने घूरो बढ़ाओ गाँव के लाने तैयार। अब बाने सोची कि ये मुसाफर अगर पहुंचो जात तो गड़बड़ हो जाए बाने जल्दी पल्दी सफरो और सफर फूर के और बाप ने गेल चली जो ने ये हती से जात है भवन द्वारे छोटे अक्का को देखो तो ससुराल सुबने द्वारे उनने अब पहुंची घरे सुब गई घरवाओं को बंदो। अब भाभी से बोली भी

0: तुम
1: भाभी ने कहा ऊंचे कंदीला नंदी नीचे करो बातन जिन बतराओ
0: ऐसे
1: और तुम्हारी आ गए चाला
0: अब लुबग्गू आ गए तुम
1: लुबग्गू तो उनने फिर भाभी से कही अरे भाभी आज नाश्ता तुम न बनाओ आज हम बनाए
0: ऐसा
1: भाभी से कही सुबह सुनने घरेला उतार के अपने नाश्ता बना दी के लाने तैयारी की तैयारी करी अब इन दोनों ने कही चला
0: अच्छा
1: बोले कल देखो अपन को कगुआ गेल कुमार बना दी
0: बिल्कुल
1: अब भोजन नहीं करने अब भोजन नहीं करने इसके यहाँ वाला थे जी
0: सही कह रहे
1: अब खुला खुला थे अब नहीं खुलो हाँ तो सलाह हो रही दो जन की सलाह हो रही नाव की और राजन की सुबह सब अच्छी से उन्हें व्यंजन की भोजन बने भोजन बना के और आज्ञा दे दी भोजन के लाने तो दोनों जने भोजन को गए भोजन को गए साफ सुनने चाहे एक लो चाहे खाई हुई चाहे दो खाई हुई और वहां से बना थना न जाओ।

0: देखो रिश्तेदारी है वो जा तुम दिन चटकाओ और टूटने से जब जुड़े नहीं वो जुड़े सुन में गांठ पर गांठ पर ये जाओ मैं
1: नहीं गए
0: उके ते रुक गए जो ने परोस की
1: हां परोस की ने कही जवाब हां
0: तो परोसन ने सोची कि अगर हम भोजन कराओ तो केर बेर को संग है
2: सही है
0: बेर भर के जाओ तो उनने हदीसो जैसे कछु पुटिया पर मूत की कोई रानास में ले गए
1: हां फिर कमाई खोन पुटे पाड़ जा ले गए
0: मैं कहूं वही जहां उनकी रानास थी फिर पहुंच गए हां भाई सतखंडा पे पहुंच गए अब उनने सोची रानी ने कि अगर भोजन में है तो ये भूखी अब रात को है समझ गया ना हो तो हम भोजन नहीं ले जाए तो भोजन उनमें लगा थाली को भी पहुंची तो लगा फारी जो छाजी पे चढ़ी भी तो बिस्किया पे रहती भी तो वो बजो बिस्किया बजो तो उनने बिस्किया की आवाज के सुनकर मोर बोल गई बन परोसन दोहा दे रही

अरे आज नहीं तो अरे भोरे जी, अरे अबे नहीं खाओ नहीं तो भोर खा लो, इसे तुम बोलना बाने फिर दो जाकर कहो।

कामनी। अरे खोलो का, अरे किवार जी उन खोलो कंठ के बार निके उन नाव से कई के बार निकल गई। अब जो जो है सुनो साधु ने, साधु ने सुनो दोहा साधु के रामन से। शंख बजे सा जू जा रे

0: शंख बजे से साधु जगे, बम घले रजभूत। अगर इतने में के बम घर रहो वो नहीं जग रहो तो कुछ कब पूछे।
1: सही है, का हो
0: का हो
1: कते दुनिया भगत जा मेरे विश्वना का जाए।
0: अब जब इतनी बातें हो गई तो परोस में पतो होगा कि रानी राजा के पास में भी गई। अब फिर की दोहा कह रही है,

0: लड़की लड़का से लड़की भली रे सो मेरे पे ब्याह जी। अरे ऐसी सासों का काम किया थी तेरी कुखन बांझई हो जाती, और ऐसे सब कुछ जाए तो लड़की होती तो परोस मेरी पे ब्याह शादी कर देती।
1: तो बोलती
0: ये तो गड़िया है ना, सुबह पटक थार जब थार पटक के में भागी आई सुबह मेरे में, अब रात को समझ जब कहाँ जा रहा है जो सवीर हो सोने घोरों मस्को उस चली। सो ससुर साहब ने कही करी दीवान जी ऐसे नहीं चलो, हम आपकी स्वागत कर रहे और सब बात को बाहुराओ और भोजन करो, भोजन करके हम आपकी पूजा कर रहे। ठीक है सुबह भी रहते डट गए, खाना खाओ, खाना खा के और पीना सुनने सजाई तो उन्हें बिदाऊ की कई वो में खाना पीना सब और महीना भर के लाने रखा था। खा पी जे घरे चले गए, बस अब अभी हके सो अब पीना हकावे बारे हके सो जैसे गाँव के बारे करी तो उनमें मार जताई फिर भी भक्त छोड़ के अब खुद उनने हकाई अब सुताई अब काल कबाजी ने हकाई सुबह हका के वह सब कहीं ऐसी और चली हुई तो शाम हो गई से एक बमूरा को पेड़ हो रहे से उतरे बस गए, शाम हो गई से बस गए। बस के में अब बोले कर ले सुनो सुधा का बोले कर ले का कर ले पापन को नहीं छोड़ जाने यही रुकता है। अब बस सुन रही थी, बस सुन रही थी सुबह ने गई के ठीक है सताई अक्का से कही के सताई अक्का ऑर्डर दौरानी है के पति लगाओ तो सताई अक्का गए से तीन पात्र में लगा एक अपन को एक राजन को एक रानी को। ये तीन पात्र में कहा खुल जाओ बोले कल एक आपको एक हमको एक रानी को। अरे बोले कल रानी की फार के फिर दे मैं रानी की फार के मार फिर दे। अब पाता लगती आई तो खाना खाओ, खाना खा के पड़ी पड़ी सोई। अब रानी ने सोची कि जी भगत तो हमें छोड़ के ही इसे का करें, जी सुबह घोड़े की पछाई की ईड़ रखी ईड़ बजत बात बडूर बंदी थी सुबह छोड़ के बाने पीने से मार लाई बडूर कि ये भगे तो जब ईड़ टूटे समय यहाँ का अगर हम सो गए आँख खुल जाए तो हमें इसे कचू किया ले। सुबह सुनने थी सुबह घोरो भंसाई रात भाई को बड़ा सुबह तनो वो तनी बट दूर तनी दूर सो नेक चावा

आखिरे अपन खाजी बताएं अपने जीवन की सभी बातें और सभी अनुभव, तो सुनो जी काकेरे।

0: आने
1: एक बहुत ही नोनो सो कार्यक्रम लेके आए हैं। जी को भैया आप सुनो और सभी पंच सुने। और भैया ये कार्यक्रम को नाम है सुनो जी का कह रहे। तो आज अपन बुजुर्ग दादा भैयान की बातें करें और सुने। और एक क्रम में राम गोपाल दादा हैं, अपन इनसे बात करें और जी अपन को कुछ बताएं। लेकिन ई के पहले अपन सुनत हैं एक बहुत ही नौने से गीत को। जी को भैया गाँव है रजनीश दुबे ने। और देखो ऐसे शब्द कहे इनने इसमें के आप इन शब्दन से गीत में इनने समझाओ है का कही। दरस राम के पाके और हो वे धन्य भाग जहाँ के। अगर दर्शन अपन भगवान राम के पाले हैं तो अपने धन्य भाग हैं। और भैया तो एक गीत को सुनो, आप सुनो सभी पंच भैया।
2: दरस राम के पाके

0: तो भैया अबे सुनो, अपन सब जन ने जो गीत और रजनीश दुबे जू ने कितने अच्छे नौनी तरीके से अपन का गाओ के सुन बताओ है, और अपन सब जन ने सुनो है। अब अपन बात करत है राम गोपाल कुशवाहा जू से।
1: दादा राम राम।
2: राम राम।
1: अपनो दादा नाव का है
2: राम गोपाल।
1: तो दादा अपनी उम्र कितनी है आप?
2: हमारी उम्र 70 है।
1: अपन कागे रे विवाह हो दादा?
2: सेना के पूरा पटो ग्राम सेना जिला टीकमगढ़ तहसील नवाड़ी मध्य प्रदेश।
1: तो अबे आप दादा का करे थे?
2: ये हल्को हल्को काम कर रहे अपने ढो बच्चे देखे ना बस।
1: और
2: वर्कर हम खराब किए काम वाम हम कहते नगर।
1: आप अपने परिवार वाहन से का के वो चाहते हो?
2: परिवार वाहन से का के विचार को जब से तो जैसी समस्या है तो अपने भगत रहे।
1: आप जो बता रहा था कि बुढ़ापे में अपन का कौन कौन सी दिखते हैं लगत और का परेशानी दिखते हैं आती है अपन का
2: बुढ़ापे में? तो देखो ना खाना मुरत एक बात, देखो घाम लगत काम दौड़ नहीं पाओ लिंग नहीं पाओ घूरी फिरा हर एक बात की मतलब नेक में मुश्किल दिखा दो अगली बार।
1: और पैसे वह समस्या है अपनी?
2: अब वह समस्या जो बाल बच्चे खा रहा है हमें नहीं आया हम खा रहे
1: अपने मोड़ी मोड़ा अपने पास बैठ पे आओ।
2: आओ बैठ जाओ जी नहीं आओ थे तू थे।
1: हाँ। अच्छा
2: अस्पताल जाने
1: हैं। और अपने सेवा खुशामत के बारे में आपका क्या सर?
2: सेवा खुशामत सब करा थे जनाब जी बैठे अब बैठे भी हैं मैं तब जलो ठीक नहीं है चला फिर कर लगे तना
1: दिक्कतें हैं उनको अपन कैसे झेल सका था का सका
2: आप झेल सका बोलो बैठ वो है सीधी बात है पैसा जो खर्च तो ठीक ही है। अरे कछु ना कछु ना तो 10 रुपये उसको तो खर्च है आदमी को मान के चलो कछु ना कछु 10 रुपये उठा के चल जाते हैं।
1: दिन भर आपको कैसे कटा था?
2: दो बच्चे उनका दिमाग लगा ले सिगारे सिगारे अपने छाने में चल बस।
1: अच्छा और अबे तो आपका दिक्कत दिखावे की तो दिक्कत कछु है नहीं है ऐसी?
2: हाँ
1: जैसे का आप बुढ़ापे की
2: बुढ़ापे मतलब
1: दिक्कतें आदमी का
2: दिक्कत तो देखे के नहीं होती नहीं है तुम्हें जो कागज है जो जो जो नहीं बांस पा रहे हम मतलब और उसी है दिखा कगदा नहीं बांस पाऊ मेरे दिखा सब।
1: और अच्छा ऐसी कौन अपनी परेशानी है जो आप ना कह सकत हो खावे पीवे की आपकी का इस्तेमाल है?
2: खावे पीवे कौन तभी नहीं आ रहे जो भाई नहीं है तो खा रहा।
1: अच्छा अपने माता पिता की सेवा में और बेटी में का अंतर है?
2: पहले इज्जत रहती समय अनुसार इज्जत रहती इज्जत नहीं आया और पापा जाना फेरी पापा ही जाना फेरी के मतलब अपनी अपनी हो चाह रहा हूँ आदमी हमारे बाल बच्चों जो चीज मिल जाए हमारे को मिल जाए दूसरी की जठानी न मिले दीवानी न मिले ये ऐसी समस्या है मतलब अभी के समय में।
1: तो अपन का के वो चाहते कि कैसे हो चाहिए सब
2: जब जो हो चाहिए शांति हो चाहिए प्रेम हो चाहिए सब में बड़ा प्रेम प्रेम है तो उसे कबू आपत्ति नहीं है प्रेम है तो सब मतलब

0: आपत्ति न आए, शांति है, शांति से मेरे को खाली सुविधाएं, समूह आपत्ति न आए।
1: अच्छा, जो आपने प्रेम की बात कही तो ये प्रेम में और काका छिपो, अगर प्रेम ले तो काका अच्छो हो सका।
0: प्रेम जो अपने मतलब ईमानदारी काम प्रेम में और जो काम नहीं कर प्रेम में मतलब जीव अजीव काम प्रेम
1: में लड़ाई झगड़ा ना उज्जे। हाँ, पैसे पैसे टका खर्च ना उज्जे।
0: हाँ, घरे पैसा रे मतलब जो मतलब लड़ाई झगड़ा को काम नहीं कर।
1: तो अपनो काके वो है रेडियो में जो भी आपका सुने आदमी कैसे अपने बाप मताई की सेवा करें चाचा जी, और कैसे रहे चाचा जी, आपका कंचाओ सब जनन से आपको काके वो है।
0: बात तो बात खूब बड़ी है, मतलब ऐसे बाप मताई की सेवा करें
1: तो वही बात तो, बड़ी बात तो,
0: मतलब
1: शुरू से आप
0: तीर्थ यात्रा ना कछु।
1: हाँ, यही बात आप यही बात पूछना चाहो, शुरू से बता दो आप के आप काके वो चाहते।
0: जो अपने बाप मताई को माने, उसे भगवान को माने, सब इज्जत ले, प्रेम ले, लक्ष्मी जी ले, सब मतलब नहीं की रूप है। जो बाप मताई को ठुकराओ तो तुम्हारे बाल बच्ची ठुकरा मतलब आगे चली जाइए। तो तुम मतलब
1: अबे आप तीर्थ यात्रा की बात कर रहे थे।
0: तीर्थ यात्रा मतलब जैसे पैसा है देने बाल बच्चे चले जाए तीर्थ यात्रा हुआ, अब पैसे नहीं करते जा कर रहे हैं। हाँ, जो मतलब है जब कहोगे चले जाओ पैसे आगे चले गए, अब जैसे पैसे ही नहीं जाता तो कहाँ जा रहा है, क्या करे, रोटी नहीं खा पा रहा है, आँख से कमजोरी हो गई, पैसा खर्च को मिल नहीं रहा है, टेंशन बन जाए तो अच्छी बात है।
1: और का के वो चाहता
0: जी उचाउट के आराम चाउट बस मिल जावे, टेंशन बन जावे, तो पैसा खर्च को जाओ गए लड़का वाले अपने बाल बच्चे को समान खाने दीवे, तीन चार सौ को महीना मिल गए तो अपने उम्र खर्च चलाते हैं।
1: ठीक है दादा, जब आपने अच्छी जानकारी दी तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखो भैया, अबे अपन खान ने बुढ़ापे की सारी बातें बताई हैं कि ई बुढ़ापे में कौन कौन सी दिक्कतें हैं, का परेशानी है, और अपनो जीवन ई उतरती अवस्था में कैसे कट रहो है। और एक बात और इनने अच्छे तरीके से बताई है कि अगर पैसा होते तो हम घूम लेते, कोनो आमदनी हो जाए या को हमें पैसा दे रखे चारों धाम कर है। और भैया ये तो बातें अपनी अबे हतीसो सब जन ने सुनी ही है, लेकिन आप लोग जा भी कह रहे उन्हों को भैया बिल्कुल बात नहीं मैं बताएं, तो अपन और सुनत है एक गीत खो और ये गाँव है भैया वंदना अहरवाल ने, और इनने देखो इस शब्द में काका गौवा के गोबर मंगाओ, यानी गऊ के गोबर मंगा के जी अपने और चौक पुरा रही है और शुभ संदेश की बातें कर रही है और संदेश दे रही है। तो भैया अपन सुनो सवई पंच भैया सुने।

भैया अपन और सुनत है एक गीत को, जी को गाड़े हैं उमा शंकर नामदेव, और जिनके बोल हैं सब देवन में सबसे पहले प्रथम पूज मनाए। तो भैया आप सुनो और सभी पंच भैया सो सुने।

हाँ तो भैया अबे सुन रहे थे जो कार्यक्रम सुनो जी का केर है। ये कार्यक्रम में आप सब जने जानते ही हैं कि हर रविवार को बूढ़े पुराने दादन की बातन को सुनत हैं, जिनने अपनी बातें बताई हैं, कितने अच्छे तरीके से अपनी बातें बताई हैं, और ऐसा ही हम हर रविवार को लेके आउ थे कार्यक्रम को सुनो जी का केर है। अगर आप और अपने दादा पिताजी की अच्छी देखभाल करत होवे तो हमें जरूर बतावे, और अगर दादा अपने सुख दुख की बातें करें चाहू थे तो हमें सो बतावे भैया हमारे पते और फोन नंबर पे। और देखो बतावे के लाने लिख लो भैया हमारा पतो और फोन नंबर। तो भैया हमारा पतो है रेडियो बुंदेलखंड 90.4 ताराग्राम ओरछा तगेला के पास ओरछा। अब ई बातन के संगे संगे अपने दोस्त काशीराम को होत है समय कार्यक्रम से, तो भैया देव आज्ञा और यही कार्यक्रम में फिर से अपनी मुलाकात हो जाए, तब तक के लाने आज्ञा दो अपने भैया काशीराम को। तो नमस्कार।

काके रे अपन खाजी बताएं अपने जीवन की सभी बातें और सभी अनुभव। तो सुनो जी काके रे।

नमस्कार साथियों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे आप आ गए इस वक्त अपने दोस्त माता दीन के संग में। और साथियों, हम लेके आ गए आपके लाने जो प्यार और कार्यक्रम मेरी बुंदेली मेरे गीत। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं प्यारी प्यारी सी फरमाइशों को।

0: कॉलिंग बोल रहे हैं सर।
1: हाँ दीनदयाल भैया कैसे हैं?
0: ठीक है सर, बढ़िया है।
1: बिल्कुल दीनदयाल भैया, आपको मेरी बुंदेली मेरे गीत में बहुत बहुत स्वागत है। बताओ कौन सा गीत सुने हो?
0: सर सुनवा लीजिए, गीत है
1: ऊंचे पहाड़न पे बैठी मैया रतनगढ़ वाली।
0: हाँ जी सर।
1: चलो भैया दीनदयाल भैया, हम आपको जरूर सुनवाए हैं जो गीत, और कहा हो रहा अपनो?
0: बस बढ़िया है सर, पानी वानी लगा रहे खेत में।
1: चलो बहुत अच्छी बात है, ठीक है आप ऐसे फोन लगा उतरा बुक करें।
0: ठीक है सर,
1: नमस्कार भैया।
0: नमस्कार नमस्कार सर।

0: हेलो,
1: हेलो।
0: नमस्कार नमस्कार महेश भाई, कैसे हैं?
1: बढ़िया है सर, बढ़िया है भैया। सब आप लोगों के पाए, ऊपर वाले के पाए, और सब बहुने बहुने वाने हो गई, पानी आने लगा।
0: चलो, बहुत अच्छी बात है। तो मेरी बुंदेली मेरे गीत में कौन सा गीत सुने हो? प्रियंका
1: आज हम गीत सुने प्रियंका किशोरी और छोटे राजा।
0: बुलबुल जी की आवाज में।
1: हाँ
0: चलो ठीक है, अच्छा गीत के बोल बता पाए आप?
1: तो एक गीत कोई गाओ तो सुनवा दीजिए थोड़ा।
0: अच्छा चलो
1: बोल
0: ठीक,
1: तो हाँ बोल याद नहीं आ रहा है।
0: चलो ठीक है, हम उनकी आवाज में आपको गीत जरूर सुनवाए हैं।
1: ठीक है भैया, जयराम जी की।
0: जय श्री राम, जय श्री राम।

भगवान शंकर की बारात पहुंच गई महाराज हिमांचल के। जब सर्पों का श्रृंगार हुआ भगवान शिव का तो हाथे पुकार एक बार

भगवान शिव का सब परिवार बिखर गया तो एंड में क्या होता है देखिए। बिखर गया परिवार, बात जा बनी बनाई में, और सक जाने से पुरारे अपनी हवा हवाई में, भोले सर।

ईश्वर बन गया। कहना है कि मांग लाल है बिंदिया भाल है कंगना कलाई में और चंद छपी

0: शंकर से सगाई में मस्त रहे चलम।
1: हेलो
2: हेलो, बुंदेलखंड नंबर 10 नंबर 4 साल।
1: बिल्कुल भैया बिल्कुल, मेरी बुंदेली मेरी गीत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताओ कौन सा गीत सुने हो?
2: हमें सर वो सुनवा दीजिए, कचरिया जी को भाव ब्याह। हम अपने गांव जुगियाई से बोल रहे हैं, सतीश साहू।
1: जुगियाऊ से सतीश साहू जी?
2: जी हाँ सर।
1: बिल्कुल सतीश भैया, आपको जरूर सुनवा है जो गीत है।
2: हाँ सर, और सब बढ़िया है सर?
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप बढ़िया है।
2: हाँ सर, सब राम राजा की कृपा है, आप लोगों की सब बढ़िया है।
1: चलो बहुत अच्छी बात है, आप ऐसे रेडियो बुंदेलखंड सुना तो हम आपकी फरमाइश जरूर सुनवाए।
2: ओके सर,
1: नमस्कार भैया जी।
2: नमस्ते।

0: हेलो
1: माता जी भैया को नमस्कार है।
0: नमस्कार नमस्कार, कहाँ से?
1: मैं बाबू यादव सारनाथ वाराणसी से भैया।
0: बिल्कुल बाबू भैया जी, मेरी बुंदेली मेरे गीत में आपको बहुत बहुत स्वागत है। बताओ कौन सा गीत सुने हो?
1: हमें सर वो वाला भजन सुना दीजिए।
0: कौन सा?
1: शांति मन से जो कोई प्राणी नगर ओरछा आवे
0: जी,
1: वही वाला सुना दीजिए।
0: चलो ठीक है बाबू भैया, हम आपको जो गीत जरूर सुना है।
1: धन्यवाद भैया आपका।
0: बिल्कुल, आप ऐसे सुनते रहोगे बुंदेलखंड। ठीक
1: ठीक है।
0: नमस्कार
1: नमस्कार।

0: साथी, अगर आप भी सुनना चाहते हैं ऐसी ही प्यारी प्यारी सी फरमाइशों को, तो उठाइए फोन और लगाइए हमारे इस नंबर को। साथियों, हमारा नंबर है
1: 9425147126।
0: बिल्कुल साथियों, तो उठाइए फोन और लगाइए हमारे इस नंबर को, तो सुनिए ऐसी ही प्यारी प्यारी सी फरमाइशों को।

कार्यक्रम मेरी मुंडली मेरे बीच से अपने दोस्त माता दिन खुद जाने की अनुमति साथियों अपने तपने फिर हुई है मुलाकात एक डेरा पे एक कार्यक्रम में जब तक के लाने नमस्कार।

0: गलियों गलियों फिरता हूँ,
1: कब से
0: जब से इस हसीना ने, जब से इस हसीना ने मुझको आँख मारी।

0: जे देवी है तो हम भी पुजारी से कम नहीं है, और पुजारी हुए जब तो अगरबत्ती खोन से देवी के लगा प्रसन्न हुई है देवी काई? और कहीं ना
1: एक तरफ ये देवी है दूजा मैं पुजारी हूँ
0: और

0: कि ये चांद तू इतना मत चमक, ये चांद तू इतना मत चमक, मैंने भी कई चांद देखे हैं और तुझ में तो दाग है लेकिन मैंने भी दाग देखे हैं।
1: लेकिन कहना है हसीनों का पीछा हम किया नहीं करते, हसीनों का पीछा हम किया नहीं करते, जज्बात की जिंदगी हम जिया नहीं करते, वो तो तुम हो जनाब, वो तो तुम हो कि तुम्हें मैंने अपना दिल दे दिया, वरना किसी को अपना दिल दिया नहीं करते।
0: तो कहना है आपसे मैडम कि हर शख्स यार नहीं होता, हर शख्स यार नहीं होता, हर दोस्त वफादार नहीं होता, ये तो दो दिलों के मिलने की बात है, वरना सात फेरों में भी प्यार नहीं होता।
1: लेकिन आजकल ऐसे होने लगो, बताए कैसे यारो मोहब्बत मत करना, यारो मोहब्बत मत करना, क्योंकि मोहब्बत में हर चीज पराई होती है। यारो मोहब्बत मत करना, प्यार से प्यार मत करो, जब तक प्यार तुमसे प्यार ना करे, और जब प्यार तुमसे प्यार करे तो जनाब तुम प्यार से इतना प्यार करो, इतना प्यार करो कि प्यार किसी और प्यार से प्यार ना करे।
0: जवाब सत्य कहना है, हमने इतना प्यार करो मालूम कितना कल तलक

ना, तो उसने भगवान हनुमान ने आई थी, तो भगवान ने क्या उसके आंचल से जहर लगे तो जहर पिलाने के लिए कि मर जाए भगवान। तो क्या बोले, हंसे हंसे

अरे ओ पद बेड़ में बिज गई आज या दारू में लटकी ठाणी ए ठाणे अप थाने अपनी लई ठान ठान।

आंगन में किलकारियां देता और अपने भाई को राखी बांधती और कहती, राखी बांधती अपने भाई की कलाई को सुशोभित करती और कहने लगी,

0: नमस्कार दोस्तों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे आप हैं इबेरा अपने रेडियो साथी माता दीन के संग में
1: और भैया काशीराम के संग में।
0: और दोस्तों हम लेके आ गए आप सब जन के लाने जो कार्यक्रम कप्ताएं। जी हाँ दोस्तों, कप्ताएं कार्यक्रम में अपन सब जने सुनते हैं कवि भैयान की लिखी हुई कप्ताएं को। सो आज भी अपन भैया अपन ही कप्ताएं को सुने जो कबीर जी की लिखी हुई कप्ताएं हैं।
1: माता दीन भैया, अपन ने कविता को नाव लो, वो कविता को जब नाव लो तो अपने मन में तो खुली हुआ
0: बिल्कुल
1: काहे कि कविता जो बात अपन ना तो देखो मोसे के पाउता है।
0: सही कह रहे, सही कह रहे,
1: और ना वो बात को अपन उपकार कर पाउता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: लेकिन जो देखो अपने कवि भैया ने वो कवि जो हो गए उनने ऐसी रास्ता कविता के माध्यम से वो गा के बता दी थी कि पूरी लाइन
0: जो भी बात उन्हें कने आउ बाबे अपने कविता के माध्यम से दर्शा दे अपन तक पहुंचा दे। ऐसे जा भी कही गई कि जाना पहुंचे रवि जा पहुंचे कवि।
1: तो जैसे भैया का है कि जो कविताएं हैं और जो कवि हैं जो अपनी बात को बिल्कुल भैया नेके से ऊपर तक पहुंचा देते हैं और जन जन तक जानकारी हो जाती।
0: सही बात है।
1: आप तो मारा दिन भैया के देखो समाज हुए
0: बिल्कुल
1: काम हुए या कोनो समय हुए
0: सही के
1: तो उमें हर जाना अपने कवि अपनी कविता के माध्यम से बता दे।
0: हाँ, ऐसे अच्छे अच्छे संदेश भी दे दे जो अपने जीवन में काम आवे वाले बातें हैं वे अपनी कविता के द्वारा अपने काव्य के द्वारा लिख के और समाज में पेश कर दे वे, जिसे के समाज सुधरे, हम सुधरे, आप सुधरे। अगर सदमार्ग पे चलें वे सदमार्ग की बातें हैं जो कवि भैया भी लिख के और अपन सब जनन तक पहुँचाउते हैं।
1: देखो अपन ने जब बात कही जो सासू मास की साझी है काहे के अब जैसे समाज में बैठे या घर में तो काहो के देखो हमें कछु काहो से भैया लान देने न देने
0: है? सही है।
1: हमें काहो से तो फिर उनने देखो कितने अगर जा बात अपन मोसे कह रहे कि हमें काहो से मतलब है।
0: बिल्कुल सही बात है।
1: जो कबीरदास जी ने कितने अच्छे तरीका से कही।
0: हाँ हाँ, कबीरदास जी लिख रहे हैं कि कछु लेना ना देना मगन रहना, कछु लेना ना देना मगन रहना। और लिख रहे आगे कि पांच तत्व का बना पिंजरा जा में बोले मेरी मैना।
1: कहो भैया, अब देखो काहे के भी का कह रहे कि हमें काउ से कछु लेने नन्या और ना हमें काउ से देने आए। और का बोले कि पांच तत्व यानी जो शरीर है अपनो वो देखो उन्हें कितने एक ही बात में बता गई कि जो अपनो शरीर बनो है वो पांच तत्व से बनो बनो।
0: हाँ, बिल्कुल। और उन्हें ये आगे लिख रहे कि गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी, हर के बटिया से मिलना हमें लेना, के बटिया से मिलना। कितनी बढ़िया बात।
1: अब कहे गहरी नदिया नाव पुरानी, वातन वातन में कहे गहरी नदिया नाव पुरानी और केवटिया से मिले रहना। केवटिया से मिलते रहना। देख का कह रहे देखो कितनो एक ही लेने में बता रहे राहगीर खां और आम जनता का।
0: बिल्कुल
1: कहे भैया सुनो, बहुत ही गहरी नदिया है अथाएं हैं
0: हरी
1: और जावी संग कह रहे कि देखो जा नाव भी पुरानी है।
0: बिल्कुल
1: जा नाव पुरानी है नई नोई है।
0: हाँ,
1: पेड़ तो रहे तुम जातन घुसतन पहले उनने एक ही शब्द में कही कि गहरी नदी।

0: आओ पुरानी केवट गया से मिले रहना
1: मिलके रहना
0: है काय के है मिलके काय रहना के भैया तुम इतने जा रहे हो कोनो अंदेशी वाली बात है के नाव पुरानी है और ऐसा ना हुई के कछु
1: सही है
0: संदेशी की बात आ जाए तो पहले के दई के तुम केवट भैया से मिलके रहना ऐसो हो सकत
1: बिल्कुल सही
0: उस बात का कितने उसने तरीके से अंगाई बढ़ा दी।
1: हाँ बिल्कुल सही बात है। और आगे जो लिख रहे हैं कि तेरा पिया तेरे घर में बसत है, तेरा पिया तेरे घर में बसत है, सखी खोल कर देखो नैना।
0: अब एक ही बात में देखो कितने ऐसे बता दे भैया है।
1: हाँ
0: तेरा पिया मेरे घर में बसत है,
1: तेरा पिया हा? तेरे घर में बसत है, सखी खोल कर नैना देखना नैना। और कहे कबीर सुनो भाई साधु, गुरु के चरणन में लिपटे रहना।
0: कितनी नौनी बात देखो अंगाई से और देखो एक ही बातन बातन में जी बात खा अगर अपन के नहीं पाओ।
1: हाँ
0: के नहीं पा रहे वो बात का न सुझाव दे पा रहे हैं वो बात का, लेकिन कबीर एक ही लेन में एक ही शब्द में ओते बात को पहुंचा दे।
1: बिल्कुल उन्होंने गुरु की बात कितनी बढ़िया कही कि गुरु बिन ज्ञान तो हो ही नहीं सकत। इसे उन्होंने कही के सुनो भाई साधु, कहे कबीर सुनो भाई साधु, गुरु के चरणन लिपटे रहना और जा में बोले मेरी मैना।
0: अब मैना की बात कही जो देखो एक अंगाई की बात कहे कबीर सुनो भाई साधु। अरे वे काके कहे कबीर, अरे जो लेखक हैं वे काके ओ भैया जो साधु हैं, जो उनके पद पे चल रहे, जो आज भैया समाज में बैठे हैं, उनसे का बोले कि सुनो भाई साधु, गुरु के चरण में लिपटे रहे। यानी जो मार्गदर्शन कहता है अपना
1: हाँ।
0: जो मार्गदर्शन कर रहा हो अपन खा, जो आगे की गेल बता रहा हो अपन खा, तो भैया उनके संपर्क में अपन खा लेने
1: बिल्कुल वही गुरु है।
0: वही गुरु है कि नहीं।
1: और कहावत भी कही गई है बूढ़े पुराण ने कि बिना गुरु के तुम्हें विद्या प्राप्त नहीं हो सकत, कोनो गुण नहीं मिल सकत।
0: अब देखो बिना संगत की भैया और बिना कहे तब को तो कछु बात ही नहीं है, लेकिन जब कहू बिगड़ जात बात
1: अगर
0: ये बातें तो बात जो कही है कबीर जी ने कि इनकी संगत में ऐसे कितने कौन पग धन्य
1: धारियो। हाँ
0: तो अगर कोनो बात ई बातन के अलावा बिगड़ जाए
1: हाँ
0: तब
1: बिगड़ी बात
0: कैसे बने है?
1: सही कह रहे तेरी बिगड़ी बात बन जाई।
0: हाँ
1: है कितने बढ़िया बात लिख रहे कबीर दास जी
0: कि तेरी बिगड़ी बात बन जाई हरी नाम जपाकर भाई। इतने नौने शब्द हैं और शब्द के संगे संगे सम्मान लगाते हैं।
1: हाँ
0: और उनको एक आइडिया बताते हैं। अब का बता रहे कबीर जी के कैसे तुम उपरे।
1: हाँ
0: अब
1: अगर तुमने हाँ। जो अपने जीवन में कछु अच्छे काम नहीं करे कोनो घट काम करे अगर आपकी लेन बिगड़ गई आप भगवान में या फिर भक्ति में आप अपनो विश्वास नहीं रख रहे तो अगर अपने जीवन को सफल बनाने हैं जीवन को सफल बनाने हैं तो हरि नाम जपा कर भाई।
0: अब का है कि एक मार्गदर्शन उनने बता दो।
1: हाँ
0: और मार्गदर्शन के संगे संगे और जो भी बता दो कि का करने कि स्याही सफेदी आई।
1: हाँ
0: एक स्याही ही सफेदी आई और फिर क्या बनेगा भाई।
1: जब तुम्हारी सफेदी आ जाए शरीर पे फिर तुम पे कछु नहीं बन रहे हो। अगर आप वृद्ध हो गए फिर कोनो काम के आप नहीं रहे। इसे कबीरदास जी ने बहुत ही अच्छी बात कही है कि तेरी बात बिगड़ी बात बन जाई और हरि नाम जपा कर भाई।
0: एक ही बात में भैया उनने संदेश दे दो का के दे कि अगर भैया देखो समझ में आ रही या तो अपनी आई रही कि अगर बुढ़ापो आ गो मूड पे बाल सफेद हो गए।
1: सही कह रहे
0: और जब सफेदी आ गई तो फिर का कह सकत।
1: सही कह रहे
0: कह सकत कछु
1: वो तो समय आया
0: ना तो भैया की काम में काए ना तो अपन काम कह सकत और ना फिर कोनो कोनो काम नहीं कह सकत कि अपन सोचत रहे हैं का सोचत रहे क्या
1: फिर कर
0: लें अब फिर कर लें अब फिर कर

0: सोचत सोचत में देखो उमड़ भी नशा जात।
1: सही कह रहे,
0: उमड़ नशा जात और समय नशा जात।
1: बिल्कुल
0: है, कविता में जो भी कही के इनकी उमड़ भी कर गए और समय भी कर गए, लेकिन अपन जिते अपन कहाँ पहुँचने हैं उतने बिल्कुल नहीं पहुँच सकते।
1: सही कह रहे।
0: आगे कहा कह रहे, देखो राम नाम के बड़े आलस
1: है। कितनी बढ़िया बात लिख रहे,
0: राम नाम के बड़े आसरी आलसी और तुम्हारी मती गई बोराई। राम नाम के बड़े आलसी गई मती बोराई।
1: अगर आप राम नाम के आलसी हैं तो समझ लो कि आपकी मती बोरा गई।
0: देखो कहबे को मतलब कभी जुगो का है कि जो काम तुम्हें करने,
1: बिल्कुल
0: जो कर्तव्य तुम्हें करने, अगर वो पग से समझे, अगर वो पग से अपन तनके ही विचलित हो गए, ठीक है ना, तो फिर वह मती जो अपनी बोरा गई वह फिर अपने लाने एक भैया बहुत ही खराब।
1: बिल्कुल
0: का है कि जिते जोन अपन खा जिस जगह जाने हैं तो उते अपन फिर ना पहुंचे।
1: सही कह रहे, सही कह रहे। और सुनो तो कबीर जी लिख रहे कि आप भूले काय में रख जावा तोर ने एक बहुत बड़ी बात लिखी, दुनिया दौलते माल खजाना। देखो ये कह रहे कि ये दुनिया है जा दौलत में माल खजाने में और बदिया बैल उगाई में।
0: भैया
1: भी दे रहा था आप
0: काग है जो भी देख रहे कि दुनिया दौलते माल खजाना। अरे जो संसार है, जो भाव सागर है, हर आदमी का है,
1: यही में भी दो,
0: यही में भी दो, हाय पैसा हाय माल खजानो। और कागज जांगा की बनी जी हमारी जा सो बीघा की बंद जा है, जे हमारे
1: बैल हैं,
0: बैल हैं और जे बदिया हैं वो जे गंग में।
1: सही कह रहे,
0: एक ही लेन में बुक काबूले के जो कछु नन्या,
1: हाँ तुम्हारा कछु
0: नन्या, कछु नन्या हम जानी माया
1: संग चलेगी।
0: अब ये कवि कह रहे कि जब भैया बुढ़ापो आ गो और बुढ़ापे की सब कछु कर लो वरना कछु नहीं कह पाओ।
1: सही
0: और फिर जो भी है कि उतने जब जान लगे तो फिर अब काके रहे, हम तो जानते
1: कि माया संग चलेगी
0: है। का जानने लगे जब प्राण आखिरी पे कि हम जाना संग, हम जाना काया संग चलेगी,
1: हम जानी माया संग चलेगी और सबई यहाँ रह जाई।
0: नहीं हाँ जावा जब जानत आए कि जो अपन ने जो माया जोर जोर के धरे और धरी है तो कहे के अपने संग चे जे जा, लेकिन ऐसो भैया कछु ही नन्या, ऐसो
1: कछु नन्या,
0: बिल्कुल कछु नन्या, भाई बंद और कुटुंब कबीला।
1: देखो कितनी बढ़िया बात है।
0: अरे भाई बंद और कुटुंब कबीला काम ना आए कोई आई, देख रहे तुम, भाई बंद कुटुंब कबीला काम ना कोई आई।
1: खाए खोए भैया
0: देख रहे
1: तो अकेले जाने
0: उते तो
1: सब तही रह जाने, तही भाई तही बंधु तही कुटुंब तही कबीला सब कुछ तही रहने। तो कबीर भैया जी ने बहुत ही बढ़िया जा बात लिखी है कबीर दास जी ने के भाई बंधु कुटुंब कबीला काम न कोनो आई, को काम नहीं आई है। इसे हरि नाम जपा कर भाई केवल संग के लाने। एक ही बात बताई उनने, न तुम आओ दौलत ना माल खजानो ना कुटुंब ना कबीला ना भाई ना बंधु को संग नहीं जय, केवल संग जय है तो काजे है हरि नाम जपा कर भाई।
0: और संग देखो का सोचत रहे कि उनने जो कछु बताओ है अपन का और जो उनने मार्गदर्शन दाए हैं, लेकिन कछु नन्या कैसो के सुगा पड़ावन गन का तारी, सुगा पड़ावन गन का तारी और तर गई मीराबाई।
1: बिल्कुल
0: उनने संगे जा भी कही कि जिन जिन भंजन ने जिन बेनन ने और जिन लोगन ने इनके आदर्श था चलो है वो जिनने मन लगा के या कोनू बात मानी है या कोनू कथा सुनी है तो वे तारे जात या वो मार्ग पे पहुंच जात। जैसे सुगा अरे पड़ावन गन का तर गई, अरे कितो काऊ ने भागवत या कोनू चीज सुनी तो सुन सुन के तर जात। और संगे मीरा भाई का जो लगन हती बावन की पूरी हो गई।
1: सही बात कह रहे हैं। और एक संगे संगे कबीर जी ने

0: और देखो का लिख रहे कि कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कर गए सदन कसाई।
1: अरे भैया का बात कही अपन ने, देखो तो इतने नोने तरन एक शब्द केसो नोनो आगा के तर गए तैन कसाई,
0: तर गए सदन कसाई। सदन कसाई की कथा बहुत ही बढ़िया कसाई है।
1: हाँ।
0: कि सदन कसाई का काम करते काशीराम भैया जी,
1: बे
0: अपनो काहे के उनको काम हतो कि चोरी डकैती करके लूट माट काट करके और अपने घर को खर्च खर्च चलाउते। तो एक दफे की बात है कि जब वे लूट मार करके अपनो जो काम चलाउते घर के सभी सदस्यों को खुआते कमा कमा के, तो एक बेर भगवान जी उतर से निकले और भगवान जी ने कही कि आदमी को एक अक्कल तो थोड़ी बहुत देना चाहिए, कि जब तुम जो काम कर रहे गलत काम तो तुम्हारे ये गलत काम में तुम्हारे घर के भागीदार है कि नहीं है। सो भगवान जी तरह से निकले, सो उन्हें कही के जिनने इस भगवान को फैला पत्रा सा फड़ा छुड़ू लाओ। सो उन्हें कही के भैया तुम जो लूट माट काट करके कहा ले जा, उनके अपने घर ले जा तो और अपने घर के परिवार को खुआओ पियाओ तो हमारे घर की आजीविका चल रही। सो इन्हें की जा बताओ कि हम तुम्हें सब दे रहे हो, चलो ले जाओ तुम, लेकिन तुम अपने घरे जाके और जितने जनन को खुआओ पियाओ थे उन सब से जा पूछो कि हम जा हाय हत्या को ले आ रहे, मार काट करके ले आ रहे, तुम्हारे हमारी पाप में भागीदारी हो के नहीं है। ठीक। सो भैया जी गए, बोले यहाँ तुम भाग जाओ, उन्होंने कही हम ना भागे तुम हमें एक पेड़ से बांध दो। सो फिर वे बोले हाँ बांध दो। अब बांध के जो घरे गए, घरे घरवाई से पूछी और सबसे लड़का बांध से पूछी काय भैया हो तुम्हारे जा बताओ कि हम जो हाय हत्या को ले आ रहे, हम जो हाय हत्या को ले आ रहे, हमारी पाप की भागीदारी तुम्हारे बनो के ना बने। तो घर बार बोले हम काय को तुम्हारे पाप की भागीदारी बने, तुम कर रहे पाप से तुम भोगी हो।
1: माता दीन भैया इतने तनक कछु बात का है कि उनके दिमाग में जो कसाई है तो वो उनके दिमाग में का हती कि जो जो घर है हमारो और जे जो मोड़ी मोड़ा है ये सब हमारे आए और ये सब मतलब जो कछु है तो ये कई माया जान लगती है कि हम जो काम कर रहे हैं तो ये सब हमारे संगे जी और संग के हमारे भागी हैं, तभी तो वो मार काट काट करके गलत काम करके लिया उसको।
0: सही कह रहे
1: हैं। अब उनके दिमाग में कहती भैया कि वो जानत नहीं है
0: इनको
1: परिणाम
0: का भुगतने
1: का भुगतने।
0: तो फिर एक बार फिर का भाव कि जब फिर उन्हें फिर छोड़ दो वो सब काम, न मार काट करी न कछु करी
1: नहीं। तो उसे ऐसे का भाव कि जब भी पूछ भी आए,
0: हाँ
1: भी पूछ भी आए कि काय भज्जा हो जो हम हाय हत्या जो मार रहे हो जो काट रहे और जो हमें जो पाप मिलने या जो हमें कीड़ा पड़े या जो हमें
0: सजा मिले,
1: सजा मिले तो देखो सब जने खा रहे
0: आप सबको भोगने आए।
1: काय भैया अपन कभी सब्जी भाजी लिया तो घर में सब जने खात के नहीं,
0: बिल्कुल खा
1: अपन काम धंधो करके ले आए तो सब जने खात के नहीं।
0: सही कह रहे।
1: लेकिन उन सदन कसाई को भी क्या वो सही है तो
0: हाँ।
1: कि हम ले आ रहे तो जा बताओ
0: कि तुम्हारी के भागीदारी हो
1: इनके मतलब जो हमें लाभ मिले या जो हानि मिले या जो कुछ मिले तो क्या तुम इनकी भागीदारी हो के नहीं। तो देखो भैया का जवाब मिलो सब जनन ने, भैया
0: सब जन ने यही कह रहे कि हम नहीं है भागीदारी।
1: तो उन्हें जब सब जन ने हाथ खड़े कह दे कि भैया काम तो तुम कर रहे तुम भोगो,
0: हाँ
1: है?
0: जब फिर उन्हें कही के अब हम आस में बंद करें और बंद करके भी एक तला के किनारे एक बरिया के पेड़ के तरफ बैठ गए,
1: बैठ गए।
0: सो उते काहे के एक में तलज्जा में पानी भरो तो
1: हाँ।
0: सो एक आदमी लगाए रहते तो का ढेकड़ी पानी पी वे खोते डोंकिया, वो डोंकिया के चक्कर में ढेकड़ी लगाए तो थे और तलज्जा में ढूर जाते पानी पी वे ढूर इतने पानी पी वे आए तो वे डोंकिया उड़ी जाती और हमारी बार ढेकड़ी जाएगी सुबह छटक जाती। सो उन्हें ढोरण को पानी ना पियन दे वो
1: अच्छा वो जो घेरे हैं तो वो पानी
0: हाँ।
1: जो पानी घेरे हैं तो बिल्कुल
0: तो भगा ले
1: भैया।
0: अब जब सदन कसाई ने देखो तो सबके मन में आई के इतने पाप करे तो एक और सही
1: अच्छा ने की सौ सौ भी है तो एक भी
0: एक भी और सही। सो भैया का भाव के उन्हें

0: से भी ढूर भगा सिंह ने भगा विवाह में धौस से उगे वो कायदा वो सब डुबन में पानी दम से पियो। अब जब उनने पानी पियो सो दही असी।
1: अब देखो भैया कभू कभू का हो के दूसरे के परोपकार करवे से तो भैया जो तो अपन जानता ही हो सभी जने जानत के खुद को
0: जब उन पशुअन को पुण्य मिलो
1: आशीष दही।
0: हाँ आशीष जब मिलो
1: हर सांस लेके
0: हाँ जब सदन कसाई के सबरे पाप कट गए।
1: लेकिन भैया फिर
0: यही से कबीरदास जी ने कही कि कहत कबीर सुनो भाई साधु
1: तरी गए सदन कसाई और हरी जपा कर भाई जी। हाँ ये रहे ये भैया हरी को जपो जिसे अपन का आगे की रास्ता खुले। भी कही के सुगा पड़ावन गण का तर गई तरी गई मीरा भाई।
0: हाँ।
1: देखो भैया जे काम जब तक अपन अपनों का तब ना करें तब तक अपन खान
0: बिल्कुल
1: चीज को लाभ ना मिले। तो ऐसा ही है
0: सही
1: आखिरी पे तो हम देखो कबीरदास जी का कह के भैया एक काम करो फिर वे उनने ये कहीं मन में अपनाओ।
0: हाँ
1: सदन कसाई जब उतरे से आए उनने कही जब भैया हम भैया को नहीं कर दे संग न को दे तो अब तो भजो रे भैया।
0: हाँ
1: अब उनके विवाद में ये कही आ गई कि अब तो राम नाम भजो भजो रे भैया भजो रे भैया राम नाम गोविंद
0: हरि।
1: जब आदमी धक्का खा जा
0: हाँ
1: तब आदमी चोट खा जा और तब आदमी की का कहना समझ में आओ।
0: हाँ के समझ में आ गई है।
1: जब सदन कसाई का ये बातें अपने घर ही से शिक्षा मिल गई उन्हें
0: सही
1: जिन्हें भी मार मार के काट काट के ले जाते और उन्हें खबाऊ थे तो उन्हें भंजन ने काके दी के भैया तुम कर रहे सो तुम ही जान।
0: हाँ तुम ही भुगतो।
1: तो जब उनकी देखो समझ में आ गई तो वे का फिर कबीरदास जी ने लिखो ऐसे लोगों ने दिलाने के भज रे भैया राम गोविंदा हरि भज रे भजोरे भैया।
0: हाँ
1: भजोरे भैया राम गोविंद हरि को
0: सही कह रहे
1: जब तक सघन कछु नहीं लागत जब तक सघन कछु नहीं लागत और खर्चन नहीं गठरी। देखो का कह रहे ना तो भैया ही में हमें कछु साधन चाने ना हमें कोनो
0: खर्चा जाने
1: खर्चा चाने और ना हमें ऐसी
0: सही कह रहे बहुत अच्छी बात लिख रहे कभी
1: कितनी बढ़िया बात लिख रहे कि गठज्जा को मतलब के जब आदमी ज्यादा गठज्जा बांध ले चाहे कोनू काम की हो
0: सही कह रहे
1: तो वो कहो कि गठज्जा तो बहुत बढ़ जा।
0: अच्छा उसको वजन धरे फिरने अब
1: और भैया का अनाई काट लिख रहे कभी सतन सभ्य सुख करण जासो भूल पड़ो संतन सभ्यन सुख के करण जासे भूल पड़ो।
0: बिल्कुल बहुत अच्छी बात लिख रहे
1: हाँ
0: कि संतन सम्यक संतन सम्यक सुख के कारण संतन सम्यक सुख के कारण जासो भूल पड़ी ओ कहत कबीर राम ने जासुख कहत कबीर राम ने जामुख तामुख धूल भरी
1: वारी ताम जोन भी मुखते।
0: हाँ
1: जोन कैसे मुखते और कैसे कैसे लेकिन उनको भैया पल और कर्तव्य और समय की कीमत है
0: बिल्कुल
1: जैसो तुम करो और एक दिन ऐसा होने के जो मुख भूल में
0: हाँ।
1: मिल जाने
0: सही कह रहा
1: मिल जाने के नहीं मिल जाने। अब देखो अब कितनी अब कछु तुम सो कछु नहा लो
0: सही कह रहे
1: कैसे ही नहा लो या कछु लगा लो
0: सही कह रहे
1: लेकिन अपने ऊपर चादर तो चढ़ गई है जो अपनी काया है या
0: सही
1: अपन मल मल के कछु धो लो
0: हाँ।
1: या कछु काम कर लो
0: बिल्कुल
1: जोन अपनी यह चादर है जोन अपनी यह खाल है जा तो पुरानी है।
0: हाँ कबीरदास जी बहुत अच्छी लिख रहे बात को कि चादर हो गई बहुत पुरानी चादर हो गई बहुत पुरानी अब सोच समझ अभिमानी चादर हो गई बहुत पुरानी अब सोच समझ अभिमानी अजब जुलाहे चादर बीनी अजब जुलाहे चादर बीनी सूत कर्म की तानी।
1: देखो भैया एक एक शब्द की

0: कह रहे हैं कि चादर हो गई बहुत पुरानी। अरे सोच लो, मतलब जब चादर है जोन, जब बहुत पुरानी हो गई, सोच लो और समझ लो।
1: सही कह रहे,
0: इतने कह रहा हूँ मन घमंड में रहो।
1: हाँ हाँ,
0: कविता में उनने कितनी अच्छी हो गई, चादर हो गई बहुत पुरानी, अब सोच समझ ओ भगवान।
1: सही है,
0: ये जो मन है, जो भाव अपनी भावनाएं हैं, जा इके दिमाग और अंदर तो सोचो।
1: सही कह रहा,
0: अंदर तो सोचो कि अजब जुलाए चादर दीनी।
1: हाँ,
0: अरे खो गई तुमने आओ में ताओ में, और जैसे कछु बनो तो तुमने उस चादर का आपने हासिल कर ले, कर ले के नहीं। लेकिन सूत कर्म की तानी, जैसे उनने तकली जब सूत कातत है तो कात कात में बिलाक हो जाए।
1: हाँ,
0: एक एक सूत सूत कर करके, जैसे अपन ने कहा बूंद बूंद से
1: धड़ा धड़ा। सही कह रहा, इसे और आगे लिख रहे, सुरति निरित को भरना दीना, तब सबके मन माही।
0: देखो, हाँ, अरे जब सुरत है अपनी, जब जिज्ञासा है,
1: हाँ, तो अपनो
0: मन है।
1: सही कह रहे,
0: अरे इमें तो भरो कछु।
1: सही कह रहे,
0: ऐसी भरो के जो सबके मन को भावे।
1: हाँ,
0: जो सबके मनमानी, ऐसा तो नहीं के तब सबके मनमानी। अरे ऐसो काम करें कि सबके मन में वो मनमानी ऐसो तो ना करो, बस तुम स्वयं अपनी इच्छा का और स्वयं अपनो भंडार कर रहे, जो कुछ कर रहे, जो हमन्य कर रहे।
1: हाँ,
0: और जो तुम, अरे जो सबे अच्छो लगे वो काम खा।
1: सही, अच्छे करो,
0: दे रहे उपदेश, दे रहे वो काम खा अपन करने हैं।
1: और का लिख रहे आगे कि मेले दाग पड़े पापन के।
0: भैया जे बात है, मेले दाग पड़े पापन के, विसरन में लिपटानो।
1: हाँ, विसरन में लिपटानो।
0: अरे जो जो, जो कर्तव्य हो गए, जो कल है,
1: हाँ,
0: तो दाग लगाई गए।
1: बिल्कुल,
0: और तुम जो काम कर आए तो उसमें तो तुम लिपटे ही हो। जान ना जानो कि हमने बढ़िया काम करके या खा के तुमने वो मुंह पोंछ लाओ तो हम हमारे भीतर का छूने।
1: हाँ,
0: लेकिन जो कर्तव्य जो कर्म में तुमने कल लाओ तो उसमें तो तुम लिपटे ही गए।
1: बिल्कुल बिल्कुल, और आगे का लिख रहे कि ज्ञान का सावन लाए ना धोया, ज्ञान को सावन लाए ना धोया, संत संगति के पानी है। हाँ, और भाई खराब अब गई सारी।
0: देखो, भाई खराब अब गई सारी और लाभ मोह में सानी। अरे बीच क्या कह रहे, क्या बातों अगर जो तुमने सोच ली तो वो जो समय कर गया वो तो खराब हो ही गई।
1: हाँ,
0: भाई खराब।
1: हाँ,
0: तो अब जो काम कर लो तुमने उसमें तो तुम सन ही गए।
1: हाँ, लोभ मोह में सानी,
0: जो जो लोभ मोह में तुम सन गए, जो जो चीज तुम्हारे दिमाग में, उसमें हाँ, तो तुम सन गए। अब कछु नहीं हो।
1: और ऐसे ही उड़त उमर गमाई।
0: भैया जैसो तुम करो।
1: हाँ,
0: जैसो जैसो का तो उम्र तो कड़ाई रही।
1: बिल्कुल,
0: और तुम्हारे उपरे वो कहता बेचारा।
1: बिल्कुल, ऐसे ही उड़त उम्र गमाई, भली बुरी नहीं जानी, और शंका मानी जानी जिए अपने, शंका मन जानी जीने अपने, ये वस्तु बिरानी, जीने जा जान ले के जा वस्तु बहुत बिरानी है, जा अपनी नन्या, अपन तो जेतना है सो है, अपनी नन्या जाका है। ठीक, तो कबीरदास जी बहुत अच्छी बात लिख रहे एक हूँ के कहे कबीर यूं ही राख जतन से, कहे कबीर यूं राख जतन से, नहीं फिर हाथ ना आनी, अगर जो जीवन निकर गओ फिर हाथ आवे बाओ नन्या।
0: देखो भैया काहे जी आज की कवितन में,
1: हाँ बिल्कुल,
0: और आज के इस ज्ञान में कबीरदास जी ने मार्गदर्शन बहुत अच्छा दे रहा
1: है। सही बात है
0: कि ना तो भैया अपन खा जा उम्र है जो खराब करने, और ना जो मोह है, जो लोभ है, ना ही में अपन का सीधी सीधी बात है ज्यादा पन्ने।
1: बिल्कुल
0: है? और ऐसो काम नहीं करने कि जो अपनी उम्र में और अपनी जो शरीर है, जो कर्तव्य है, ई पे अपन खा लग जावे और नाम पीसे या ला जावे या अपने ऊपर नाम कम जाएगा। अरे

0: बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। तो देखो काशीराम भैया, अभी के संगे हम आपको जो बता देवे कि आज के ही कार्यक्रम से अपनो जावे को अब समय सो हो रहा है
1: भैया।
0: तो अपने साथियों से जो सुनवे वाला साथी है उनसे कहो चाहे कि ई कार्यक्रम में अगर जिते बात कम्बल भई होवे या फिर सदन कसाई की बात कछु और होवे और आप वो बात को जानत है कि सदन कसाई की जा कथा ई प्रकार से है तो आप हमें जरूर बताएं। कह के अपन को उतेक अनुभव नैया सदन कसाई की कथा को सो जो अपने सुनवे बाय साथी है वे जरूर अपन को बतावे
1: भैया। ई में जा बात नैया देखो गे गेरी गे उठली है।
0: हाँ
1: अपनो काम है भैया लो जितेक लो अपन जानत है।
0: हाँ हाँ बिल्कुल
1: उतेक लो अपन ने संदेश दे दो और जो कार्यक्रम तो यही के लाने हैं कि भैया अपन का बताएं।
0: बिल्कुल
1: और उन भैया को अपन बातन में शामिल करें।
0: हाँ हाँ
1: और उनकी जो कविताएं हैं जो उनके कहानियां हैं या जो किस्सा है वो अपन का भेज।
0: बिल्कुल
1: तो भैया अपनो पतो और फोन नंबर बता दो।
0: जी हाँ काशीराम जी भैया, अपनो देखो पतो है रेडियो बुंदेलखंड 90.4 ताराग्राम ओरछा तगेला के पास ओरछा, और अपनो फोन नंबर है 9425147726। अब एक संगे अपने दोस्त माता दीन को
1: और भैया काशीराम को दो आज्ञा
0: नमस्कार।
2: रेडियो बुंदेलखंड
3: शुभ कर्म। बदलती जलवायु के लिए तैयार हैं।
4: राम राम मनीष भज्जा, कितने चले जा रहे?
5: हम कितो नहीं जा रहा, बस इतना ही थे और हम सोच रहे थे कि हम अपने साथियों से एक मुलाकात कर ले में।
4: हाँ।
5: तो हम अपने साथियों से सबसे पहले राम राम करण चाहेंगे और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे कार्यक्रम को सुनत
4: हेंगे। हाँ अच्छा अच्छा,
5: कैसे जो देख रहा है कि कार्यक्रम तो सुनत हेंगे हमारे साथी, लेकिन हमें एक शिकायत है कि साथियों से।
4: अरे तुम्हें साथियों से शिकायत है?
5: हाँ, फोन नहीं करत हेंगे।
4: अरे तो घबरावे वाली बात नहीं है मनीष भैया, देखो तुम का है कि जल्दी भावो खो जाऊ तई वो तुम्हें जा लगत के वो एक कहावत है ना तुरंत दान महाकल्याण। सो तुम सोचत के अब ही हाल हमने प्रोग्राम चला हुएगो और अब ही हाल अपने श्रोता साथी इनके फोन आ जावे।
5: हाँ।
4: तो ऐसो नहीं होते। देखो तुम्हें अगर हम ये बात की खुशी एक बता देवे कि अपनो जो प्रोग्राम पहले का हो तो कि सिर्फ रेडियो पे याद तो है, सो रेडियो पे ट्यून करते आदमी को कितनी परेशानी होती, लोग बाग सुना था लेकिन फिर भी मेहनत करके पहाड़ियन पे चढ़ के पेड़न पे लगा के एंटीना, लेकिन अब का है ऐप से भी सुनते ही। और सबसे अच्छी बात जो हम बता देवे कि पहले अपन और इनकी जो पोस्टें जाऊती हती प्रोग्राम की जानकारी जब देते सो उमें कमाई लाइक आते, जो लाइक करे ना पसंद करते जो को सो उसकी संख्या जो हती कम हती, लेकिन अब अपन देखो तो उसकी संख्या बिलात बढ़ गई।
5: तो तुम्हारा कहवे को जो मतलब के आदमी अब हमारे श्रोता साथी सोशल मीडिया पे ज्यादा अपडेट रन लगे हेंगे, कैसे सोशल मीडिया को भी जमाना है वो और उनके पास एंड्रॉइड फोन रहेंगे और जैसे ही पोस्ट देखी और ऐप भी हमारे बहुत सारे साथियों ने डाउनलोड कर ले हैं तो हम उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद कहेंगे। कैसे हम हमारे साथ जो स्नेह आपको बनो है वो और आप जो आपकी स्नेह से हम जो कार्यक्रम तैयार करा थेंगे, आपके समय को देखा दबाए, आपके जलवायु परिवर्तन को देखा दबाए, सारे चीजन को देखा दबाए, हम अपने श्रोता साथियों को कार्यक्रम जो बना थेंगे उनको भी बड़े अच्छी तरीके से सुनाते हैं और हमें फेसबुक या व्हाट्सएप के माध्यम से भी बताते भी हैंगे।
4: बिल्कुल, आप देखो आपने व्हाट्सएप की कही हैगी तो हम व्हाट्सएप पे भी बता देवे कि रात के ना वे दिन रात देख रहा है कि क्या बजे है फोन लगा दो अपने साथी पे तो
5: अच्छा।
4: काहे के दिन के काहे नेटवर्क तो बिजी जाऊ दई और अपन औरन को जो रेडियो बुंदेलखंड जेते बनो है गो सुबह तक ऐसो स्थान है गो के उते टावर ने कम आऊ दई है, सो ई वजह से भी अपने साथी फोन तो लगाऊ थेंगे लेकिन वो अपन तक नहीं पहुंच पाते, तो ऐसे में आपको शिकायत कर भी की जरूरत नहीं है।
5: ठीक है भैया, तो सबसे पहले साथियों को बता दे वो चाहते हैं कि आज के जा कार्यक्रम शुभ कल में हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपके रेडियो साथी मनीष
4: और भैया हमें तो आप चिंता ही हुजो, हमारा नाम है वर्षा
5: और साथियों आप सुन रहे कार्यक्रम शुभ कल को।
4: श्रोताओं यह कार्यक्रम लोरियल फाउंडेशन के सहयोग से रेडियो बुंदेलखंड पर प्रसारित किया जा रहा है और यह कार्यक्रम की 13वीं श्रृंखला है।
5: वर्षा आज के हमारे जो कार्यक्रम शुभ कल में आज अपन बैरू भौजी को भी सुनवा है साथियों को।
4: अरे बिल्कुल ये नहीं सुनवाना है, बैरू भौजी को तो जमानो ही है वो, काहे के अपनी बैरू भौजी जो बातचीत कहती है वह एक

0: परसेंट सत्य हो जात हैगी और हम तो लोग उन्हीं की बात मान लेते हैंगे। सो बेरू भौजी हूँ अपन सुन हैंगे और अपनो पर्यावरण को देखत भाई अपन पे बातचीत अपन हो करबो जरूरी है गो। तो देखो हम तो जा कहेंगे कि पर्यावरण को बचावे के लाने छोटे से छोटो अगर उपाय भी आप कर रहे होगे तो समझ लो कि आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। आप जो ना सोचो कि आपने अरे छोटो ही सो काम करो हम काऊ हूँ बतावे, आपको बताने है गो काहे कि पर्यावरण के लाने अपन को कछु ना कछु करने आए है गो। और जो अपनी प्रकृति हैगी यानी नेचर हैगी तो जा अपने हिसाब से नहीं चलेगी अपन को बल्कि ई के हिसाब से चलने पर है गो।
1: बिल्कुल सही कही आपने। कैसे हम जो देख देंगे कि अगर अपन शादियन में भी जाते हैं दोस्तन से मिलते हैं तो अपन सेल्फी खींच के डाल देते हैं और अगर अपन अच्छो काम कर ही रहेंगे जैसे पर्यावरण को बचावे के लाने आपने पेड़ लगा दो है गो या कोई को समझा दो है गो तो बाकी एक फोटो खींच के एक अपने फेसबुक पे डाल दे या इंस्टाग्राम पे डाल दे जहां से लोग देख के और जागरूक होंगे कि भाई साहब ये संग साथी वाले हमारे भैया हैं जो बहुत अच्छो काम कर रहे हैं पर्यावरण को बचावे के लाने। तो अपन हो ऐसो प्रयास अथक प्रयास करने हैं कि जैसे एक दूसरे से चेन जुड़ जाएगी तभी अपन जो कार्यक्रम को एक सफल बना सकते हैंगे। एक मुहिम जो हमने सोची थी कि आने वाले समय में हम अपने साथियों को इतना जागरूक कर दें कि जलवायु परिवर्तन के बारे में भी समझने लगे और संगे संगे पर्यावरण जो प्रदूषित हो रहा है वो वाकई बचावे के लाने भी कम से कम सोच उनकी परिवर्तन हो जाएगी।
0: आपने देखो जा एक अच्छी बात कही हैगी कि फोटो डारबे को जमानो है गो। तो ई पे एक बात और हम क्या वो चाहेंगे कि जैसे मान लो को जन्मदिन मनो ठीक है, जन्मदिन मनो सो उनने का करो बढ़िया केक काटो डीजे बजो और का कहते पार्टी अच्छी मनी सो सब जने का कहे फोटो में डाल देते ही और
1: हाँ।
0: वीडियो डाली फोटो अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे फेसबुक के स्टेटस पे फोटो डाली पे कि जो देखत कि कितने लाइक मिले और कितने कमेंट मिले ठीक है।
1: सही बात
0: अब मान लो बात चीज हमने देख ली है तो हमने देख ली तो हमारे दिमाग में का चीज चले एक चीज चले कि अब हमारा जन्मदिन आए तो हम इसे और अच्छो करें
1: सही बात
0: इसे
1: है।
0: कि हमारी फेसबुक पे इसे ज्यादा लाइक और कमेंट बढ़ गए। तो अगर अपन अपने पर्यावरण को बचावे के लाने भी ऐसी कोनो उपाय कर रहे हैंगे तो आप भी उसको सोशल मीडिया पे यानी फेसबुक पे व्हाट्सएप पे डालो ताकि आपकी पोस्ट को देखें, हो सका थे कुको एक नई उम्मीद मिलवे नई दिशा मिलवे कि अरे भज्जा ई के लाने भी अपन को काम करने आउते। जैसे अपन हंसी खुशी के पल तो सभी जने अपने दोस्तन के संगे बांटा थेंगे तो अगर पर्यावरण कहे कि अपनो ही सबको है वो है ना और इसे अपन और जिंदा हैंगे अपन और खुली हवा में अगर सांस ले पा रहे तो इको सांस लेवे के लाने बनाने भी तो आए अपन को शुद्ध बिल्कुल एकदम। तो यही से कि जो पोस्टें अपन फालतू की करते ही काम की भी पोस्टें करवे।
1: सही बात है बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बात कही हैगी। और संगे संगे एक बात हमारे मन में और चल रही हैगी कैसे जब हम सभी ने आ रहे थे तो जो खुले जानवर नहीं रहेंगे रोड पे फिरत रहेंगे तो वे पन्नी जो रहते हैं पॉलीथीन उनको खा रहे थे तो उनको खावे से उनके स्वास्थ्य पर जो डॉक्टर बताते कि यदि पन्नी जानवर खा लेते हैंगे तो उनके शरीर को बहुत ज्यादा नुकसान होते है और संगे संगे हमारे पर्यावरण को भी बहुत ज्यादा नुकसान होते है।
0: अरे नुकसान की ना कहो मनीष भैया तुम पता का होते ही अगर जानवर ने पन्नी खा ली तो बे उनकी आंतन में चिपक जाऊती
1: हाँ
0: है
1: बिल्कुल
0: और बे निकरवे को तो कोनो चांस रहते ही नहीं है। तो इसे अपन पन्नी को कम से कम कितने अपन इस्तेमाल कर सकते हैं ऊपर अपन को ध्यान देवे की जरूरत है।
1: बिल्कुल सही कही है कि बिल्कुल ध्यान देवे की बिल्कुल जरूरत है कि और ध्यान की बात आई तो अपन वेर भौजी को सुन लेते हैं वे भी कछु क्या वो चाह रही हैं पन्नी को रोक लगावे के लाने उनने भी बहुत अच्छा प्रयास करो है गो। तो चलो अपन बैरव भौजी को सुनाते हैं लेकिन कछु देर बाद सुनाते हैं एक लोकगीत को अपन सुन लेते हैं बाकी बाद कार्यक्रम में हम बैरव भौजी को सुनेंगे।

0: आप मनीष भैया, अपन और अन्य अभय दिनेश मस्ताना जी और उनके साथियों की आवाज में ये इन्होंने से लोकगीत को सुनो है वो, और हमें लगा था कि आप समय ना गवात भाई, अपन को बेरू भोजी को भी सुन लें जज्जी का, कि भी अपन को बहुत ही उम्दा जानकारी दे रही है।
1: तो चलो अपन सुनते हैं बेरू भोजी की नाटक को।
2: कल्लू के पापा हमें लगा नेकर गए, मैं रात भर चिल्लिया चिल्लिया के हट जा, भुनसार है जल्दी आ जाओ, भुनसार है जल्दी आ जाओ, लाइट भी चली जा, हाँ सोते जाने के तीनों बैठी रहते ही, अब हम दो रुक जाओ फिर मैं बता दूंगी, मुझे इतनो काम डरो, मुझे आज सब्जी भाजी नहीं आ बिल्कुल घर में, क्या गोड़े बना लूं मैं अपने घर में, मेरी तो समझ में नहीं आती कि मैं करूं का, इनके माँ इतने परेशान हो गए, ओ कल्लूगा कितने मारेगा, ऐसे ही मोड़ी मोड़ा हो गए बिल्कुल।
3: तुम्हें तो उठत बैठत गलत रहे चिज्जी, का बात है बता, काय को बुलाओ?
2: मैंने काय को बुलाओ?
3: और कलुगा तो गाओ तो तीरथ,
2: तो मैंने तुम्हें बुला भी खिलाने गई थी, क्या होते अब घर में कछू नहीं है, खावे मैं कहाँ करूँ, बताओ मैं कहाँ बना लूँ, मैं तो पूरी जिंदगी
3: तो उसे तना कछू कर सोते हैं तो फिफ्टी बताने लगा।
2: आओ तुम्हें तो यानी फिफ्टी दिखा रहे, मैं बताऊँ कछू नहीं है घर में, आज खावे मैं कहाँ बना लूँ मोड़ी मोड़न खिलाने।
3: अरे तो ऐसी कही तो आजाद कछू बात की,
2: तो मैंने रात में कही नहीं आती क्या तुमसे?
3: अब मैं सो गाओ तो रात के हारो था, तू पतो ही है चाय से लगी बड़बड़ा भी, मैं रात है तो पानी भरा भी जात,
2: तो तुम पानी भरा रहे, मैं घर को काम तो कर रही होंगी, कौन का चू मैं परिरत होंगी?
3: अरे तो बताई तो जात, मैं सवेरे तो आ गया तो खाए नहीं गई, अब मैं लाया सब,
2: अब तुम रंदो तुम पानी को चले जाओ, मैं चली जाऊंगी लालाजू के संगे,
3: अब तेने किचन गार्डन तो लगाओ तो बाह में नहीं हो सब्जी,
2: वो तो जाते आपका रोज के रोज, मैं बाद में बेच आई थी खट्टी, अब पानी डाल दो फिर से वही जाओ, तुम
3: बेच भी की जरूरत घर चाहे हुए चाहे ना हुए,
2: तो मैंने पूछ तो ले थी तुमसे कि मैं बेच दूं कि नहीं बेच दूं, मोए पे चढ़ याद बिल्कुल।
3: अरे तो अब जितने पैसा जैसे बेच बे से मिले थे, अब इनसे फिर से खरीद लो तनक मनक,
2: तुम्हें पैसा खोर हो रही क्या?
4: अरे अरे का होगा भाजी, काय लगे भौजी घुमा रहे हो, कल कह रहा हूँ तो मम्मी घुमा रहे पापा काय मार रहे हो,
3: तो तनक में खबर पड़ जाते तो मूड पे चढ़ाए जाए।
4: अरे भज्जा ऐसी कछु बात नहीं है, क्या हम तो तनक जो देखा था के का हाल चाल चल रहा अपनी भौजी के भज्जा को का घर को कैसे काल चल रहे,
2: तो लालाजू मैं इनसे कह रही थी कि बिल्कुल सब्जी भाजी नहीं आती, तो अब लालाजू मैं का करूं, मैं का बना लो रोज की रोज, ये मोई पे बड़े बिल्कुल 24 घंटा मोई पे गुस्सा होते रहते बिल्कुल।
3: देख ले जाए तो केवल बहानों से जिद लड़बे को,
2: कब लड़ी मैं बताऊं कहूं लड़ी, आज ही तो लड़ी हो,
3: अब कैसे चिपटे बता रही, देख लेते हैं देख
4: लेते हैं, शांत हो जाते हैं, काय लगी भज्जा से तनक, अब हार थको है तो आदमी को तनक कछु के है तो चेंटा तो जरूर ही आदमी, अब
2: हाउ सब रे मुंह पे उतरत बिल्कुल गुस्सा में, तो बिल्कुल ऐसी आई होंगी।
3: अरे अरे चुप हो जा अब नहीं रो, हाँ सही तो कह रहा हूँ, और वो
2: हाँ तो आप सही कह रहे हैं, तुम दो ही जाने जुड़ गए होंगे, अब मैं को है वो पिछले भी।
4: अरे भाजी ऐसी कछु बात नहीं है, को से नहीं मिल रहा, जो है कि अब जैसे कोनो आदमी हार थकवा तो बात पूछे के का पानी पीने के का खाने, और तुम और उल्टी गाड़ी में सुना लगो तो आदमी को दिमाग खराब ना हुए।
2: अच्छा और मैं दिन भर की काम कर रही हूँ, मैं कछु नहीं है, मैं को नहीं पूछे भज्जा ने एक बार पूछे कि मैं दिन भर कहाँ करत होंगी।
3: हाँ मुझे तो पतो है कि ते घूमे भी जात लालाजू के संग में, अब तो शांत रहिए, अगर रोई गाई अगर मुझे पतो चल गाओ फिर मैं शाम के बताऊँ तुम्हें।
2: हाँ मुझे काकन ने रोके, मुझे सब आराम से मिलत रहे, मुझे काकन ने चार बातें करके,
3: ठीक है लालाजू तो है सो इनसे मंगा लीजिए जो कमी पड़े,
2: लालाजू देख लो तुमने अपने भज्जा को जी है इनके हाल।
4: अरे भौजी घर में ऐसा ही नहीं हो, तुम शांत हो जाओ करे भज्जा कहूँ गुस्सा हूँ तो तुम हो जाओ शांत, कहूँ बे हो जाओ करे शांत, ऐसे चलत घर बार।
2: हाँ तुम हो सो तुम हम डॉक्टर लगे होंगे, अब मैं बाजार जा रही थी, हाँ
4: बाजार जाने,
2: हाँ
4: अरे बाजार ही तो मैं जा रहा हूँ, तो वो कल्लू पहुँच गया के मम्मी को मार रहा पापा है, मैं तो ऐसी सुनी सो दो भगत आते रोटी नहीं खा पाई,
2: काले भी जा रहे थे मुझे तो सब्जी ले जाने लालाजू, चलो मैं तुम्हारी संगे,
4: अरे तनक मुझे राशन ले आने तो घर को, धनु कह रही थी वो चून बड़ा गो तो एक बोरी ले आने चून मुनो वो तनक मसाले ले आने थे।
2: हाँ ठीक है तो फिर चलो, फिर मैं अभी चल रही संगे नहीं तो चलेंगे अभी तो जाने मंडी का ले लो लाला।

0: है 10 रुपया किलो दे दू लियो ठेला में डाल दू लियो डाल दू।
1: अरे भैया जल्दी कर बतने भौजी और हमें चेक चेक करने लगे का टेम का दो जल्दी दे दो तनक मसाले दे दो। अब काय में दे रहे अरे पन्नियाने में दे दो तुमसे कितनी डर कही अपन घर से हम हमेशा झूले ले आए पन्नियाने में दे दो जल्दी भौजी और हल्ला करे ले आओ जल्दी रख दो लियो जो पैसा अपने चलो भौजी ले ले हमने सब्जी
0: का कह रहे लाला जी अबे और रुकने कितने टाइम हो रुकने।
1: अरे लेबगा मसाले मसाले सब जो ले लो 5 किलो
0: लेबगा है।
1: हाँ लेबगा है।
0: अच्छा हाँ और काय में रख लो सामान।
1: अब जो पन्नियाने में रख लो काय में
0: लाला जी मैंने कही थी बाद ना भी तुम्हें समझाई थी कि पन्नियन में अभी आधी दूर तक जाने से पूरी फट जाने और दूसरी अपने जो कितना नुकसान हो रहा है पन्नियन से पर्यावरण को मैंने समझाई थी तुम्हें।
1: अरे भौजी क्या करूँ ख्याल नहीं रहता का के तो घर से आते ना जल्दी जल्दी में नहीं रहता।
0: जब लाला जी तुम ही नहीं करोगे तो फिर और को अपने और पड़ोस में तो को कर भी वालो नहीं है बताओ जब तुम ही निकाल को वो नहीं कर रहे। अब मैंने बाद ना भी तुम्हें समझाई थी आज भी कह रही अब तो ध्यान रखियो कम से कम पन्नियन से जिस बाद ना देखो तुम्हारी गज्जा ने खा ली थी पन्नी मर गई थी बाकी नहीं मर गई थी।
1: हाँ जा तो यानी सांसी कह रही तो अब पक्के में ध्यान रखने आपकी रास्ते में जब भी यहाँ तो झूला लेके हैं।
0: हाँ तो लाला जू अब चलो चलेंगे तो फिर ब्लाक टाइम होगा कहा कि मैं तो आज पूरा भज्जा लड़ पड़े सो दिमाग के सो खराब है वो टेंशन में है पूरा दिमाग।
1: हाँ तो भाई जी अब जा बात छोड़ते हैं लड़की ना आपते शांत रहिए घर हल्ला ना करिए।
0: देख तुम याद रखियो अगली बार से पन्नी ना ले आज बाजार में
1: अगली बार से तो झूला ही ले आऊं मैं।
2: आहा मजा ही आगा रामधई बेरू भौजी जो बातें अपन को बताती हैं एकदम सटीक रहती हैंगी और एकदम सही बात बिल्कुल फिट बैठने वाली बात बताती हैंगी बहुत अच्छी बात लगा था मैं उनकी
3: सही कई कैसे उनने हमें बेरू भौजी के नाटक में 3 चीजें हमने समझी हैंगी
2: काका।
3: एक तो जा समझी है कि सबसे पहले हमारे जो महिलाएं हैंगी उनको बचत करवो बहुत जरूरी है गो।
2: अच्छा तुम जो बताओ हमें एक बात महिलाएं नहीं खो का जरूरी है गो
3: महिलाओं को जासन जरूरी है
2: हाँ।
3: कि यदि पुरुष उनके घर से बाहर चले गए
2: हाँ।
3: हैं या कि तुम गांव में बैठे हुए चले गए हैंगे और सब्जी की जरूरत पड़ रही हैगी तो बैठी हैं ये लोग जब तक वे
2: काय बैठे सुबह उनके हाथ में भी तो बात है ना पैसा टका
3: तो वो नहीं आते
2: आजकल मनीष भैया आप गलत बात कह रहे अब वे महिलाएं नहीं रही पहले जैसी के घर ही में रहती और आदमी को इंतजार करती कि जब वे आवे जब वही पैसा खे चुने जब वही हम कछु सामान लेवे। अब तो देखो पूरे हिसाब किताब उन्हीं के हाथ में रहते और अपनी बहनें खुद इतनी सक्षम हो गई कि वे अपने पांव पे खड़ी भी हो रही।
3: सही वो तो बात सही है कि कैसे अब बहुत सारी योजना और बहुत सारे समूह के माध्यम से महिलाओं को अपने सशक्त करो जा रहा है बहुत अच्छा माध्यम है और संगे संगे जो समूह के माध्यम से बचत की बात होती हैगी और साथ में आपसी जो बातचीत होती हैगी बासें अपने बहुत सारी हमारी बहनों को बहुत लाभ भी मिलो है गो जो बात तो हम के वो सही बात है तुम्हारी के हमारी बहनें सशक्त हो रही और मजबूत हो रही हैं लेकिन अबे भी कछु गांव में जब प्रथा भी हैगी के वे जब तक उनके आदमी नहीं आएंगे तब तक वे घर से ना तो बाहर न करती हैंगी और सब्जी की तो बात छोड़ो वे उनके पास पैसा भी नहीं रहतेंगे बच्चन की पढ़ाई के लाने भी वे उन हमारे जो मुखिया रहतेंगे उन पे आश्रित हो जाती हैं तो हमें बचत हमारे जीवन में बहुत जरूरी है।
2: तो देखो हम ही में जाके वो चाहूंगे कि बचत जानी कह सकत आपकी केवल महिलाएं के लाने जरूरी है बल्कि सब जनन के लाने हम सब के लाने बचत बहुत ज्यादा जरूरत होतेगी। हाँ तो दूसरी बात का सीखी
3: दूसरी बात हमें जा सीखी के सब्जी तो देखो इतनी महंगी हैगी
2: बिल्कुल
3: है। और हमारे जो घर पे बहने बैठी रहती हैगी तो वे एक काम कर सकती हैं जैसे अपन ने पहले किचन गार्डन नहीं बताओ तो
2: उन्होंने
3: किचन गार्डन को कॉन्सेप्ट बताओ तो कि किचन गार्डन हमारे बहने कैसे लगा सकत है अपनी घर में तो बामे का हो तो एक तो बचत होतेगी बचत कैसी बचत होते जैसे पड़ोसी के पास गार्डन नहीं है या घर में आंगन नहीं है उनके पास तो पड़ोसी दूसरे पड़ोसी के यहाँ लगा के उनसे सब्जी ले सके थेगी तो सब्जी का ऐसे बहुत महंगी रहतेगी तो अगर छोटी छोटी हमने पौधे ले आके हाट से पौधे ले आके या बाजार से पौधे लगा के अपने आंगन घर आंगन में लगा दिएगी बासे अपने परिवार को भी खर्चा चलेगा अपने पड़ोसी को खर्चा चलेगा और अपन को ताजी ताजी सब्जी अपन को मिलेगी।
2: जा तो आपने ऐनी नोनी बात कही हैगी कि अगर अपन घर में किचन गार्डन जैसी लगाऊ थेंगे तो जो छोटी छोटी सी चीजें रहती बहुत मामूली सी जैसे कि अपन ने टमाटर लगा लाए मिर्चें लगा लें धना लगा लाए और

0: के तई
1: भटा।
0: भटा, हाँ भटा लगा ले, और मैं ओई में एक दो गोभी लगा लो,
1: हाँ
0: धीरे धीरे करके ऐसी चीजें अपन लगाते रहो अगर, तो भी एक दिन आपको इतनो फायदा दे, इतनो फायदा दे। फायदा मतलब ऐसा नहीं है कि डलियन बांध दिया
1: हाँ
0: भेजिया, ऐसा फायदा के अपन को ताजी सब्जी घरे की मिलेगी, वो बिना केमिकल वाली,
1: बिल्कुल सही
0: काहे के
1: कह
0: बाजारन में जो मिल रही वह केमिकल वाली सब्जी मिल रही हैगी, तो अपन एकदम कत नहीं है कि शुद्ध खाओ और स्वस्थ रहो,
1: सही कहा।
0: तो ऐसो अपन को महसूस भी होने लगे है गो। तो आप जो कॉन्सेप्ट जो है गो किचन गार्डन को, वो भी आप अपना सकत हो।
1: और तीसरी बात हमने सुनी हैगी और अच्छी लगी हैगी कि भौजी बाजार में गई हैं थी और उनने खूब मना करी कि भैया पॉलीथीन को इस्तेमाल हमें नहीं करने है गो। खासतौर पे हमने पहले भी शुरुआत में बताई थी कि काहे से पॉलीथीन को इस्तेमाल करवे से पर्यावरण को बहुत ज्यादा नुकसान है, जान बान को नुकसान है और हमें आपको तो है ही गो जो नुकसान है, तो जी बात को हमें विशेष तौर पर ध्यान रखने है वो।
0: तो देखो, जा तो बात आप सही कह रहे हैं, तीसरी बात जो आपने सीखी हैगी, काहे के पन्नी से अपन को खुद को नुकसान होत है गो, अपने ढूर बछू जो फिरत रहते हैं बेचारे, देखो भी तो काउ से कह नहीं पा रहे हैंगे हैं, उन्हें तो जब भूख लगत हैगी सुबह तो पन्नी में बंदो मिला सामान सुबह पन्नी समेत खा जात, काहे के भी गठान तो खोल नहीं सकत हैंगे।
1: सही बात
0: तो
1: है
0: एक तो हमोरन की खुद से गलती जा रहत हैगी इमें, कि जो भी खाबे पीबे को सामान जब अपन बाहर फेंका थेंगे, तो एक तो वो ऐसे ना फेंको बिल्कुल भी पन्नी में बांध के, खास तौर से काहे के गन्ना बच्चे जो हैंगे भी पन्नी उठा के पूरी खा ले उठेंगे। तो खाबे की चीज अगर हैगी तो आप खुले में ऐसी रखो कि आपको पता हो कि हाँ इतने जो डूर बच्चू रोज आउ थे वो, और इतना वो खाबे के लाने खड़ो होते, तो एक बढ़िया सा पत्थर रख दो, सो ऊपर आप वो खाबे को सामान रख दो, और जी में वो डूर बच्चे हुआ है वो खेओ अपनो चलो जाए, जो नैया के पन्नी में बांध के आपने फेंक दो सो बस, वो तो पका है उखो तो खावे की वो है भूख है, पेट में जब भूख लगा तो कछु नहीं दिखाता है, सो वो पन्नी समेत खा जाऊ थे। और दूसरा अपन को पर्यावरण से भी इससे काफी फायदा मिले है वो, जब अपन पन्नी को इस्तेमाल कम करेंगे। देखो पहले की समय की अगर बात करें, तो पहले अपने जो पुराने लोग हते, जो दादा परदादा या नाना नानी हते, हमेशा जब भी बाजारे जाते तो कहते ले आ बेटा वो थैला दीजिए बाजारे हुए आए, लेकिन अब वो चलन नैया, अब का कहते के रंदो ऐसे खाली चले जा रहा है, वो तीन से पन्नी इनमें डांग ले आए, तो अपने ही हो रहे हैं कितों ना कितों इन चीज को खराब कर थेंगे। तो अपन को वो खराब नहीं करने हैं, अपन को कह नहीं रहे हम के संगे संगे जो भी ध्यान रखने के, अपन को अगर खुली हवा में सांस लेने हैं गो, तो अपने पर्यावरण को ध्यान अपन को रखने आए, और अपन को ई के हिसाब से चलने है, ना कि पर्यावरण अपने हिसाब से चले है वो।
1: बिल्कुल सही कही वर्षा। और हमने तीन चीजें सीखी सो आपको हमने बता दी हैंगी और अब हमारे साथियों ने का सीखो है भी हमें बताएं कैसे। अब हम
0: नमस्कार।
1: नमस्कार। शुभ कर्म बदलती जलवायु के लिए।

0: कार्यक्रम हम होंगे कामयाब में हम अपने सभी श्रोता साथियों को बहुत ही बहुत स्वागत करेंगे और नमस्कार सब साथियों को
1: हमारे भी नमस्कार।
0: अरे मनीष भैया तनक बोलन तो दे करे कम से कम हमें आप बीच बीच में टोक देते ही मतलब का है तुम बात कर रहे थे अपने साथ
1: नहीं नहीं हमारी भी नमस्कार पहुंच जावे सभी अच्छा। श्रोता साथियों को काय से हम वो कामयाब कार्यक्रम जो रथ है
0: वो हाँ वो तुम
1: हमारे नहीं हमारी
0: कह दू
1: नहीं हमारे युवा साथी जो सोचते हैंगे के मनीष भैया या कार्यक्रम को लेके आते हैंगे
0: हाँ तो मतलब जो यह है नहीं हाँ। नहीं जो ही मतलब है कि तुम हमें जो क्या पहुंचा रहे हैं कि जो कार्यक्रम तो हमारा है हम ही अपने साथी इनके बीच में लेके आउ थे तो आज जी कैसे पहले भूल गई ये बात को तुम्हें बुरा लगा हुज्जे से तुम बीच में हमारी बात काटन लगे
1: नहीं ऐसा नहीं है बात और हम अपने साथियों को बड़ी खुशी होती हैगी जब हमारे साथी हमसे जुड़ के पूछे थे कि भाई साहब ये कार्यक्रम सुन के हमने अपने जीवन में बदलाव करो है को काय से कई वर्ष हो गए हैं 2008 से जब हम लोग चला रहे कार्यक्रम को और 2008 के बाद हमने जो कार्यक्रम की रूपरेखा जो तैयार करी है थी वह रूपरेखा हमारे श्रोता साथियों ने जो अपने सुझाव दिए थे उन्हीं सुझाव के आधार पर हमने जो रूपरेखा तैयार करी थी। अब जैसे हम होंगे कामयाब कार्यक्रम हम तो हुए ही कामयाब लेकिन हम होंगे कामयाब कार्यक्रम में हम ऐसे ऐसे चाहे वो व्यवसाय हो
0: अरे बस बस बस बस मनीष भैया बस बस बहुत ज्ञान देते हैं आप इतनो ज्ञान जब बोलत हैंगे तो ऐसा लगत के तुम बैठ के और बढ़िया ज्ञान को भंडार भरो हुए और वो लेट हुए। अब तना बता तो दो कौन सो कार्यक्रम लेके आए हैं
1: जो कार्यक्रम को नाम है मित्रों हम होंगे कामयाब कार्यक्रम और जहाँ मैं अपन सुनते हैं छोटो काम बड़ा मुनाफा
0: ये और... यानी के भी को मतलब है कि छोटो काम करो और मुनाफा बड़ो कमाओ
1: हाँ और जब कार्यक्रम में हम जैसे हम कामयाब कार्यक्रम रखेंगे तो उन कार्यक्रम में हम अपने साथियों को चाहे वो जैसे अपन नौकरी करवे जा रहे हैंगे
0: हाँ।
1: तो नौकरी के लाने कैसे इंटरव्यू दें हमारे साथी बाकी लाने भी उनका पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो होते है व्यक्तित्व विकास जो रहते है यदि आपके पास अपने बोलने की क्षमता नहीं है आप जैसे इंटरव्यू देवे जा रहा है तो आप हिचकिचाते होगे कैसे बहुत ज्यादा समय लगा थे जी चीजन को सीखवे में यदि आप किसी के पास बैठे हो उनका सवाल का है उसका जवाब कौन तरीके से देना है वो तो नौकरियन में जी चीजें हमें विशेष तौर पर ध्यान रखो चाहिए तभी हमारा व्यक्तित्व निखरे है वो और तभी हम आगे बढ़ सके तभी हमने जो कार्यक्रम को नाम रखो तो हम होंगे कामयाब एक दिन।
0: लेकिन जो तो बताओ अबे अपन का सुन रहे हैंगे और आप बता के बारे में रहे
1: नहीं हम कामयाब कार्यक्रम के बारे में बता रहे
0: मतलब हमारे बहन को एक फोन आ रहा है बता दो
1: चलो अपनी बहन को एक फोन आ रहा है जी बे का सलाह दे रही है इसको सुना थे कैसे हमारे जी बहुत अच्छे साथी हैंगे एक चीज हम एक बारे में बताना चाहते हैं
0: फोन तो उठा लो पहला वो
1: नहीं हम बिल्कुल उठाए ले रहा है फोन हम अपने साथी उनको बताना चाहते हैंगे के व्यवसाय करवो और व्यवसाय के बारे में समझ वो ये बहुत बड़ी चीज रहती है जैसे अपन किसी बड़े व्यवसायी के बारे में या सफल व्यवसायी के बारे में बात करते हैंगे तो वास्तव में जो सीख मिलत है उनके जो अनुभव रहेंगे उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहेगी।
0: अब फोन कटगो आप काय में से उठा रहे
1: चलो हमारे संग टीकमगढ़ से रूपा जी जुड़ रही है चलो उनसे बतकाओ अपन कर लेते हैं तो उनके अनुभव को साझा कराते हैं
0: तो बात तो हम ही करें आप फोन करेंगे
1: चलो आप ही कर लो भैया रूपा जी को फोन है वो आप ही बात
0: ठीक हेलो नमस्ते
2: नमस्ते रूपा रानीपुरा से जिला टीकमगढ़ से अभी वर्तमान में हम गांव में सिलाई सेंटर टीकमगढ़ से आया है टीचर अभी सिलाई सेंटर का काम चल रहा है इसमें कपड़ा भी आए हुए है तो कपड़ा की सिलाई चल रही है सिलाई सीखेंगे अब।
0: अच्छा यानी कि आप सिलाई का काम कर रही हैं तो सिलाई का काम आपने कहाँ से सीखा है कहीं प्रशिक्षण लिया था क्या
2: केंद्रीय टीकमगढ़ प्रशिक्षण में सेंटर सिलाई खुला हुआ था वहाँ पे हमने एक महीने सिलाई सेंटर सीखा वहाँ से फिर हम गांव में आ गए रानीपुरा गांव में वहाँ से फिर सिलाई सेंटर खुला तो यहाँ से हम थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके सिलने लगे फिर दो पैसे भी मिलने लगे
0: जी
2: और यहाँ पे अपने रोजाना आते जाते हैं
0: जी। तो रूपा जी हम ये जानना चाहते हैं कि जो आपने सिलाई सीखी है यानी कि आपने ट्रेनिंग ली है उसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ा कैसे आपने उसमें अप्लाई किया कहीं से जानकारी आपको मिली तो वो कहाँ से मिली।
2: हाँ वैसे गांव के थे आदमी जो जिन्होंने सिलाई सेंटर खोला ना समूह से
0: जी
2: उनसे हमने संपर्क किया तो फिर उन्होंने बुलाया, उनके बारे में जो कुछ लगा कागज वगैरह नाम सारा कुछ लगा के फिर बस यहाँ से हमने शुरू किया काम। तो टीकमगढ़ में हमने सिलाई सेंटर सीख के फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे। फिर एक महीना हमें टीकमगढ़ में सिलाई सेंटर सीखने का मौका मिला, फिर एक गांव में आ गए। तो बस ऐसे ही आगे बढ़ रहे, हमें बहुत अच्छा लगा है।
0: जी, तो आपने जब अप्लाई किया था वहां पे कुछ फीस वगैरह आपकी ली गई थी क्या?
2: नहीं, फ्री में सीखा। नहीं,
0: अच्छा, कोई पेमेंट नहीं हुआ था आपका, मतलब पैसे नहीं
2: कोई
0: लगे थे?
2: नहीं।
0: अच्छा, तो रूपा जी आप इससे पहले, सिलाई सीखने से पहले क्या करती थी?
2: कुछ नहीं, गांव में बच्चे पढ़ रहे हैं, गांव में खेती किसानी करते रहते हो, गांव में कुछ नहीं है क्या, कुछ काम ही नहीं है, मजदूरी कहीं लगती नहीं है, बस बैठी है खाली घर में।
0: अच्छा, तो आपको क्यों लगा ये कि हमें सिलाई सीखना चाहिए, इससे हमें क्या फायदा होगा?
2: हमने इसलिए सिलाई सीखना चाहिए ताकि हमें 2 पैसे मिलने लगे, कहीं बाहर ना जाए, हम मजदूरी करने घर ही में रहे, बच्चों को संभाले, बच्चे स्कूल से पढ़े और गांव में रहे, घर में रहे, बस 2 पैसे मिले, हमें 2 पैसे आएंगे, हम बच्चों को पढ़ाएंगे, अपना खर्चा चलाएंगे, घर से बाहर ना कहीं जाना पड़े।
0: बिल्कुल, जो आपकी सोच है बहुत अच्छी लगी, और साथ ही साथ हम ये कहना चाह देंगे कि अभी जो आप काम कर रही हैं इसमें आपको कितना क्या मुनाफा, जिसको कहते हैं, कैसे हो जाता है?
2: वैसे हो जाता है, दिन में ज्यादा कुछ नहीं, वैसे फिलहाल हमने फीस सिली हुई है, दिन में 1-2 बिलो सिले तो बन जाते हैं, 60-65 रुपए दिन के हो जाते हैं, तो महीने पे जोड़ लो कितने होते हैं बस।
0: अच्छा जी, तो दिन के 60-65 रुपए आपके हो जाते हैं, तो आपको मतलब लगता है कि आपके परिवार में चलाने के लिए कुछ जो खर्चे होते हैं, थोड़ा बहुत मदद तो आपको मिलती होगी इससे? अच्छा, आगे बढ़ाएंगे।
2: बताए
0: जी
2: हाँ,
0: बिल्कुल
2: भोपाल से भी आए थे अधिकारी लोग, बता रहे थे कि अभी करो फिर पैसे बढ़ाएंगे।
0: अच्छा, तो अभी मतलब जितना काम आप करती हैं उसका ही पेमेंट मिलता है कि महीना में जो पेमेंट होता है वो आपको मिलता है?
2: ऐसे महीने में अभी मिला तो नहीं है, पर सुनवाई है अभी, तो ऐसी पुराने चीज थी ना, उन्हें सिलाए जैसे पैंट थे, शर्ट थे, इन्हें अब नए कपड़े आए हुए हैं, हम बता रहे थान के थान आए हुए हैं, उनमें से बनाएंगे, जैसे टीकमगढ़ में आए हुए थे उनमें से कपड़ा सिलने के लिए, सीखने के लिए काट के दिए थे उन्होंने।
0: जी, कैसे मतलब बाहर से जो कपड़े आते हैं वो सिंपल थान के कपड़े रहते हैं, फिर आप लोग उसको डिजाइन करते हो यहाँ पे? अच्छा, फिर इसकी जो मार्केट है कहाँ पे, आप लोग खुद सेलिंग करते हैं या फिर जो कपड़ा आपको देते हैं वही लोग लेके जाते हैं, इसमें थोड़ा सा बताएं आप।
2: हमें देते हैं कपड़ा तो हम उसे सिल के फिर उन्हीं के पास छोड़ देते हैं, ताकि वे बाहर से कपड़ा लाते हैं, झांसी से सुनवाई है, झांसी से कपड़ा लाए हैं।
0: अच्छा, झांसी से कपड़ा आता है आपका और वो खुद ही आके आपके ले जाते हैं तैयार किए हुए
2: हाँ
0: कपड़े?
2: हाँ तैयार किए हुए कपड़ा ले जाते हैं।
0: अच्छा रूपा जी, बहुत बढ़िया काम है ये आपका तो, और साथ ही साथ ये आप अकेले सिलाई करती हैं या फिर आपके साथ और भी कुछ महिलाएं या
2: नहीं है,
0: लड़कियां?
2: 10-12 महिलाएं हैं साथ में मिलके सारी करती हैं।
0: अच्छा, सारे लोग करते हैं सिलाई का, तो एक समूह में आप लोग काम कर रही हैं अभी?
2: हाँ, समूह वाले भी हैं, कुछ बिना समूह वाले हैं, समूह में मिलके काम कर रहे हैं हम लोग सारे मिलके।
0: जी, बहुत बढ़िया आपकी जो पहल है बहुत अच्छी लगी, और हम ये जानना चाहते हैं कि जो आपका आगे का क्या प्लान है इसमें और क्या करना चाहती हैं, आपकी योजना क्या है इसमें?
2: आगे ऐसा है कि अपने धीरे धीरे करके सिलाई सेंटर के बाद फिर आगे अपने घर में भी कुछ कपड़ा लाओ, अपने घर में भी करे कुछ, ताकि गांव वालों को भी आए तो अपने 2 पैसे गांव के भी बचे और 2 पैसे अपने सिलाई सेंटर से भी बचे, तब परिवार का गुजारा हो सकता है।
0: जी जी बिल्कुल रूपा जी, आपने जो बातें हमें बताई हैं बहुत ही अच्छी लगी। इसमें हम एक चीज और थोड़ा सा आपसे जानना चाहेंगे कि जब आपने ये कर रही थी सिलाई का काम आपने शुरू किया, तो क्या क्या परेशानी आपको आई? क्योंकि देखो कोई भी काम करते हैं तो परेशानी तो आती है।
2: परेशानी तो आती है वैसे भी।
0: जी, तो आपको ऐसी कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ा?
2: हमें ऐसे जैसे हमें आता नहीं है तो कोई काम करना नहीं आता, जैसे शुरू शुरू में हमने सिलाई सेंटर में हमने पूछा कि कपड़ा कितना नाप का होता है, तो हमने पूछा सब मिलके के, हमने सर से पूछा या मैडम से पूछा जो हमें सिखाती हैं,
0: जी
2: उनसे उनसे पूछा हमने ये कपड़ा कितने मीटर का होता है। इसके बाद में तब हम आगे बढ़ते गए, धीरे धीरे हमें नॉलेज हुआ कि हम इन कपड़ों को ध्यान में रखें।
0: जी,
2: कल जाके हम बाजार में ले तो सके, अपन को लेना है तो कल बाजार में ले तो सके।
0: बिल्कुल बिल्कुल, जब तक अपन को पूरी जानकारी खुद ना हो उस चीज के बारे में तो हम बाजार में जाके नहीं ले सकते।
2: सकते ना, फिर धीरे धीरे करके बस हमें अपने जैसे मशीन ली तो मशीन को भी ध्यान में रखना ताकि कल बाजार खराब हो जाए कोई भी चीज तो बाजार में जाके हमें लेने पड़ जाए, या हम ना जाए दूसरों को बता तो सके उसके नाम वगैरह सब।
0: जी
2: तो बहुत सी परेशानी हुई ऐसे, हमें जानने में बहुत भी कठिनाई आई। हमने आगे चल के दूसरों आदमी से पूछा हमने कि
0: जी
2: ये चीज क्या है,
0: जी
2: तो हमें जानकारी हुई।
0: जी रूपा जी, तो जब आपने सिलाई 1 महीने सीखी है तो आप 1 महीने में क्या परफेक्ट टेलर जिसको कहते हैं आप सिलाई करने लगी थी क्या, या फिर
2: नहीं
0: इससे
2: एक
0: ज्यादा
2: महीने
0: समय
2: में
0: लगा?
2: नहीं किया अभी, नहीं, 1 महीने में नहीं हमने किया।
0: जी
2: अभी चल रही, शुरू चल रही, अभी सीख रहे हैं अभी। कितने फिलहाल हमने 1 महीना कौन था, 2-3 महीने हो गए, 3 महीने गुजर गए।
0: अच्छा, 3 महीने आपके गुजर गए हैं, तो कुछ ना कुछ चीजें तो ऐसी होंगी ना जो आप परफेक्ट बना लेती हैं।
2: हाँ वैसे सलवार है, कुर्ती
0: जी
2: है, ब्लाउज है, बस
0: ये चीजें आप
2: यही
0: बना
2: दो।
0: लेती हैं?
2: हाँ यही 2-3 चीजें बना लेते हैं,
0: अच्छा, इसमें आपको किसी की हेल्प की जरूरत नहीं पड़ती है?
2: अब नहीं पड़ती, बस पहले पड़ती थी, अब नहीं पड़ती किसी की हेल्प।
0: अच्छा, तो गांव में जब आपने सिलाई सेंटर खोला

0: है, मतलब खुला हुआ है, आपके गांव में इस चीज की मांग है ज्यादा से ज्यादा कि लोग आएं और आपके पास कपड़ा सिलवाएं, या फिर सिर्फ आप बाहर का ही माल लेकर सिलती हैं?
1: नहीं, अभी तो वैसे बाहर का माल है, पर गांव में घर घर टेलर है, तो
0: अच्छा,
1: अभी तो कोई नहीं आता। अब आगे चल के जो आएगा देखा जाएगा, ना आएगा तो सब घर में घर हो गए टेलर, घर घर अपना काम कर रहे हैं। तो हम सोच रहे हैं आगे चल के हम अगर सीख जाए तो फिर हम कहीं शहर में जाके दुकान लगा सकते हैं, मशीन रख सकते हैं, ताकि हमें आगे बढ़े।
0: जी, बिल्कुल, बहुत अच्छी प्लानिंग है आपकी रूपा जी। इससे हमारी और जो महिलाएं सुन रही हो उनको भी लगेगा कि हम भी कुछ कर सकते हैं। जैसे कि आप पहले जब सिर्फ घर का ही काम करती थी, आप कैसे, आपके मन में ये दिमाग में आइडिया आया कि हम सिलाई करेंगे? आपको पहले से इच्छा थी क्या?
1: हाँ, पहले से थी, हम पहले से सोच रहे थे, पहले से हमने मशीन भी रख ली थी, तो हमारे पास कपड़ा नहीं आता था, तो हम अपने घर के पुराने कपड़े काट कूट के अपने सिल दे रहते थे। तो ऐसे धीरे धीरे करके आगे बढ़े। लेकिन बस दीदी एक बात और बता, कि हर गांव में ऐसा क्यों होता है कि आदमी आगे ना बढ़ पे? अगर घर ही में है ना इंसान, तो घर ही का घर ही में नहीं आगे बढ़ने देता। ये सबको भी आप बता दो, आप हमारी बात जैसे रेडियो पर चल रही तो सुन भी रहे हो गए,
0: जी
1: तो लेकिन क्यों घर घर में ऐसा होता है? इसका निश्चय आपको करना पड़ेगा वर्षा दीदी, इसको आगे बढ़ाओ कि घर घर में क्यों बुराई, और सब अच्छे
0: जी
1: जो है एक घर में सब सारे मिलके चले। तो
0: जी बिल्कुल, आपके कहने का
1: पहले
0: मतलब है कि महिलाएं, बहुत सी ऐसी हमारी जो बहनें हैं इस समय रेडियो सुन रही हैं, उनको ये लगता है कि हम कुछ नहीं कर सकते, हालांकि उनको आता सब है लेकिन वो करना नहीं चाहती, या तो फिर उन्हें परिवार का सपोर्ट नहीं मिल पाता है।
1: नहीं, बस यही बात है, परिवार का सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, इसीलिए आगे नहीं बढ़ पाती है।
0: जी, तो आपके हिसाब से जब आपने सपोर्ट की बात की है परिवार की, तो आपको कितना सपोर्ट मिला आपके परिवार से?
1: हमें तो फिलहाल अभी कुछ भी नहीं मिला, हम तो परेशान है, इसीलिए हम सोच रहे हैं कि आगे चल के हम समझा रहे हैं आगे हमें बढ़ाओ, ताकि हम दो पैसे कमा सके। हम कहीं कहाँ जाए, बच्चे पढ़ाई में कहाँ जाए, गाँव छोड़ के,
0: जी
1: बताओ।
0: जी बिल्कुल, गांव छोड़ने की बात तो आपकी बहुत अच्छी लगी कि गांव छोड़ के कहीं नहीं जाना है हमें, अपने ही गांव में अगर हमें कुछ काम ऐसा मिलता है जैसे कि आप सिलाई सेंटर करती हैं, ऐसे और भी कई कार्य हैं जो आप अपने गांव में रहकर ही कर सकती हैं, और ज्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत अपने परिवार का इसमें सहयोग कर सकती हैं।
1: लेकिन परिवार आजकल साथ ही नहीं दे रहा, तो बताओ ऐसे पता नहीं इंसान कैसे कैसे हो जाते हैं, साथ ही नहीं दे रहा है, तो सोच रही है आगे ना बढ़ जाए।
0: जी रूपा जी, आपकी जो बातें आप हमें बताई हैं, हमारी साथियों को बताई हैं, बहुत अच्छी लगी हैं, और हम कोशिश करेंगे कि आपकी बातें सुनकर हमारी जो महिलाएं हैं, जो बहनें हैं, और वो कुछ करना चाहती हैं तो वो हमें जरूर बताएं हमारे नंबर पे, और अपनी आवाज हमें, हम तक पहुंचाएं, ताकि हम भी दूसरों तक पहुंचाएं उनकी आवाज के। देखिए, ऐसी भी महिलाएं होती हैं जो अपने लक्ष्य के लिए कुछ भी कर सकती हैं।
1: इसलिए सोच रहे हैं, लेकिन गलत सोच है वर्षा बहन, गलत सोच है कि ताकि आगे सोचते कि ये बढ़ ना जाए आगे, यहीं की यहीं रह जाए, सोच
0: जी
1: गलत है। आगे बढ़ने की कोशिश करते पर बढ़ने को आगे नहीं देते ना।
0: देखिए रूपा जी, एक कहावत आपने सुनी होगी कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, इसलिए कोशिश करते रहना चाहिए। अपने मन को कभी कमजोर मत समझिए, खुद को किसी से कम मत समझिए, आप सब कुछ कर सकती हैं, बशर्ते हिम्मत मत हारिएगा, आगे बढ़ते रहिएगा। जी रूपा जी, चलते चलते एक लास्ट सवाल है आपसे, जाते जाते हमारी जो बहनें हैं इस समय आपको सुन रही हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहती हैं?
1: उनके लिए बस यही, कोशिश करते रहे, हार ना माने, बस आपने जो कहा बस हिम्मत बढ़ाते रहे, पीछे ना हटे। लड़का लड़की कहते हैं, लड़का लड़की एक समान
0: जी
1: बराबर है, लेकिन हम भी वो भेदभाव नहीं करते कि लड़का लड़की एक समान नहीं है, है।
0: जी बिल्कुल
1: तो
0: रूपा
1: ऐसे
0: जी,
1: आगे बढ़ते रहे बहन भाई, सब मिलके चलते रहे, और घर का और बाहर का भी जो अपने करने में मदद दे सके कोई, तो उनसे और संपर्क करें, हम भी आपको बता देंगे, ठीक है?
0: जी बिल्कुल रूपा जी, आपने हमें इतनी अच्छी बातें बताई, इतना समय हमें दिया, हमारे साथियों के लिए इतना वक्त निकाला कि आप किस तरह से काम कर रही हैं, सिलाई सेंटर आपका कहाँ है, और बहुत ही खास बात जो हमारे आज के कार्यक्रम में है कि आप इतनी दूर की होने के बावजूद भी आपको लगा कि हम रेडियो बुंदेलखंड में अपनी आवाज को दे, ताकि महिलाएं जो सुन रही हैं उनको थोड़ा सा उत्साह प्रेरित हो, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: अच्छी बात, धन्यवाद सर,
0: नमस्कार।
2: रेडियो बुंदेलखंड। साहब तुम तो इतनी नौनी अच्छी बातें कर लेती हैं, और रूपा जी ने कितने अच्छे अनुभव आपको बता दिया। आपको शायद हमें देखा पहले से बिल्कुल पता हो ये कि रूपा जी बात करें और
0: हाँ
2: व्यवसाय के बारे में बताएं।
0: हाँ बस तो
2: हम सोच
0: मतलब
2: ही रहते हम हमें आज कौन सा व्यवसाय दें कौन सा व्यवसाय दें, और हमारी रूपा बहन ने बताई दी कि हमने जो हम अनुभव जो राय है उनके कैसे, ये बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। कि कछु भी चीज को यदि अपन व्यवसाय को स्टार्ट कर रहा है शुरुआत कर रहा है तो उसके लाने ट्रेनिंग्स की जरूरत पड़ा थे, उसके नाना मार्केटिंग की जरूरत पड़ा थे। ये सारी बातें जो रूपा जी ने अनुभव अपने बताए हैं कि उनने कैसे कैसे एक एक सीढ़ी खो रख के आज आगे बढ़ गई हैं, और उनने किस तरीके से सिलाई को काम सीख के आज भी अपनों परिवार को भरण पोषण कर रहे हैं। वाह धन्यवाद।
0: अरे मनीष भज्जा, सबसे बड़ी बात पता का हैगी जा हैगी कि अपन हो रहे सीख तो ले थेंगे। मतलब जैसे कहता हूँ सुनी क्या रे होते जो चीज से करे हमें तो सीख भी जाना सीख भी सुबह बहुत है ना। नई शुरुआत में तना एक जाबे को चस्का लगो रहते है सो चले तो जा सीख भी, लेकिन वो काम को कैसे हम अपनो व्यवसाय बना सका, कैसे उसे अपनी आजीविका चला सकते जो बहुत कम लोग होते जो सीख पाते हैं। तो
2: बिल्कुल
0: काय की रूपा जी ने जो हमें बताई थी कि टीकमगढ़ में जो RCET सेंटर चला थे वो उनके माध्यम से कम होते ज्यादा नहीं तो 30-40 औरतें उस समय पे ट्रेनिंग उनके संगे ले रही थी। लेकिन अगर बात करें कि उखो कंटिन्यू आगे कीने करो तो उनमें से बहुत से बहुत 10-15 महिलाएं ऐसी हैं थी जो कि अपने घरे जब वापस गई और भी सिलाई को काम कर लगी हैंगी। तो केवी को मतलब जो है वो कि कोनो भी काम अगर अपन सीखत हैंगे और करवे के उद्देश्य से अगर सीखत हैंगे तो उसको जरूर सीखो। क्या कि आपने वो 1 महीना या 4 दिना जो भी आपको समय हतो वो समय आपने वो ट्रेनिंग में दो है और वो समय आपको बहुत कीमती हतो महत्वपूर्ण हतो। तो इसे भैया अपन अपनी आजीविका के बारे में तो सोचते हैंगे और सोचवे के संगे अपन कैसे एक छोटो सो काम करके एक बड़ो सो मुनाफा कमा सकत हैंगे। इतने अगर अपन बात करें मनीष भैया के अपनी जो बहने होती खास तौर से भी दो चीजन को ज्यादा पसंद करती हैं, ये दो या तीन चीजन को बहुत से बहुत, एक तो हो जाते हैं वो कि सिलाई को काम, दूसरो ब्यूटी पार्लर, तीसरो उन्हें कढ़ाई बुनाई को काम अगर अच्छा लगा थे वो तो वो भी वे करती हैंगी। तो महिलाएं अक्सर इन दो चीजन पे या तीन चीजन पे काय अटकती। हम तो कहते आप और भी बेहतरीन काम कर सकती, जैसे अचार बरी को काम है, अगर आप बहुत अच्छी तरीका से अचार बरी पापड़ है और या फिर जी मसाले होते ही अगर आपको जो ही बनावो आते हो और बहुत अच्छी तरीका से आप बनावो जानती हैं तो उनके छोटे छोटे पैकेट बना के आप मार्केट में एक अपनी खुद की ब्रांड आप तैयार कर सकती हैं, ये अगर आपको अच्छी तरीका से बनावो आते। तो केवल दो ही चीजन पे ना अटको कि हम केवल सिलाई या ब्यूटी पार्लर करेंगे, आप और भी ज्यादा काम कर सकती हैं और कई प्रकार के काम आप कर सकती हैं।
2: अरे ज्ञान की देवी अब तो
0: हाँ
2: नक रुक जाओ और हमारे साथियों को तनक सांस लेन दो और जो लोकगीत सुनन दो उनको, कैसे इतनी ज्ञान ज्ञान ज्ञान दे चली जाओगी। तो हमारे साथी कह के हाओ ज्ञानी बाबा लोग आ गए हैंगे
0: हाँ
2: और
0: मतलब
2: ज्ञान
0: तुम
2: दे
0: तो
2: गए।
0: मैं बोलन दो सो कछु नहीं है,
2: नहीं नहीं
0: तुम
2: नहीं
0: बोला
2: अपन
0: तराओ।
2: एक बढ़िया अपन भी थोड़ो विराम ले लेते हैंगे और अपन सुनवात हैं अपने श्रोता साथियों को जो नौ नौ सो गजल खो अपन गजल खो सुनेंगे, और गजल के बाद साथियों फिर ये तनक आपकी हमारी मुलाकात जा कार्यक्रम हम होंगे कामयाब कार्यक्रम में।

0: तो हमारे सब श्रोता साथी अब हरीश दर्द जी की आवाज में बढ़िया सी गजल को सुन रहे थे, और अब हमें लगा थे वो मनीष भैया जो ज्ञान तो तुम्हें दे सका थोगे, कहे गया हम बोला सो फिर कहते कि ज्ञान दे रही
1: नहीं, अब हम भी ज्ञान नहीं देंगे,
0: नहीं
1: साथ ही
0: दो।
1: अनखों बस पूछ वो चाह रहे हैंगे कि जो कार्यक्रम हम लोग बना के आप लोगों तक पहुंचा रहे हैंगे, तो कार्यक्रम आपको कैसे लग रहे हैंगे, कैसे है, जब तक आप लोगों की प्रतिक्रिया नहीं आए, कैसे एक जो मंच है वो रेडियो बुंदेलखंड के ऐसो मंच है वो जहाँ पर हमारे श्रोता साथी अपनी बात को रख सकत हैंगे और अपनी बात दूसरे तक पहुंचा भी सकत हैंगे। तो अपन ये चीजें आपको बता देंगे, जो बातें आपको बता देंगे, चाहे वो खेती किसानी से जुड़ी बातचीत हो, चाहे युवा साथियों को कैरियर से जुड़ी बातचीत हो, चाहे वो आजीविका से जुड़ी बातचीत हो, तो ये सारी चीजें जो रहेंगी, सारी बातें जो रहेंगी, उनको यदि हमारे श्रोता साथी यदि मैसेज भी करें या फिर व्हाट्सअप करें या फिर फेसबुक पे भी हम और रहेंगे, और फेसबुक पे भी आप हमें कमेंट्स बॉक्स में जाकर लिख सकते हैं जो कार्यक्रम हम चला रहे हैं उनके बारे में। और खास तौर पर आज को जो कार्यक्रम हमने जय के लाने बना है गो, जैसे रूपा जी ने अनुभव दिए हैंगे, तो आप भी अपने अनुभव साझा कर सकते हैंगे। यदि आप सफल व्यवसायी हैंगे, आपको लग रहा है गो कि आपको ट्रेनिंग की जरूरत है, या फिर आपको लग रहा है गो कि आपको मार्गदर्शन की जरूरत है, तो आप हमें कॉल करके बता सकते हैंगे।
0: बिल्कुल यही प्रकार है, और हम वही सोच रहे थे कि ज्ञान की बात खुद कर रहे थे, और देखो इतनो मना करत करत आखिर में ज्ञान दे ही दो। तो साथियों सीधी सी बात नहीं कर सकते कि भज्जा अब हम जाते हैं ये कार्यक्रम से, और आपको अगर कोई संपर्क करने हैं तो लाना हमारा नंबर जो है वो।
1: हाँ, और साथ ही जरूर फोन लगाएं या फिर फेसबुक पे फॉलो करें या फिर हम इंस्टाग्राम पे फॉलो करें।
0: अरे मनीष भैया सुनो सुनो सुनो सुनो, तुमने ऐप के बारे में कहीं नहीं बताओ, और
1: ऐप हमारे श्रोता साथियों के पास यदि
0: जानत है।
1: नहीं, नहीं जानत तो हैंगे, और हम एक बार फिर से कह वो चाहते हैंगे कि रेडियो बुंदेलखंड आप इंटरनेट पे भी उपलब्ध है वो, जहाँ पर रेडियो नहीं पहुंच पा रहा है वो रेडियो सेट के माध्यम से, वहां पे इंटरनेट की इस दुनिया में आप सभी का स्वागत है। रेडियो बुंदेलखंड वहां भी उपलब्ध है वो, और आप सिर्फ गूगल प्ले स्टोर पे जाने हैं वो, और प्ले स्टोर पर रेडियो बुंदेलखंड जैसे ही आप सर्च करोगे तो आप रेडियो बुंदेलखंड को लोगो उपलब्ध पाओगे, बाखों डाउनलोड करो और चाँद जितने बैठ के हैं, यदि आपके पास इंटरनेट है वो चाँद उन छिड़िया में बैठ के सुन सकत हैंगे और अपनी ज्ञान की बात अनखो सुन सकत हैंगे।
0: तो केवल साथियों ज्ञान की बातें सुनबे नहीं, मनोरंजन की बातें भी सुनबे के लाने, आप डाउनलोड जरूर करबे ऐप, काहे कि अपने श्रोता साथियों की हर बार जैसी शिकायत रहती कि रेडियो के नेटवर्क नहीं आ रहे, तो एक बहुत अच्छा माध्यम है कि आप जो है अपने फोन में प्ले स्टोर पे जाके ऐप को डाउनलोड कर लेवे रेडियो बुंदेलखंड को ऐप, और फिर अपन जिते चाहे बैठ के ई कार्यक्रम को सुन सकते हैं सुबेरे 7 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक। तो अब भैया देखो ज्यादा ही टाइम हो रहा हो, काहे कि अब हमें चलन दो, और फिर ये आपसे मुलाकात अगले कार्यक्रम में, तब तक के लाने
1: नमस्कार।

नमस्कार साथियों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का आपके अपने रेडियो दोस्त मनीष कार्यक्रम हमाई गांव हमाई सरकार कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और जैसा कि साथियों आप जानते हैं कि हमाई गांव हमाई सरकार कार्यक्रम में हम पंचायत पर बातचीत करते हैं, उन ग्रामों पर बातचीत करते हैं, ग्राम के विभिन्न ढांचा जो हम जिसे पंचायत कहा जाता है उन पर बातचीत करते हैं। ग्राम सभा हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण है और ग्राम पंचायत में ग्राम सभा का क्या महत्व है, इसके बारे में भी बताया गया था। आपको बता दें कि हमने इस कार्यक्रम के माध्यम से बताया था कि छोटे छोटे बिंदुओं पर हम प्रकाश डालेंगे। अभी तक लोगों को दोस्तों पता नहीं है कि आखिरकार पंचायती राज व्यवस्था क्या है, कब शुरुआत इसकी हुई है, हमारा पंचायत में कितना योगदान है, ये अभी तक

किसी ने नहीं समझा है और लोग बस हवा हवा में बात करते रहते हैं कि हमारी पंचायत है, सरपंच हमारा है, काम नहीं कर रहा है। अरे भाई, उस बातचीत को आप समझिएगा, तब आप कहिएगा कि ये पंचायत राज व्यवस्था है, इसमें ये हमारा अधिकार है, ये नियम कानून है, इस बात को गौर करिएगा। अभी तक तो हवा हवा में बात होती है कि साहब मध्याह्न भोजन नहीं बट रहा है, भाई साहब हमारे गांव में नाली की समस्या है, आप उस पर प्रकाश तो डालिएगा। आपको यही पता नहीं है कि पंचायती राज व्यवस्था क्या है। दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम हमारी गांव हमारी सरकार कार्यक्रम में इसी बिंदु पर आज हम बात करेंगे, क्योंकि हमारे मन में खटक रहा था कहीं ना कहीं कि अभी तक लोगों को अपनी जिम्मेदारी का अधिकार के बारे में पता नहीं है, पंचायती राज व्यवस्था के बारे में पता नहीं है, सिस्टम क्या होता है ये भी पता नहीं है। पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम, तालुका और जिला आते हैं। भारत में प्राचीन काल से ही पंचायती राज व्यवस्था का अस्तित्व में रही है। आधुनिक भारत में पहली बार तत्कालीन जब प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव में 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी, इस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री मनोहर लाल सुखड़िया और मुख्य सचिव भगत सिंह मेहता थे। भगत सिंह मेहता को राजस्थान में व बलवंत राय मेहता को भारत में पंचायती राज का जनक भी माना जाता है। दोस्तों, इस पर हम बातचीत जरूर करेंगे, क्योंकि पंचायती राज व्यवस्था एक बड़ा बिंदु है, बड़ी समस्या है, लोगों को यही पता नहीं कि पंचायती राज व्यवस्था। आइए हम हमारे एक्सपर्ट चंदन जी से आज हम जानते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था क्या है, कौन सा अधिनियम है, इसमें हमारा क्या अधिकार है। तो आइए हम पंचायती राज व्यवस्था पर चंदन जी से बातचीत करते हैं कि आखिरकार पंचायती राज व्यवस्था क्या है, लेकिन विराम के बाद।

0: हम सबको ऐसा अभियान चलाना है।
1: आवो बहनों हम सबको ऐसा अभियान चलाना है।
0: आवो बहनों हम सबको ऐसा अभियान चलाना है।
1: सेवा भावी निस्वार्थ चुन,
0: सेवा भावी निस्वार्थ चुन,
1: सरपंच पर

0: इलेक्शन वो हमको अपनाना है।
1: पंचायत से संसद तक,
0: पंचायत से संसद तक
1: बहनों को पहुंचाना है। आओ बहनों हम सबको ऐसा अभियान चलाना है। आओ बहनों हम सबको ऐसा अभियान चलाना है।

0: मैं बन सकती हूँ सरपंच, तुमको साथ निभाना है।
1: मैं बन सकती हूँ सरपंच, तुम सबको साथ निभाना है।
0: मैं बन सकती हूँ सरपंच, तुम सबको साथ निभाना है।
1: मैं बन सकती हूँ सरपंच, तुम सबको साथ निभाना है।
0: घर से पंचायत तक, घर से पंचायत तक, हम सबको मिलकर जाना

0: हम सबको ऐसा अभियान चलाना है, आओ बहनों हम सबको ऐसा अभियान चलाना।
1: गांव में काम करवावे की जिम्मेदारी कौन की?
2: पंचायत।
1: गांव में किते किते और का काम हुज्जे जो तय को करे?
3: ग्राम सभा।
1: सोशल ऑडिट की जिम्मेदारी कौन की?
2: ग्राम सभा की।
1: मैं हूँ जा गांव की सरपंच, रोजगार गारंटी से जुड़ी पंचायत और ग्राम सभा की जिम्मेदारी को मैंने समझो है और आपने।
4: रेडियो बुंदेलखंड द्वारा जनहित में जारी।
5: चंदन जी, हमारे साथियों को बताइएगा कि चूंकि बातचीत हम कर रहे हैं पंचायती राज व्यवस्था पर, तो पंचायती राज व्यवस्था आखिरकार क्या है, इसके बारे में जानकारी दीजिएगा।
6: तो हमारा जो पंचायत राज अधिनियम है, पंचायत राज अधिनियम में लोगों को ये अधिकार दिए गए हैं, खास करके जब 73वां संविधान संशोधन हुआ पंचायती राज में, तो उसके बाद ये लोगों को अधिकार दिए गए जो वो अपने गाँव की योजना पंचायत के साथ मिलकर खुद तैयार करें, अपनी आवश्यकताओं को खुद समझें, अपनी आवश्यकताओं के आधार पर उसके समाधान की रणनीति तैयार करें। ये तो एक कानूनी पक्ष है जो हमें पंचायत के कानून के द्वारा प्रदान किए गए पंचायतों को, ग्राम सभा के लोगों को। लेकिन पहले ये समझना पड़ेगा, जो सूक्ष्म स्तरीय नियोजन की या विकेंद्रीकृत नियोजन की बात हूँ तब करें, पहले ये समझ लें जो नियोजन क्या है, पहले नियोजन कहते किसको है। नियोजन आमतौर पर किसी भी काम को करने से पहले जब पूरी तरह उसके बारे में सोच विचार लिया जाता है, सलाह मशविरा करके जब जो निर्णय लिया जाता है और उस काम को करने की रणनीति या तरीके सोचे जाते हैं, उसे ही नियोजन कहते हैं।
5: चूंकि आपने बहुत अच्छी बातचीत बताई है, मन में एक हमारे सवाल चल रहा है कि ये नियोजन की प्रक्रिया है वो क्या है, इसको विस्तार से हमारे साथियों को बताइएगा।
6: नियोजन या योजना बनाने के लिए जरूरी है कि व्यक्ति, ये जो हमारा ग्राम सभा का समुदाय है या ग्राम सभा के जो लोग हैं या पंचायत के जो लोग हैं जिनको हमने चुना है, वो पहले खूब सोच विचार करे, काम करने के नए नए तरीकों पर विचार करे, उसकी अच्छाइयां बुराइयों को सोचे और तब जाकर समाधान करने के निर्णय पर पहुंचे जिससे उसका सही क्रियान्वयन हो सके। और अगर आप उसको समझें तो ऐसे कह सकते हैं, जब हम वार्ड ग्राम पंचायत के स्तर पर जब छोटी छोटी योजना बनाते हैं उसे ही सूक्ष्म स्तरीय नियोजन कहते हैं। मतलब बहुत स्पष्ट है, सूक्ष्म मतलब छोटा और नियोजन मतलब योजना तैयार करना। जब हम छोटी योजनाओं को तैयार करते हैं छोटे छोटे स्तर पे, तो उसे सूक्ष्म स्तरीय नियोजन कहा जाता है। इसमें एक बहुत आवश्यक चीज ये है, जो हम योजना को तैयार करने से पहले हम देखते हैं जो हमारे पास उपलब्ध संसाधन क्या है और उपलब्ध संसाधनों के आधार पर जो हमारे स्थानीय लोग हैं, जो गांव ग्राम सभा के लोग हैं, उनके साथ हम उनकी सहभागिता से चर्चा करते हैं। चर्चा के बाद उस परिस्थिति का विश्लेषण करते हैं योजना के निर्माण के लिए और

0: महागठबंधन मतलब योजना तैयार होना ही बड़ी बात नहीं है, विकेंद्रीकृत नियोजन में या गांव पंचायत के स्तर पर जो छोटी योजनाओं तैयार करते हैं, इसमें अब जरूरी पक्ष ये हो जाता है जो योजना तैयार करने के बाद उस पर कैसे काम किया जाए, देखरेख कैसे की जाए, उसमें जिम्मेवारी कैसे तय की जाए, ये एक बड़ा जरूरी चीज है। ये जो नियोजन की प्रक्रिया है, ये सामूहिक तौर पे जो पंचायत के लोग हैं या ग्राम सभा के लोग हैं, इस तरीके का विश्लेषण से उसमें निर्णय लेने की क्षमता भी बढ़ती है। वो बैठ के लोगों के साथ बातचीत करते हैं, किस आधार पे कहाँ पहुंचना है, ये निर्णय तय करते हैं, तो एक तरह से ये उनकी क्षमता भी बढ़ाती है गाँव के लोगों के साथ, जो वो अपने स्थानीय परिस्थिति या स्थानीय स्थितियों को सोचने के लिए थोड़ा समझे चीजों को, जो हमारी एक मजबूत इकाई है, जो एक ताकतवर इकाई है गांव के संदर्भ में देखें या ग्रामीण संदर्भ में देखें, और पंचायत एक ऐसी इकाई है जिसको एक कानूनी अधिकार प्राप्त है। अगर आप देश के स्तर पे देखते हैं तो हमारे पास संसद है, राज्य के स्तर पे देखते हैं तो हमारे पास विधानसभा है, अगर आप गांव के स्तर पे देखते हैं तो हमारे पास पंचायतें हैं। इसे एक कानूनी अधिकार प्राप्त है जो ये एक निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। इस परिस्थिति में खास करके एक संस्था के संदर्भ में देखें तो पंचायत जो है वो विकास के लिए योजना बनाता है, लेकिन विकास की योजनाएं ऐसी होती है जो आपकी सामाजिक न्याय एवं समानता पर आधारित हो, मतलब सामाजिक समानता और सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करते हुए पंचायत को विकास की योजना बनानी पड़ती है। इसमें गाँव के स्तर पे जो समस्याएं हैं, जैसे आप बोल रहे थे जनाली की समस्या है, स्कूल की समस्या है, लोग मानते हैं, लोगों का ये सोचना है जो समस्याएं हमारे पास जो है उसके समाधान करना जो है वो सरकार का काम है, जबकि पंचायती राज व्यवस्था कानून ये कहता है जो गांव के स्तर पर जो पंचायतें हैं या पंचायतें हैं वो स्थानीय सरकार के रूप में काम करती है, वो एक वहां की लोकल सरकार है, वो तो लोकल सरकार है, और इसके लिए पंचायतों को तीन चीजें दी गई हैं जो बराबर एक विषय बनता रहता है। अगर आप देखें तो हमारे पास पंचायत में काम करने वाले लोग हैं, उनके कानूनी रूप से उनके काम तय किए गए हैं जो पंचायतों क्या करने हैं, उन काम को करने के लिए उनको लोग दिए गए हैं, और लोग के साथ उनको पैसे भी दिए गए हैं जो काम करे। आमतौर पे किसी भी काम को करने के लिए तीन चीजें जरूरत है, आपके पास अधिकार होने चाहिए, आपके पास लोग होने चाहिए, और आपके पास पैसे होने चाहिए। ये तो ये तीनों चीजें अलग अलग योजनाओं के माध्यम से, जो पैसे की बात है अलग अलग योजनाओं से माध्यम से पंचायतों को दिए गए हैं। कुछ ऐसे पैसे दिए जाते हैं जो पंचायतें अपना स्वतंत्र निर्णय ले गांव के लोगों के साथ बैठ के, तो इस थोड़ा सा मानसिकता को बदलने की जरूरत है। जो स्थानीय सरकार है, जो पंचायतें हैं, स्थानीय समस्याओं के निराकरण वहां के लोगों के साथ मिलकर वो करे। ये पंचायत, ये जो समस्याएं हो सकती है वो किसी विभाग के कर्मचारी से उसका मार्गदर्शन लिया जा सकता है, और पंचायतें अलग अलग मुद्दे पे योजना बना के अलग अलग विभागों को भेज सकती है। उदाहरण के लिए आपने कहा था जो विद्यालय की समस्या है, तो विद्यालय की समस्या है तो इससे संबंधित योजना बना के शिक्षा विभाग को भेजा जा सकता है जिले के स्तर पे। पीने की पानी की समस्या है, इसको लेके हमारे जो योजना बना सकती है पंचायत, योजना बना के आपको पीएचईडी विभाग को भेज सकती है। आपके पास शौचालय की समस्या है, शौचालय की समस्या को लेकर सरकार ने इतना बड़ा समग्र स्वच्छता अभियान चला रखा है, उसको लेके बात की जा सकती है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद चंदन जी, आपने बहुत अच्छी हमारी जानकारी पंचायती राज व्यवस्था को और एक एक बिंदु पर प्रकाश डाला जो हमारे साथियों को बड़ी महत्वपूर्ण लगी होगी। और सोचने वाली बात यह है कि अब जाके अब पता चला कि पंचायती राज व्यवस्था में कहां पर समस्या है, कहां पर लोग अपना निर्णय लेने में हिचकिचाते हैं। चंदन जी, आपसे फिर मुलाकात होगी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी बातचीत हमारे श्रोता साथियों को दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: गांव में काम करवावे की जिम्मेदारी कौन की?
3: पंचायत की।
2: गांव में किते किते और का काम हुजे जो तय को करे?
4: ग्राम सभा।
2: सोशल ऑडिट की जिम्मेदारी कौन की?
3: ग्राम सभा की।
2: मैं हूँ जा गांव की सरपंच, रोजगार गारंटी से जुड़ी पंचायत और ग्राम सभा की जिम्मेदारी को मैंने समझो है और आपने।
5: रेडियो बुंदेलखंड द्वारा जनहित में जारी।
1: एक बार फिर से पुनः दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम हमारी गांव हमारी सरकार। आप तो दोस्तों समझ गए होंगे, आप एहसास हुआ होगा, अभी तक साथियों को ये पता नहीं, उनने सोचा कि ग्राम सभा में प्रस्ताव डाला और बस काम हो गया है। ये साथियों अब हमें जिम्मेदारी स्वयं लेनी होगी, क्योंकि हम और आप देखते हैं कि बस एक ही जिम्मेदारी समझते हैं कि बस हम वोट डाल दिया, हमने सरपंच गठन कर दिया, अब सरपंच ही सारा काम करेगा। नहीं दोस्तों, अब हमें जागरूक होना होगा तभी हमारे गांव का विकास होगा, क्योंकि समितियां इसलिए बनाई जाती हैं, निगरानी समिति हो, हर किसी कार्य योजना कब तैयार की जाती है, ग्राम सभा में जब कार्य योजना तैयार की जाती है, जैसे चंदन जी ने अभी

ऐसे कार्यक्रम के माध्यम से बताया कि कार्य योजना तैयार करना एक बात नहीं है, उसकी जिम्मेदारी लेना ये बहुत बड़ी बात रहती है। क्योंकि हम सोचते हैं कि कार्य योजना अब तैयार हो गई है, हमने नाली का प्रस्ताव दे दिया है, अब बन जाएगी। अब उसमें ये देखना है हमारे पंचायत में कितना पैसा है, पंचायत में कैसे कौन क्रियान्वयन करेगा, कैसे रहेगा, कौन निगरानी इसकी करेगा, ये सारी चीजें, ये जिम्मेदारी हमें स्वयं लेनी चाहिए, तभी हमारे गांव का विकास होगा। एक आदर्श गांव आप दोस्तों किसे समझते हैं? एक आदर्श गांव वही गांव होता है जहां पर हम खुद सरपंच के साथ मिलकर जिम्मेदारी खुद निभाते हैं, चाहे वो किसी भी स्तर पर जिम्मेदारी हो। आप जब बैठक होती है तब आप बताइएगा कि ये काम हम देखेंगे, आप नाली का अगर बात की जाए नाली का काम नहीं, ये हम देखेंगे, जल का काम ये समिति गठित कर दी है ये काम देखेगा, तब काम में मजा आता है और पंचायत भी अच्छी तरीके से चलती है। अब अभी तक क्या होता है, सरपंच हमने बना दिया है, सरपंच ने प्रस्ताव डाल दिया है, वो भी गोपनीय तरीके से प्रस्ताव डाल देते हैं, जब भी ग्राम सभाएं होती ग्राम सभा प्रस्ताव डाल के बस तैयार हो जाता है। अब क्या मटेरियल लगा रहे हैं, कौन सा मटेरियल वो इस्तेमाल कर रहे हैं, कैसा मटेरियल लगा रहे हैं, कौन कौन सी बातें हैं जो ध्यान में रखना चाहिए, ये नहीं सोचते हैं। हम ये सोचते हैं कि सरपंच ने डलवा दी है। एक अच्छा नागरिक की यही पहचान दोस्तों होती है कि हमें उस चीज के प्रति जिम्मेदार लेना चाहिए, उस कार्य के प्रति जिम्मेदारी लेनी चाहिए, हमें अपने आप को स्वयं इस चीज के लिए सरपंच को कहना चाहिए कि ये हम जिम्मेदार हैं और इसका हम क्रियान्वयन करेंगे। दोस्तों हम कार्यक्रम के माध्यम से बताते चले जाते हैं कि हमें किस तरीके से काम करना है। पंचायत में आपकी भूमिका बहुत बड़ी रहती है, चाहे वो सदस्य के रूप में हो या फिर उप सरपंच के रूप में हो या सरपंच के खुद रूप में हो। अब क्या होता है कि सरपंच गठित कर देते हैं और हम बात करते हैं कि हमारे घर में शौचालय नहीं है साहब, हमारे घर में शौचालय बनाइए, आप खुद जिम्मेदारी लीजिएगा। कि जब ग्राम सभा होती कितने शौचालय बन गए हमारे ग्राम में, अब कितने शेष हैं, नाली की क्या समस्या है, खंजड़ा की क्या समस्या है, ये सारी समस्या देखते हुए तभी हमें अपने कार्य को बढ़ाना होगा और साथ में ग्राम के विकास में अपना साथ एवं सहयोग देना होगा। साथियों बस इतना ही हमारे इस कार्यक्रम हमारे गांव हमारी सरकार में, आपके हमारी फिर पंचायत पर बातचीत होगी अगले कार्यक्रम में। तो ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। हमारा पता है, यदि चिट्ठी के माध्यम से आप बताना चाहते हैं तो पता लिख लीजिएगा। हमारा पता है रेडियो बुंदेलखंड 90.4 ताराग्राम ओरछा तिगेला के पास ओरछा, और हमारा फोन नंबर है 9425147726। तो आपके रेडियो दोस्त मनीष लेते हैं इस कार्यक्रम हमारी गांव हमारी सरकार कार्यक्रम से जाने का। आपके हमारी फिर होगी अगले कार्यक्रम में मुलाकात। चलते चलते आपको सुनवाते हैं एक और प्यारा सा गीत। नमस्कार।

शेर वो पढ़ रहे हैं जो फिल्म में जो अखबार में नहीं। इरादे रोज बनते

0: हिंदुस्तान में गंगा जमनी तहजीब है, उसको किस अंदाज में हमारी एक कोशिश है। गंगा जमुना की लहरों में प्यार के धारे बहते हैं,
1: गंगा जमुना की लहरों में प्यार के धारे बहते हैं।
0: हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिलजुल कर सब रहते हैं,
1: हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिलजुल कर सब रहते हैं।
0: होली ईद दिवाली मोहर्रम मिलजुल कर सब करते हैं,
1: होली ईद दिवाली मोहर्रम मिलजुल कर सब करते हैं,
0: होली ईद दिवाली मोहर्रम मिलजुल कर सब करते हैं। झंडा तिरंगा हाथ में लेके

नमस्कार साथियों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेत खलिहान में। और खेत खलिहान कार्यक्रम में हम खेती किसानी से जुड़ी बातचीत को हम लेकर आते हैं, और बड़ी खुशी होती है कि हमारे किसान साथी इस कार्यक्रम को बड़े चाह से और मन लगा कर सुनते हैं। और कुछ दिन पहले एक हमारे किसान ने हमसे अनुरोध किया था कि हमारे सभी साथियों को, किसान साथियों को मौसम आधारित जानकारी, चूँकि मौसम आधारित जानकारी तो हम देते हैं, पूरे भारत में क्या स्थिति है, पानी को लेकर क्या मौसम कह रहा है, उसको लेकर जानकारी चाहिए थी। तो हम इस आग्रह को स्वीकार करते हुए हमारे श्रोता साथियों की पसंद पर इस कार्यक्रम को हम लेकर आए हैं। मौसम आधारित जानकारियाँ, क्या तापमान होगा पूरे भारत में, किन किन हिस्सों में क्या तापमान रहेगा, साथ साथ में वायु का जो संकेत है क्या रहेगा, उस पर भी बातचीत होगी। साथ में हमारे किसान साथी इस बरसात के मौसम में, चूँकि बहुत सारे किसान साथी हमारे रह भी गए होंगे और जिन्होंने बुवाई भी नहीं कर पाए हैं, क्योंकि लगभग एक महीने से ऊपर हो गया है यहाँ पर पानी यानी बरसात होते होते, और हमारे किसान साथी चूँकि बरसात थोड़ी खुलती है इसके बाद मूसलाधार बारिश होती है, जिस कारण से हमारे बहुत सारे किसान साथियों ने अपनी इस मौसम की बुवाई नहीं कर पाई है। लेकिन तैयार रखिएगा, क्योंकि आने वाले समय में हम जो रबी की फसल की तैयारी करते हैं उसके लिए आपको वक्त मिल जाएगा, मौका मिल जाएगा और अच्छी तरीके से

0: खेती को करिएगा। जिन साथियों ने इस बार इस मौसम में खुल गया है और जहाँ पर मिट्टी की अगर बात करें तो जहाँ पर पथरीली दोमट मिट्टी है वहाँ पर किसान साथियों ने मूंगफली और सोयाबीन की फसल लगा दी है, कहीं कहीं किसान साथियों ने अपनी धान की भी रोपाई कर दी है। तो धान में हमारे किसान साथी पानी की निकासी की व्यवस्था करते रहे। पानी चूँकि सब्जी की अगर बात करें तो बहुत जगह पर हमारे किसान साथियों की सब्जी बर्बाद हो गई है और जिन किसान साथियों की अपनी सब्जी की फसल वो लगाए हैं वो पानी की निकासी की व्यवस्था करते रहे हैं। साथ में हमारे किसान साथियों को बता देना चाहते हैं, ये सारी जानकारी इस कार्यक्रम के माध्यम से आप लोगों तक हम भेज रहे हैं, यानी बनाकर हम आपको प्रस्तुत कर रहे हैं। तो गौर से सुनिएगा, क्या भारत का मौसम भारत में कैसा रहेगा, अलग अलग हिस्सों में कैसा रहेगा, जानते हैं इस खास रिपोर्ट को।
1: तो अभी मौसम का हाल कैसा है, बरसात को लेकर क्या संकेत है, वायु गुणवत्ता कैसी है, खेती के साथ जुड़ी कुछ जरूरी बातें, लेकिन शुरुआत करेंगे पांच बड़ी खबरों से। मौसम के लिहाज से पांच बड़ी खबरें क्या है, आइए नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले पूर्व राजस्थान की बात करते हैं, कहीं कहीं जोरदार बारिश की उम्मीद बताई गई है, तो पूरे राजस्थान में मौसम को लेकर बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा, बड़ी खबर। पश्चिमी मध्य प्रदेश की बात करते हैं, भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है, तो यहां पर भी सावधानी बरतें, बड़ी खबर मौसम के लिहाज से। बात करें गुजरात की, कहीं कहीं हो सकती है मूसलाधार बरसात, तो बरसात को लेकर भी यहां संकेत जारी किए गए हैं, बड़ी खबर मौसम के लिहाज से। बात उत्तराखंड की कर लें, कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना बताई गई है, तो उत्तराखंड में भी मौसम में बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा, मौसम के लिहाज से बड़ी खबर है। तटीय कर्नाटक की बात करते हैं, तो कहीं कहीं झमाझम बारिश का अनुमान बताया गया है, यहां पर भी मौसम में बड़ा परिवर्तन है। तो देश के तमाम हिस्सों में बरसात को लेकर संकेत जारी किए गए हैं और हिसाब से ये बड़ी खबर मौसम के लिहाज से हुई पांच आज की। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस मौसम के साथ कैसे आपको अलर्ट रहना है, यानी देश के तमाम हिस्सों में मौसम के हिसाब से क्या अलर्ट जारी किया गया है, कहां सावधानी बरतनी है, कहां आपको चेतावनी जारी की गई है, कहां आपको कैसे अलर्ट रहना है, ये सारी जानकारी लेंगे अपनी।
2: नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आज हम आपको देश भर में होने वाली मौसम की स्थिति की ताजा जानकारी देने जा रहे हैं। उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां चेतावनी जारी की गई है। पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश और गुजरात के कई हिस्सों में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं पर बेहद भारी बारिश हो सकती है, साथ ही गरज और चमक के साथ तेज से काफी तेज हवाएं चलने की संभावना है। इन क्षेत्रों में जल भराव, निचले इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति, तेज हवाओं से नुकसान और बिजली गिरने की घटनाएं हो सकती हैं। स्थानीय प्रशासन और नागरिकों से अनुरोध है कि सतर्कता बरतें और यथासंभव घरों में ही रहें। अब उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां सतर्क रहें। उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, उप हिमालयी, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, पूर्वी मध्य प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा, सौराष्ट्र कच्छ, तटीय कर्नाटक और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में भारी से भारी बारिश के साथ गरज चमक और तेज से काफी तेज हवाएं चल सकती हैं। इन इलाकों में मौसम के तीव्र बदलाव से प्रभावित होने की आशंका है, ऐसे में जरूरी एहतियात बरतना आवश्यक है। अब उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां नजर बनाए रखें। हिमाचल प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़, विदर्भ, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, केरल और तमिलनाडु पुडुचेरी में कहीं कहीं भारी बारिश के साथ गरज और चमक की स्थिति रह सकती है। वहीं रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में गरज चमक के साथ तेज हवाओं का असर देखने को मिल सकता है। यह थी मौसम की ताजा जानकारी, कृपया सुरक्षित रहें, धन्यवाद।
1: तो अपने क्षेत्र में बदलते हुए मौसम पर नजर बना के रखें और जिन क्षेत्रों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, प्रशासन द्वारा गाइडलाइन जारी की गई है, वहां पर खास कर नजर बना के रखें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें। आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में और अब बात करते हैं अपने अगले सेगमेंट की, जिसमें आपको बताएंगे आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर कहां ज्यादा बरसात होगी, कहां कम बरसेंगे बादल। तो जान लेते हैं मौसम का पूरा अनुमान और जानते हैं कि देश के अलग अलग हिस्सों में किस प्रकार के संकेत जारी किए गए हैं, अलग अलग हिस्सों को अलग अलग रंगों से दर्शाया गया है, जान लेते हैं क्या संकेत हैं। लद्दाख, लेह, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गिलगित की बात करें या बात करें हिमाचल प्रदेश की, यहां पर कई जगह बरसात के संकेत हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें, यहां पर भी कई जगह बरसात के संकेत हैं आने वाले 24 से 48 घंटों के लिहाज से। उत्तराखंड की बात करें, अनेक जगह बरसात के संकेत बताए गए हैं, साथ ही साथ हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़ और पंजाब की अगर हम बात करें तो यहां पर कहीं कहीं बरसात के संकेत हैं आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर। बात करें पूर्वोत्तर राज्यों की, तो उसमें भी आप देख रहे हैं अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय की बात करते हैं, अधिकतर जगह बरसात के संकेत जारी किए गए हैं। बात करें गांगे, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा की बात करें, यहां पर भी अधिकतर जगह बरसात के संकेत हैं आने वाले 24 से 48 घंटों के लिहाज से। बिहार, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम की बात करें तो यहां पर

अनेक जगह बरसात के संकेत बताए गए हैं आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर। बात दक्षिण भारत की कर लेते हैं, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, भीतरी उत्तर कर्नाटक, भीतरी दक्षिण कर्नाटक की बात करते हैं तो यहाँ पर अनेक जगह बरसात के संकेत हैं। साथ ही साथ अंडमान निकोबार की बात करें, यहाँ पर भी अनेक जगह के बरसात के संकेत हैं। केरल तटीय कर्नाटक की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर अधिकतर जगह बरसात है। रायलसीमा में कई जगह बरसात के संकेत आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर। तमिलनाडु पुडुचेरी की बात करें तो यहाँ पर कहीं कहीं बरसात के संकेत बताए गए हैं। लक्षद्वीप की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर भी अनेक जगह बरसात के संकेत बताए गए हैं। बात करें कच्छ, सौराष्ट्र, पूर्व राजस्थान और मराठवाड़ा की तो यहाँ पर आप देखेंगे अनेक स्थानों पर बरसात के संकेत हैं आने वाले 24 से 48 घंटों के लिहाज से। पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिमी मध्य प्रदेश, विदर्भ, गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख पा रहेंगे कि अधिकतर जगह बरसात के संकेत बताए गए हैं। साथ ही बात कर लें पश्चिमी राजस्थान की तो यहाँ पर कहीं कहीं बरसात के संकेत हैं आने वाले 24 से 48 घंटों के लिहाज से, यानी मैदानी भाग में भी कुछ प्रकार से बरसात के संकेत देखने को मिलेंगे। बात करें पिछले 24 घंटे में मौसम कैसा दर्ज किया गया है लद्दाख लेह, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर की बात करें कई स्थानों पर बरसात दर्ज की गई है पिछले 24 घंटे के भीतर। हिमाचल प्रदेश में भी कई जगहों पर बरसात दर्ज की गई है। उत्तराखंड, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली की बात करें कई स्थानों पर बरसात दर्ज की गई है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्व उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं पिछले 24 घंटे के लिहाज से कई इलाकों में बरसात दर्ज की गई। पूर्वोत्तर हिस्सों की बात करें अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा अधिकतर स्थानों पर बरसात देखने को मिली है पिछले 24 घंटे के भीतर। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम में भी अधिकतर जगह बरसात दर्ज की गई है। बिहार, झारखंड, गांगे, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा की बात करें तो पूर्वोत्तर के तमाम हिस्सों में आप देख रहे हैं कई जगहों पर, यानी अधिकतर जगहों पर बरसात दर्ज की गई है। दक्षिण भारत का रुख करते हैं, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार में अधिकतर स्थानों पर बरसात दर्ज की गई। तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, भीतरी उत्तर कर्नाटक, भीतरी दक्षिण कर्नाटक में भी कई स्थानों पर बरसात दर्ज की गई है। तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल की बात करें या फिर बात करें तटीय कर्नाटक की तो दक्षिण भारत के भी तमाम हिस्सों में आप देख रहे हैं पिछले 24 घंटे के लिहाज से अधिकतर स्थानों पर बरसात देखने को मिली है। बाद मैदानी भाग की अगर करें तो छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी कई स्थानों पर बरसात दर्ज की गई। विदर्भ में भी कई स्थानों पर बरसात दर्ज की गई है। मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र में भी बरसात दर्ज की गई। गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ में बरसात दर्ज की गई है। दमन, दीव, कोंकण, गोवा की बात करें तो मैदानी भाग के तमाम हिस्सों में भी आप देख रहे हैं कि पिछले 24 घंटे के लिहाज से कई स्थानों पर हल्की से मध्यम और कई स्थानों पर बहुत तेज बरसात देखने को मिली है। इसके अलावा भी मौसम से जुड़ी कई और अहम महत्वपूर्ण जानकारियां जो अब तक हम पहुंचाएंगे, लेकिन फिलहाल यहां वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहें, देखते रहें मौसम खबर।

आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में और अब बात करते हैं बदलते हुए मौसम का क्या असर पड़ रहा है तापमान पर, यानी तापमान में क्या कुछ बदलाव देखने को मिला, अधिकतम तापमान की क्या कुछ स्थिति देखने को मिल रही है और न्यूनतम तापमान में क्या कुछ बदलाव देखने को मिला है, सारी जानकारी आपको देंगे हम तापमान के हाल के सेगमेंट में। शुरुआत करते हैं सबसे पहले बात अधिकतम तापमान की करें, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें, अधिकतम तापमान की जो स्थिति रही 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस, सामान्य से ज्यादा की स्थिति में अधिकतम तापमान इन तमाम राज्यों में दर्ज किया गया है। इसके साथ ही अधिकतम तापमान के कुछ और राज्यों की बात कर लें, जिसमें उत्तराखंड की अगर बात करें तो अधिकतम तापमान उत्तराखंड में 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया। बात करते हैं उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उड़ीसा की, तो यहां पर भी आप देख रहे हैं अधिकतम तापमान की जो स्थिति निकल कर आई 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज्यादा की दर्ज की गई है। अधिकतम तापमान यहां पर भी सामान्य से ज्यादा दर्ज किया गया। अरुणाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो अधिकतम तापमान यहां पर 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया, अधिकतम तापमान सामान्य से ज्यादा यहां पर देखने को मिला। पश्चिमी मध्य प्रदेश और गुजरात की अगर हम बात करें तो अधिकतम तापमान यहां पर 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया, अधिकतम तापमान सामान्य से ज्यादा यहां देखने को मिला। पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर की बात करें जहां पर देश का सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया 39 डिग्री सेल्सियस सबसे अधिक तापमान पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर में देखने को मिला है। बात करते हैं हम न्यूनतम तापमान की स्थिति कैसी रही, हिमाचल प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो न्यूनतम तापमान यहां पर 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया है, न्यूनतम तापमान सामान्य से ज्यादा यहां पर देखने को मिला। पंजाब, चंडीगढ़ और उत्तराखंड की अगर बात करें तो न्यूनतम तापमान की जो स्थिति रही 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज्यादा की स्थिति में न्यूनतम तापमान यहां पर दर्ज किया गया। बात कर लेते हैं बिहार की, जहां पर न्यूनतम तापमान की जो स्थिति रही तो 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज्यादा की स्थिति में दर्ज की गई है। वहीं असम और मेघालय की अगर हम बात करें तो यहां पर भी आप देख रहे हैं

न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया है। बात करते हैं कच्छ, सौराष्ट्र और साथ ही साथ बात करें हम गुजरात की, तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं यहाँ की स्थिति 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज्यादा की दर्ज की गई, न्यूनतम तापमान का हर इस प्रकार से देखने को मिला। और छत्तीसगढ़ के दुर्ग की अगर हम बात करें तो देश का सबसे कम तापमान यहाँ पर दर्ज किया गया 18.2 डिग्री सेल्सियस के साथ, देश का सबसे कम तापमान छत्तीसगढ़ के दुर्ग में देखने को मिला। इसके साथ ही देश के बाकी बचे हुए हिस्सों में तापमान की क्या स्थिति रही है, आइए एक नजर उस पर भी डाल लेते हैं।

अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि देश के अलग अलग राज्यों में वायु की गुणवत्ता कैसी है। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली की, जहां वायु की गुणवत्ता संतोषजनक रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 87 दर्ज किया गया। पुणे की बात करें तो यहां गुणवत्ता सूचकांक 48 दर्ज किया गया, जो अच्छे की श्रेणी में है। मुंबई की बात करें तो यहां की वायु गुणवत्ता अच्छे की श्रेणी में दर्ज की गई, यहां गुणवत्ता सूचकांक 44 दर्ज किया गया। कोलकाता में गुणवत्ता सूचकांक 42 दर्ज किया गया, जिसे अच्छा माना जाता है। लखनऊ में वायु गुणवत्ता संतोषजनक रही, यहां गुणवत्ता सूचकांक 61 दर्ज किया। पटना की बात करें तो यहां वायु गुणवत्ता अच्छे की श्रेणी में है और यहां गुणवत्ता सूचकांक 42 दर्ज किया। आगे बात करते हैं हैदराबाद की, तो यहां वायु की गुणवत्ता संतोषजनक है, यहां गुणवत्ता सूचकांक 61 दर्ज किया गया। अहमदाबाद में वायु की गुणवत्ता संतोषजनक की श्रेणी में है और यहां गुणवत्ता सूचकांक 52 दर्ज किया गया। बेंगलुरु की हवा भी संतोषजनक है और यहां वायु गुणवत्ता सूचकांक 52 दर्ज किया गया है। कृपया अपनी सेहत का ध्यान रखें। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।

आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में और अब बात करते हैं अगले सेगमेंट की, जिसमें आपको हम जानकारी देते हैं देश के तमाम मुख्य राज्यों और मुख्य शहरों में जो कुछ प्रमुख पर्यटन स्थल हैं वहां पर आने वाले चार दिनों में मौसम का हाल कैसा रहेगा, तापमान में क्या तब्दीली देखने को मिलेगी, ताकि आप आने वाले चार दिनों के हिसाब से अपनी तैयारी कर सकें। शुरुआत करते हैं पर्यटन पूर्वानुमान की और जानते हैं कि लद्दाख में देश के आने वाले लद्दाख के लेह में आने वाले चार दिन मौसम कैसा रहेगा। रविवार की बात करें कुछ जगह बादल छाए रहेंगे, कुछ जगह धूप खिलने के संकेत हैं। सोमवार को मौसम में तब्दीली है, तेज धूप खिलने के संकेत जारी किए गए हैं। मंगलवार बुधवार फिर से मौसम में तब्दीली है, कुछ जगह बादल छाए रहेंगे, कुछ जगह हल्की फुल्की धूप खिलने के संकेत हैं। अधिकतम तापमान की बात करें 26 डिग्री सेल्सियस तक की स्थिति आपको देखने को मिलेगी। न्यूनतम तापमान की बात करें 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास न्यूनतम स्थिति में तापमान देखने को मिलेगा। बात करें हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला की, रविवार सोमवार मंगलवार शुरुआत के तीन दिन गरज चमक के साथ तेज बरसात के संकेत जारी किए गए हैं। बुधवार को फिर से बरसात के संकेत हैं। अधिकतम तापमान की बात करें धर्मशाला में तो 30 डिग्री सेल्सियस से लेकर 31 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान देखने को मिलेगा। न्यूनतम तापमान की बात करें 19 से 20 डिग्री सेल्सियस तक का आपको न्यूनतम तापमान की स्थिति में देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ अब बात कर लेते हैं पंजाब के अमृतसर की, जहां पर रविवार सोमवार मंगलवार बुधवार चारों ही दिन यहां पर एक जैसा मौसम देखने को मिलेगा। चारों दिन यहां पर बादल छाए रहने के संकेत हैं और कुछ जगह पर हल्की फुल्की धूप भी निकल सकती है। अधिकतम तापमान की बात करें तो 35 डिग्री सेल्सियस तक का अधिकतम तापमान आपको देखने को मिल सकता है। न्यूनतम तापमान की स्थिति 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास बनती हुई नजर आएगी पंजाब के अमृतसर के अंदर। आने वाले चार दिनों में मौसम और तापमान इस प्रकार से देखने को मिलेगा। बात करते हैं उत्तराखंड के गंगोत्री की, रविवार सोमवार मंगलवार बुधवार चारों दिन मौसम एक समान है। कई जगह पर बादल छाए रहेंगे, कई जगह पर हल्की फुल्की धूप खिलने के संकेत बताए जा रहे हैं। अधिकतम तापमान की बात करें तो 9 डिग्री सेल्सियस से लेकर 13 डिग्री सेल्सियस तक का अधिकतम तापमान आपको देखने को मिलेगा गंगोत्री में। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 0 डिग्री सेल्सियस के आसपास की स्थिति न्यूनतम तापमान की बनती नजर आएगी उत्तराखंड के गंगोत्री में। इस प्रकार से तापमान और मौसम का हाल देखने को मिलेगा। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी की बात करें तो रविवार सोमवार मंगलवार शुरुआत के तीन दिन कई इलाकों में बरसात के संकेत जारी किए गए हैं। बुधवार की बात करें तो यहां पर मौसम में तब्दीली देखने को मिलेगी, कुछ जगह बादल छाए रहेंगे, कुछ जगह हल्की फुल्की धूप खिलने के संकेत हैं। अधिकतम तापमान की बात करें तो 32 डिग्री सेल्सियस से लेकर 34 डिग्री सेल्सियस तक का अधिकतम तापमान आपको देखने को मिलेगा। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 24 डिग्री सेल्सियस से लेकर 26 डिग्री सेल्सियस तक का हाल देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं असम के काजीरंगा की, रविवार सोमवार मंगलवार शुरुआत के तीन दिन अधिकतर जगहों पर बरसात दर्ज की जाएगी। बुधवार को बात करें तो यहां पर कुछ तब्दीली देखने को मिल रही है, कई जगह बादल छाए रहेंगे, कई जगह हल्की फुल्की धूप खिलने के संकेत हैं। अधिकतम तापमान की बात करें तो 33 से 34 डिग्री सेल्सियस तक का अधिकतम तापमान देखने को मिल सकता है। न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस की स्थिति के आसपास बनती नजर आएगी। फिलहाल तीन दिन यहां पर भी बरसात के संकेत जारी किए गए हैं। दक्षिण भारत का रुख कर लेते हैं, बात करें तमिलनाडु के रामेश्वरम में, जहां पर रविवार सोमवार मंगलवार बुधवार चारों दिन मौसम एक समान के संकेत हैं। कई जगह बादल छाए रहेंगे, कई जगह हल्की फुल्की धूप खिलने के संकेत बताए गए हैं। अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस तक का देखने को मिलेगा। न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास की स्थिति बनती नजर आएगी। आने वाले चार दिनों के लिहाज से रामेश्वर में मौसम का हाल तापमान की स्थिति कुछ इस प्रकार से देखने को मिल सकती है। बात करते हैं दक्षिण भारत के केरल की, जहां पर मुन्नार की अगर हम बात करें तो रविवार सोमवार मंगलवार बुधवार चारों दिन यहां पर अधिकतर जगहों पर बरसात के संकेत जारी किए गए हैं। बात करते हैं अधिकतम तापमान की तो यहां पर 19 डिग्री सेल्सियस तक का अधिकतम तापमान बनता हुआ नजर आएगा बरसात के साथ। न्यूनतम तापमान की बात करें तो यहां पर 16 डिग्री सेल्सियस के आसपास की स्थिति न्यूनतम तापमान की देखने को मिलेगी। आने वाले चार दिन बरसात से भरे रहेंगे, मुन्नार में भी इस प्रकार की तैयारी आप कर सकते हैं। बात करते हैं मध्य प्रदेश के चित्रकूट की, रविवार सोमवार मंगलवार बुधवार चारों दिन मौसम एक समान यहां संकेत ऐसे मिल रहे हैं। कई जगह बादल छाए रहेंगे, कई जगह हल्की फुल्की धूप खिलने के संकेत जारी किए गए हैं। बात करें चित्रकूट में अधिकतम तापमान की तो 29 से 30 डिग्री सेल्सियस तक की स्थिति अधिकतम तापमान की बनती हुई नजर आ सकती है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 26 से 27 डिग्री सेल्सियस का हाल न्यूनतम तापमान में आपको देखने को मिलेगा। ये तो बात हुई पर्यटन पूर्वानुमान की। अब बात करते हैं अपने देश के अन्नदाता और किसान की और खेत में लगी हुई इस समय फसलों की। इस समय खेत में जो लगी हुई फसलें उनकी देखभाल बहुत आवश्यक हो जाती है, क्योंकि कई जगह पर बहुत ज्यादा बरसात हो रही है। ऐसे में किन तरीकों में आपको बदलाव करना है, कैसे अपनी फसलों की देखभाल करनी है, आइए जान लेते हैं खेती किसानी में।

भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। सतपुड़ा के पठारी क्षेत्र में दलहन, तिलहन, मक्का, सोयाबीन, कपास, गन्ना और सब्जियों के खेतों से अतिरिक्त पानी निकालें ताकि जड़ों को नुकसान न हो। इसके अलावा यहाँ कद्दू वर्गीय सब्जियों में रोगों और कीटों की निगरानी करें। इसके साथ ही बेलों को सहारा दें ताकि सड़न और खराबी न हो। वहीं निमाड़ घाटी क्षेत्र में सोयाबीन, अरहर, कपास और सब्जियों के खेतों में जल निकासी सुनिश्चित करें और साफ मौसम में निराई करें। जाबुआ के पहाड़ी क्षेत्र में अगेती और पौध अवस्था वाली खरीफ फसलों में जल निकासी की व्यवस्था करें और साफ मौसम में टमाटर, पत्ता गोभी, फूल गोभी, भिंडी, मिर्च, बैंगन और शिमला मिर्च की रोपाई करें। गिर्द क्षेत्र में फिलहाल बाजरे की बुवाई को टाल दें। इसके अलावा यहां तैयार सब्जियों और फलों की समय से तुड़ाई करें ताकि खराबी न हो। यही सोयाबीन, अरहर और धान के खेतों से अतिरिक्त पानी निकालें। बुंदेलखंड क्षेत्र में टमाटर, मिर्च, कद्दू वर्गीय सब्जियां, बैंगन जैसी फसलें विकास अवस्था में हैं। इनके लिए जल भराव से बचाव करें और हवा से गिरने वाली फसलों जैसे केले और सब्जियों को सहारा दें। वहीं मध्य नर्मदा घाटी क्षेत्र में भारी बारिश के चलते धान की नर्सरी की बुवाई को रोकें और सोयाबीन, मक्का के खेतों में जल भराव न होने दें। मालवा के पठारी क्षेत्र में खेतों में जल निकासी बनाए रखें और मक्का की फसल की निगरानी करें। कैमूर के पठारी और सतपुड़ा के पहाड़ी क्षेत्र में भारी बारिश से धान की नर्सरी को नुकसान हो सकता है। ऐसे में किसान नर्सरी से जल निकासी की उचित व्यवस्था करें। यही सोयाबीन की बुवाई भारी बारिश थमने के बाद करें। विंध्य के पठारी इलाके में सोयाबीन, धान, मक्का और अरहर के खेतों से अतिरिक्त पानी निकालें और कद्दू वर्गीय फसलों की बेलों को सहारा दें।

0: आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं आज की फसल की। सही समय पर सही फसल की बुआई करना बेहद आवश्यक होता है, तभी आप अच्छी फसल ले पाएंगे। इस समय की बात करें तो इस समय आप बैंगन की बुआई भी कर सकते हैं। किन प्रकार से आपको आगे बढ़ना है इसकी खेती में, आइए जान लेते हैं एक रिपोर्ट के जरिए।
1: ये समय बैंगन की बुआई के लिए अनुकूल है। बैंगन की बुआई करने से पहले खेतों को अच्छी तरह तैयार कर लें, खेतों की जुताई कर जमीन को समतल कर लें। बुआई करते समय पौध से पौध की दूरी 60 सेंटीमीटर और पंक्ति से पंक्ति की दूरी 60 से 75 सेंटीमीटर रखें। किसान बैंगन की कई किस्मों की बुआई इस समय कर सकते हैं, जैसे पूसा श्यामला। इस किस्म की बुआई पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में कर सकते हैं। बैंगन की ये किस्म लंबे आकार की होती है। इस किस्म की एक हेक्टेयर में 390 क्विंटल पैदावार ले सकते हैं। इसकी शाखाएं सीधी होती हैं।

और पौधा कांटा रहित होता है। पूसा पर्पल क्लस्टर की बुआई भी की जा सकती है। ये किस्म उत्तरी भारत के मैदानी और पर्वतीय इलाकों के लिए अच्छी होती है। एक हेक्टेयर में 200 क्विंटल पैदावार ली जा सकती है। इसकी लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। इसका रंग गहरा बैंगनी होता है। इसके अलावा पूसा अंकुर की बुआई की जा सकती है। पूसा अंकुर राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में लगाने के लिए काफी अच्छी है। इस किस्म का आकार गोल होता है। एक हेक्टेयर में 350 क्विंटल फसल ली जा सकती है। इसके अलावा किसान बैंगन की पूसा उत्तम किस्म भी लगा सकते हैं। बैंगन की इस किस्म की बुआई पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और दिल्ली में की जा सकती है। इसका आकार भी गोल होता है। बुआई के तुरंत बाद पहली सिंचाई करें। खरपतवार नियंत्रण के लिए किसी भी दवा का छिड़काव विशेषज्ञों की सलाह पर ही करें।

एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेत खलियान में। और किसान साथियों ने भारत के अलग अलग हिस्सों के मौसम के बारे में जानकारी को सुना समझा और हमारे किसान साथियों को जानकारी भी हुई है कि किस जगह खासतौर पर पर्यटक स्थल जहां पर हैं उसका भी हमने मौसम आधारित जानकारी आप लोगों तक पहुँचाई है। अब बुंदेलखंड की बात करें क्योंकि अलग अलग हिस्सों की जानकारी थी, अलग अलग पूरे भारत के अलग अलग राज्यों की जानकारी थी। अब आपको बुंदेलखंड क्षेत्र और खास तौर पर टीकमगढ़ की जो हमें रिपोर्ट मिलती है, मौसम आधारित जानकारी जो मिलती है उसको हम आप लोगों तक साझा कर रहे हैं। आने वाले 4 से 5 दिनों के दौरान गरज चमक के साथ मध्यम से भारी बरसात और तथा कहीं कहीं अत्यधिक भारी बरसात होने की संभावना को ध्यान में रखते हुए सब्जियों, दलहनी और तिलहनी फसलों में जल भराव की समस्या हो सकती है, अतः किसान भाई जल निकासी की उचित व्यवस्था कर लें। आने वाले 3 से 4 दिनों के दौरान गरज चमक के साथ मध्यम से भारी बरसात और कहीं कहीं अत्यधिक भारी बरसात होने की संभावना है। दिन का अधिकतम तापमान 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच और रात का न्यूनतम तापमान 24 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। हवा की औसत गति 8 से 14 किलोमीटर प्रति घंटा रहने की संभावना है। आने वाले 3 से 4 दिनों के दौरान गरज चमक के साथ मध्यम से भारी बरसात और कहीं कहीं अत्यधिक भारी बरसात होने की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए हमारे किसान भाई बारिश के समय घर के अंदर ही रहें, यदि संभव हो तो खेतों में जाने से बचें, सुरक्षित आश्रय लें, पेड़ों के नीचे शरण ना लें। किसान भाई धान की फसल में खरपतवार निकालने का कार्य शुरू कर दें, इसके पश्चात संतुलित मात्रा में नाइट्रोजन उर्वरक का छिड़काव अवश्य करें। मिर्च और टमाटर की फसल में विषाणु रोग का प्रकोप देखा जा रहा है, किसान भाई फसल का निरीक्षण करें, ग्रसित पौधे को उखाड़कर जमीन में गाड़ दें। आने वाले 3 से 4 दिनों के दौरान गरज चमक के साथ मध्यम से भारी बरसात और कहीं अत्यधिक भारी बरसात होने की संभावना है, जिससे पान की फसल में फुट रॉट रोग लग सकता है। इसके बचाव के लिए किसान भाई पान के बरेचा के आसपास पानी एकत्रित न होने दें। किसान भाई नए फल बाग लगाने के पूर्व में खोदे गए गड्ढों में पौधे की रोपाई का कार्य शुरू कर देवे। अरबी में कंद गलन रोग का प्रकोप देखा जा रहा है, अतः किसान भाई कंद सड़न के विरुद्ध फसल की निगरानी का कार्य शुरू कर देवे। किसान भाई बेर की कटाई छटाई का पश्चात इसमें निकलने वाली नई शाखाओं में छल्ला विधि से कलम बांधें, बारिश का पानी पशुशाला में जमा होने ना दें, जानवरों को सूखी जगह पर बांधें, पशुशाला की नियमित रूप से सफाई करें, सप्ताह में 2 बार पानी की टंकी में चूना डालें। आने वाले 3 से 4 दिनों के दौरान गरज चमक के साथ मध्यम से भारी बरसात और कहीं कहीं अत्यधिक भारी बरसात होने की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए किसान भाई गाय व भैंस के छोटे बछड़ों को सूखे स्थान पर बांधे। तो ये थी हमारे आज के मौसम आधारित जानकारी जो हमें जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय टीकमगढ़ से दी जा रही थी और जो हमने पूरे भारत की आपको मौसम आधारित जानकारियाँ और बहुत सारी जानकारी है इस कार्यक्रम के माध्यम से दी। उसका हमें सहयोग मिला है TD किसान चैनल से, तो उनको हम धन्यवाद देते हैं कि जिनके सहयोग से इस कार्यक्रम को हम आप लोगों तक प्रस्तुत कर रहे हैं। तो साथियों अब हमारा वक्त हो चुका है आज के इस कार्यक्रम खेत खलियान कार्यक्रम से जाने का। कार्यक्रम कैसा लगा हमें जरूर बताएं हमारे इस नंबर पे, नंबर है हमारा 92-19-20-77-49। तो आपके रेडियो साथी मनीष लेते हैं जाने की अनुमति। आपकी हमारी फिर होगी अगले कार्यक्रम में मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।

नमस्कार दोस्तों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे आप इबेरा अपने रेडियो साथी माते दिन भैया के संग में। और दोस्तों, हम लेके आ गए आप सब जन के लाने जो कार्यक्रम विधा बुंदेली। विधा बुंदेली कार्यक्रम में आज मिले अपन भैया खेमचंद राजपूत जी से और उनसे जाने कि इनने जा विधा कैसे सीखी और अगर को और आदमी सीख वो चाहे तो ये विधा को कैसे सीखे और जी सब बातें करें अपन भैया खेमचंद राजपूत जी से। तो दोस्तों, खेमचंद राजपूत जी से मिलवे से पहले अपन सुनते हैं एक बढ़िया सी फाक खो और लेते हैं फाक को आनंद। जी ये गा रहे हैं पंचमलाल फुटीरा बाय। तो दोस्तों, आप ऐसे बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे अपने रेडियो साथी माता दिन भैया के संग में। और जब फाक खो सुनवे के बाद अपन मिले भैया खेमचंद राजपूत जी से।

किस बर पी के संग दही की लस्सी बनवाई, खातर हो रही मेहमानन की खिरकन ढूकत घरवाई। भजिया परसी जब समी ने संग में दारू मंगवाई, और समी मोखोन वाली जो जा देरी मुश्किल में पाई। लड़का बारो मूछ एट के देरो जवाब करा रे, और 20,000 तो रुपया मैंने कहा।

लोहा के पूरो सोदन धरो बना के फागुन महीना होरी जाके शादी होंगे मोरे मन में हति उमंग बेसम चार जने को संग कुर्सी मेजे और पलंग तक क्या जाने कुंवर छिकाई भाई बकरी में रोरी से लड़काटी को भाई रोरी से लड़काटी को 100 रुपया काड़े समझी ने समझन ने घर में थी को पाछो देख बैठ गए मन होगा उनको भी को 10-10 रुपया राम राम में कुटमरे को जाती गो हरदी लगा सुचकारा दे दो चरणन शीश झुकावे और तुम ढंकी बैठाई बांध जो हो तो

सजार के घोड़ा बांधे परची लई कटारे। अरे के पहुंचे बैंड बाय नो जाके हमको दो दो बैंड सजा के उसे कह रहे बात जमा के सो बानी बांधी श्याम में नो टंकी शोभा नोनी हो बे ढंकी घर बाई ने कई की रंकी कहो पुत में एक जीप तो बउलर का खोलारी में भैया गे हैं तोरा साड़ी चढ़ाए के लाने समन के रही हम गए नाक नथनिया महादेव निया हाथन को चूरा गे हैं और पायल बिछुआन के संग में एक पाव चांदी नायन आंखों हमने 50,000 को जो बिल बन गौ कह रहे जीजा सारे और तेल लाल कछु

कौआ होने लगो गाँव पूरा जुड़ जात। कोई फरा सूपा में धर के ओर बसाता खा लगन और प्रख्यात की चर्चा मड़वा करे टिया रे सच के बरात भाई चार पहुँचे जब समझी के द्वार खर्चा कह दो साठ हजार सोची नहीं ग्यारह सौ टीका की सियात पाँच हजार बेला प्रख्यात समझी खाना तक नहीं का उतरी मुइया भाव ने घर जुआए पूछते जब घर वाई आग लगाओ प्रख्यात ब्याह में हमने रोटी न खाई हाथ पाँव में टूटन हो रहा से दुखरावर कर आई सजना मोरे फिकर करो ना गानों में।

गानो बिग्गो साव चुके ना समझी पर गए कारे और 10 बीघा पर मन की

पंचम लाल फुटेरा बारे सग के जो को मांग करे लड़कन की जो को मांग करे लड़कन की उ घर जो को मांग करे लड़कन की उ घर।

और जीगर बिटिया जला देते हैं ऊ झूले पे जल गो नाम। पंचम लाल खेरा गाछरू के सबको करत इशारे, ओ मांगना मांगो तुम लड़का।

0: हाँ देखो दोस्तों, जो अपन सब जन ने फाग सुनी और ई फाग को आनंद लव है। अब दोस्तों इनकी ई फाग के बाद अब अपन कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊ थे और मिलत हैं भैया खेमचंद्र जी से। सो दोस्तों आप ऐसे बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे अपने रेडियो साथी माता दीन के संग में। अच्छा भैया, पहला तो आप अपना नाम पता बताओ।
1: हमारा नाम पता है खेमचंद राजपूत।
0: खेमचंद राजपूत जी कौन से गांव से हैं? अपन
1: काशीपुरा।
0: काशीपुरा से। अच्छा खेमचंद जी, अपन बात करें गावे बजावे के संदर्भ में, यानी के विषय में, तो आप गावे बजावे में काय में रुचि रखत? गाऊ थे बजाऊ थे का काम करे?
1: हम सबसे ज्यादा गाते हैं।
0: अच्छा गाते हैं?
1: गाते हैं।
0: अच्छा देखो कितनी बढ़िया बात है कि आप गाते हैं। अच्छा गावे की आपको लगन कब से लगी, क्या साल कहते जब आप?
1: हमारी लगन थी, हम सेम हमें विशेष के हो इतने जानन लगे थे कि जो जा चीज है जा चीज है गावो कैसे हो। करीबन हम 10 साल के भय थे और हम गावो संगे हमारे पिताजी जाते, हमारे सबसे पहले पिताजी जाते।
0: अच्छा पिताजी गाव थे आपके?
1: हमारे पिताजी गाते तो हारमोनियम बजाते
0: बाजो पिताजी,
1: तो हम जाते उनके संगे पिताजी के संगे। तो हम देखते के हमारे पिताजी गा रहे ऐसे ही बेगाते, तो हम ले लेते।
0: अच्छा
1: और बेगाते सो हम ऐसो
0: बैठत रहे।
1: अब एक दार की बात है, हमारे गाँव की पार्टी बहुत अच्छी हती अभी चल रही, तो गांव के ने सोची हमारे दादा गाते थे तो इतराजी होती।
0: गाँव
1: का नो कितना अच्छा गा रहा हूँ और अच्छा नहीं गा रहा रे रे जात।
0: अब
1: जैसे तुम भी जान के बूढ़ो आदमी हुए
0: तो मैं तो उसको गाते ही है
1: तो वैसे
0: सही है। हाँ।
1: तो हमें फिर ऐसी सोचा लगे, तो एक हमारा दोस्त है बहुत अच्छा।
0: हाँ। का नाम दोस्त को?
1: गब्बर सिंह। गब्बर सिंह नाम है। हाँ। बहुत अच्छा खासा दोस्त है।
0: हाँ।
1: तो उसने हमें बताया कि खेमू एक काम करिए।
0: हाँ।
1: कि तुम्हारे दादा की बहुत हूटिंग करत आदमी।
0: हाँ।
1: हमने की कैसे बोले तना कैसे गावे में हिचक जा तना हमने की ठीक है गान दो। तो हम सोचत रहे कुछ दिन।
0: हाँ।
1: तो हमने एक वंदना करी।
0: अच्छा, अच्छा वंदना तुमने सीखी फिर?
1: हमने पहले वंदना ये देवी जी की वंदना। हाँ। ये कैस्ट में सुनी हमने।
0: अच्छा सुनी पहले
1: कैस्ट सुनी फिर कैस्ट सुन के हमने गाई।
0: हाँ।
1: तो गावे के बाद एक जगह हम गए ऐसे ही प्रोग्राम में हम चले गए। हमें लो आने गए, हम चले गए दो।
0: अच्छा तुम एक बार लगन हती?
1: हमें लगन हती दो चले गए। हम की बिकड़ गए हमें जान दो। हम पिछाई पहुंच गए। अब इनने मंडली मल्लू गान लगी थी तो हम बैठ गए। तो हमारे जो दोस्त हैं उनने हमसे कही गावे में हमें देख शौक थे कि को गावे। हमें जल रहती कभी जो बंद हो हमने वह वंदना सुनाई।
0: वंदना कैसी
1: वंदना हती

0: भी माराना ये हमने गाया। तो हमारा एक जो ढोलक मास्टर था उसने ढोलक इतनी गजब की बजाई, तो आदमी ने जो हमारे लोग बाग थे उनने जा सोची, तो दो तीन दिन बाद हमारे पिताजी को नहीं लुआ गए, नहीं लुआ गया। तो हमने की नहीं लुआ जान दो, अब तो हम जा रहे। हमने अपने पिताजी से कही तुम बंद करो, हमारे पिताजी बजाते बाजो भाई, जब जैसे बाजो बजा रहे तो जब तक बाजो ना बजे तो गीत ना हो जाए। तो कुछ दिन फिर हम गाने लगे, तो हमारे पिताजी अब मान लो
1: नहीं जाते,
0: अब नहीं जाते, अब इसलिए नहीं जाते कि अब बेबी सोचा कि अब हमारा लड़का भी गाने लगा, अब तो कहीं अगर जरूरी है तो हम अपने पिताजी को भी लुआ जाते। हमारा हमने खुद अपना स्वयं दुर्गा मंडल नाम से
1: मंडल खोला,
0: खोला।
1: अच्छा, आपने दुर्गा नाम से अपना मंडल खोलो, आपने गुरु किया मानो तो
0: हमारे गुरु हैं, एक गांव के हैं। हाँ। हमारा दयाराम राजपूत है।
1: हाँ।
0: हमारा गुरु भी है
1: दयाराम राजपूत
0: हमारे गुरु हैं।
1: अच्छा,
0: पूज्य गुरु हैं, हमने उन्हीं के गीत गाए हैं, अभी तक गाते चले आ रहे हैं।
1: अच्छा।
0: हाँ।
1: चलो बढ़िया बात है कि आपने देखो गुरु बनाओ, और बिना गुरु के तो
0: देखो बिना गुरु की तो ये कहानी होती नहीं है। अगर अपन कुछ भी गाना बजाना है तो गैर गुरु का तो अपन को
1: ज्ञान मिला ही नहीं सकते,
0: गुरु भी नहीं ज्ञान।
1: हाँ।
0: है।
1: हाँ।
0: एक कहावत है के सूर्य बिन मिले ना सरस्वती, गुरु बिन मिले ना ज्ञान, और ज्ञान बिना हैरान हूँ से ढूंढत वेद पुराण।
1: देखो कितनी बढ़िया बात है,
0: अगर अपन अपने पास गुरु है तो सबसे बड़ा
1: ज्ञान
0: है, और गुरु नहीं है तो कोई ज्ञान नहीं,
1: तो कोई ज्ञान नहीं। अच्छा, जा तो आपने देखो गुरु जी की बात बता दी, अब एक संगे संगे आपने जो गीत गाओ है ताराग्राम पे गाओ देखा भी।
0: हम ताराग्राम में दो दफे गाया।
1: हाँ, हाँ।
0: तो हमने सब में पहले ताराग्राम में गाया था।
1: हाँ।
0: जो हम दर्शन खो आए केवरिया मैया खोल दो,
1: हाँ।
0: वो फुलवारी से फुलवा

0: ये हमने ये गाया था।
1: अच्छा, जय गीत गाया था आपने। देखो बहुत अच्छी बात है कि आपने जय गीत का। अच्छा एक बात और बताओ, इमें जो गावे बजावे में कोई विधा की बात आउत, अगर विधा की, तो आपको जो पता है कि अपने साल में 12 महीना हो और 12 महीना में 12 प्रकार की अलग अलग विधाएं गाई जाती है।
0: जैसे अपना ये है, जैसे अभी मौसम ये फागुन का है, ये महीना फागुन का है, तो इस समय पे अपन को फाग अच्छी लगेगी।
1: अच्छा।

0: हाँ मतलब इमोशन
1: जैसे
0: भागे तो
1: जैसे अपन
0: हाँ
1: ने कही
0: हाँ
1: जैसे अब ये चल रही है
0: हाँ
1: जैसे ये अपन गाउन गाउन होती है ये कौन
0: कौन
1: ये उनने कही के ये फलाने की आज घरे फागे होने
0: हाँ हाँ
1: तो उनने कही बोला दे फागे हो जाए फलाने की
0: हाँ
1: जी फाग जैसे अपन फाग हो तो चेतावनी हो
0: हाँ फाग चेतावनी
1: चेतावनी
0: हाँ
1: जैसे अपन ने चेतावनी आई
0: हाँ
1: के उड़ गई सांच रज्जा देखी कौन ने उड़तन सांच
0: रज्जा
1: उड़तन सांस चिरज्जा देखी कौन ने सो हमें बता दो भज्जा वो गांव पुरा के सब बैठे रहे परखत रहे परखज्जा देखी कौन ने करतन सांस चिरज्जा अपन को जो पतो नहीं है कि घट में से कबे
0: कड़ गई
1: सांस अपनी कड़ गई
0: सही कह रहे
1: गांव पुरा के सब बैठे रहे सो परखत रहे परखज्जा वो कड़ गई श्वास मिलो ना यार वो देखत रहे देखज्जा देखी कौन ने कड़तन श्वास से रज्जा
0: सही कह रहा
1: गांव पुरा के सब बैठे रहे क्या दिखा रही
0: हां काऊ ने नहीं देख पाई
1: वाह काऊ ने नहीं देखी अपन अपन ने खुद नहीं देख पाई के कबे का होने सो बा ऐसी चेतावनी हमने ये जैसे अपन ने घर बैठे
0: हाँ।
1: तो ये फाग है जैसे फागुन का महीना है तो
0: हाँ।
1: फाग अच्छी
0: लगे
1: सावन का महीना है तो जैसे सावन भरे ये गीत है ये झूला गीत है तो जैसे मौसम है बाहर गाओ तो बस जैसे अब जैसे अब फागुन चल रहा हो तुम झूला गीत गा दो तो बस साजो लगेगा फागुन में फाग ही लगे और सावन में झूला गीत साजे लगे जैसे नौ दुर्गा है तो देवी भजन
0: अच्छे लगे
1: अच्छे लगे
0: बिल्कुल बहुत अच्छी बात कही आपने। तो देखो जो तो अगर एक बात और बताओ कि जैसे नए अपने युवा साथी हैं अगर वे ये राग को सीख बचाए जो विधाएं सीख बचाए तो उन्हें कैसे सीख पाए
1: वे ऐसे ही सीख पाए जैसे हमने जो आपसे कहा है
0: हाँ।
1: कि जैसे हमें बहुत अच्छी लगन
0: हाँ
1: लगन थी
0: हाँ।
1: अब जैसे अगर अपने पास लगन है कौन सी भी चीज की
0: हाँ।
1: तो अपन वह चीज को कर लें अपन
0: सही बात।
1: अपन लगन ना लगाए वह चीज
0: हाँ।
1: को तो अपन नहीं कर सकते
0: क्या
1: हमें गावे बजावे की लगन थी
0: हाँ।
1: आज हमें चार आदमी
0: सही है सीख गए आप
1: सीख गए चार आदमी बुला रहे
0: इज्जत भी बढ़ा
1: इज्जत है
0: सम्मान मिला
1: अबे सम्मान है जैसे हम अपना यही काम है कौन से भी काम है तो अगर हम घर भी बैठे अगर खबर आ गई कि फलानी जगह जाने हैं तो हम चले गए पहले चले गए तो अब जानन लगे आदमी कि फलाने गांव में
0: फलानो आदमी
1: उसको खबर दे दो या चिट्ठी दे दो या फोन कर दो
0: हाँ।
1: तो हम एक दिन नहीं बैठे रह रहे हमें इस लगन से बहुत अच्छा है एक दिन भी बैठे नहीं रह रहे कुछ ना कुछ हमें कार्यक्रम मिलते रहते हैं
0: तो देखो जो अगर सीख वो चाहे तो उसको पहला तो लगन लगाने पड़े
1: अपने पास अगर लगन है तो सीख सकते लगन नहीं है तो नहीं सीख सकते कोनो भी काम है
0: अच्छा।
1: अगर अपन घर बैठे अपन जैसे इतने बैठे फालतू घरे बैठ गए तो घरे बैठे ही नहीं
0: बिल्कुल सही बात है।
1: अगर अपन दिमाग से कुछ सोचे तो कुछ कर ले अगर सोचे ही ना तो कुछ नहीं कर पाओगे
0: बिल्कुल
1: सबसे मेन चीज ये है अगर अपने पास लगन है तो सबसे उत्तम है और लगन नहीं है तो कुछ काम नहीं कर सकते हमारे पास लगन थी
0: हाँ।
1: हमने गाना बजाना सीखा है
0: बिल्कुल अच्छी बात है। अच्छा तो अब जा तो देखो अपनी बात हो गई अच्छा चलत चलत आप और जो अपनी अपन को जब बात अपनी सुन रहे उनसे अपन चलत चलत का संदेश दे चाहे
1: संदेश जो ही है कि भज्जा जैसो हम लगन लगा रहे ऐसी सब जन ही लगाए तो बहुत अच्छी बात रहे जैसे हम एक शेर कह रहे
0: हाँ हाँ बिल्कुल
1: सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के हसूले से खुशबू आ नहीं सकती कागज की फूलों से क्यों कि अगर अपन में सच्चाई है हर चीज है दिमाग है तो अपन हर चीज कर सकते हैं
0: बिल्कुल सही बात
1: शेर करने में चला कुछ हमारे दिल में अरमान थे
0: हाँ।
1: और एक तरफ जंगल तो एक तरफ शमशान थे पैर हड्डी पर पड़ा
0: हाँ।
1: उसके कुछ बयान थे
0: हाँ।
1: और चलने वाले संभल के चलो
0: हाँ।
1: हम भी कभी इंसान
0: अगर हाँ।
1: अपने पास क्षमता है तो हर चीज कर सकते हैं और क्षमता नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते।
0: चलो जा आपने बहुत अच्छी बात बताई अब एक संग देखो अपनी बातचीत बिलात हो गई और अगर आपको कौन जो सबसे अच्छो आपको गीत अभी तक लगो हो कि हमने अपने जीवन में जो अच्छो गीत अच्छो आओ तो जो आपको पसंद हो वो कितने के कादू लाने हैं का
1: हमारे पास तो अब लेने तो ऐसी है हमने तो हमने आपको बताया है कि हमारे दादा गाते थे सबसे अच्छा हमने अपने दादा का सीखा था
0: अच्छा क्या सीखा था
1: हमने
0: अभी आपको याद है?
1: हमें याद है, बहुत दिन पहले सीखा था। अच्छा। जब हम शुरू में गावो सीख ही रहे थे।
0: अच्छा, सीख रहे
1: तो हमारे दादा गा रहे थे।
0: अच्छा, का गाओ
1: तो हमारे दादा ने गाओ तो एक जो गीत जो चित्रकूट धाम है अपना राम राजा के माध्यम से सुनाओ तो उनने तो हम सुनत रहे तो हमने सीख लाओ तो वो है

0: है भाई साहब,
1: हाँ
0: ये साजबाज में बजत बहुत
1: हाँ
0: अच्छो
1: बहुत
0: गीत
1: अच्छा
0: लगा,
1: लगा
0: जो
1: रे, बहुत अच्छा
0: जो हमने गाया था एक
1: लगा रे।
0: जगह,
1: हाँ
0: तो गाया था जब
1: हाँ
0: साजबाज में हमने गाया था,
1: हाँ
0: तो हमारी लोग बागों ने बहुत अच्छी
1: तारीफ की।
0: तारीफ की, तो हमको घर लुआ गए, और घर लुआ के हमको भोजन कराए, बहुत अच्छी
1: सम्मान मिलो बोले
0: सम्मान
1: भाई।
0: मिलो हमको।
1: हाँ चलो बहुत अच्छी बात है। तो देखो आपने भैया इतना कीमती समय निकाल के हमें दो
0: मैं थोड़ा
1: इकिलाने,
0: दूंगा।
1: आपको बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी, नमस्कार।
0: नमस्कार।
2: हाँ तो देखो दोस्तों, जी तो होते भैया खेमचंद्र जी, जिनने बताओ है अपन को कि हमने कौन प्रकार से जो गाबो बजाबो सीखो है, और अगर कोई सीख बचा है तो वो की प्रकार से सीख सकत। अब दोस्तों एक के संगे संगे आप उन्हें कह रही हो कि माता दिन भैया बिलाद देर से खेमचंद भैया से बातें करवा रहे हैं और मनोरंजन की तरफ कौन ध्यान नहीं कर रहे। जी हाँ दोस्तों, आपके लाने मनोरंजन को हमें ध्यान है, तो आओ मनोरंजन के लाने सुनाते हैं अपन एक बढ़िया सी फाखो, लेते हैं फाखो आनंद। जी फाखो गा रहे हैं भूपेंद्र यादव जी। तो दोस्तों आप ऐसे बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे अपने रेडियो साथी माता दीन के संग में।
3: अरे धनुष उठा ले कर मेरा माँ, धनुष उठा ले कर।

चूतन धनुष टूट गयो ऐसे इसका कहूं जिगर में, और मंगलाचार वो तो घर घर में

0: लखन दोई। हाँ देखो दोस्तों, जब कितनी प्यारी फाग अपन सब जन ने सुनी, फाग को आनंद लो है। ई फाग को गा रहे थे भैया भूपेंद्र सिंह यादव जी। अब दोस्तों यही फाग के संगे संगे हम आप सब जन को बता देवे कि आज के कार्यक्रम विधा बुंदेली को इतनी समापन होबे को समय हो गए है। सो अपने दोस्त माता दिन भैया को दो कार्यक्रम से जावे की अनुमति और चलत चलत आप लिख लो हमारे फोन नंबर को और हमारे पते को, जिससे कि आप इस पते पे और फोन नंबर पे हमें ई कार्यक्रम की राय सुझाव हम तक पहुंचा सको। सो दोस्तों हमारा पता है रेडियो बुंदेलखंड 90.4 तारा ग्राम ओरछा तगेला के पास ओरछा। सो इस पते पे आप चिट्ठी पत्र द्वारा हमें कार्यक्रम की राय सुझाव जरूर भेजें। अब लिख लो आप हमारे फोन नंबर को, हमारा फोन नंबर है 94-25-14-17-26। सो इस फोन नंबर पे फोन लगा के आप हमें कार्यक्रम की राय सुझाव जरूर भेजें। आपके फोन को हमें इंतजार है। अब अपने
1: ये आवाज है बुंदेलखंड की।